ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026। सुबह के 5:53.47 हुए हैं। अब इन मीटर्स पर, इस फ्रीक्वेंसी पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

हम FM रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 पर। आइए प्रस्तुत है एक कार्यक्रम विवरण। अब से लेकर दिन भर FM रेनबो पर प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोता बंधु, आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 6 बजे हिंदी में समाचार। इसके ठीक बाद ज्योति आनंद लेकर आएंगी कार्यक्रम सुप्रभात, सकारात्मक नोट्स और हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित। इस कार्यक्रम के बाद फिर से हिंदी में समाचार सुनिएगा 7 बजे। संतोष राव लेकर आएंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली सूचना प्रद। इस कार्यक्रम के ठीक बाद एक बार पुनः जुड़ेंगे हिंदी में समाचारों से 8 बजे। इसके बाद गुड मॉर्निंग दिल्ली ही लेकर आएंगी, बल्कि कहना चाहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ज्योति आनंद, जिसमें आप जानकारी लेंगे लेटेस्ट गतिविधियों पर जो शहर में और शहर के आसपास हो रहे हैं। 8:15 पर इसी कार्यक्रम में आप जुड़ेंगे यादों की एक मीठी सरगम सॉन्ग के साथ, एक गीत के साथ। कार्यक्रम जारी रहेगा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR 9 बजे तक।

सुबह 9 बजे एक बार पुनः संतोष राव लेकर आएंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने, ताज़ा तरीन बॉलीवुड गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा और इसमें आप नॉन स्टॉप गीत सुनेंगे संतोष राव के साथ। हिंदी में समाचार एक बार फिर होंगे सुबह के 10 बजे। इसके बाद पूजा आनंद लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आवर।

0: सुबह 11 बजे हिंदी में समाचार एक बार पुनः सुनेंगे आप, और 11:05 से 12 बजे तक कार्यक्रम होगा बॉलीवुड ट्रेल्स। प्रियंका मामगैन लेकर आएंगी इस कार्यक्रम को आप तक। दोपहर 12 बजे एक बार पुनः हिंदी समाचारों के लिए चलेंगे। इसके बाद पूजा आनंद लेकर आएंगी दोपहर 12:05 से वेस्टर्न म्यूजिक का एक और कार्यक्रम प्लेट कोल। 1 बजे होंगे हिंदी में समाचार, फिर से जुड़ेंगे प्रियंका मामगैन के साथ रेनबो हेल्पलाइन में। 1:05 से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा ग्रीन होम्स ग्रीन फ्यूचर, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम होगा। और इसमें विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर फैयाज अहमद खुद सर, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क्स कार्यक्रम के अंतर्गत। सुबह के 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति 1 माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा व्यापार निवेश फार्मास्यूटिकल्स स्वास्थ्य सेवा परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में

0: सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हे लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर। 3 जून हो चुकी है आज। जी हाँ, 2026 का जो साल स्टार्ट हुआ था उसका आज छठा महीना जो ऑलमोस्ट हम एंटर कर चुके हैं। और बुधवार की प्यारी सी सुबह में आपका स्वागत करती हूँ मैं ज्योति, कार्यक्रम सुप्रभात में। और आज भी कुछ अनसुलझे से राज सुलझाएंगे आकाशवाणी रेनबो पर। यूँ ही बने रही मेरे साथ कार्यक्रम सुप्रभात में।

मशहूर कवि, संगीतकार, शिक्षाविद और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, सफलता के मायने बताए। जीवन में सफलता पाने का अर्थ सिर्फ ऊंचाइयां छूना नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ करना है जिससे दूसरे के जीवन में भी खुशियां और आशा का प्रकाश पहुंचे। किसी के मन को छू लेना भी सफलता होती है। और सफलता के मायने और सफलता की जो परिभाषा है वो सबकी अलग अलग है। किसी को बहुत पैसा कमाना सफलता लगती है, किसी को कोई स्टेटस पाना सफलता लगती है, किसी को बड़े घर में रहनी सफलता लगती है, किसी को एक औहदा पा जाने पर सफलता महसूस होती है, मगर कभी कभी कुछ और ऐसी बातें होती हैं जो आपके चरित्र में होती हैं और

उससे भी आप सफल कहलाते हैं। किसी के मन को अगर आप छू जाएंगे, मीठे बोल दो बोल देंगे और इससे उन्हें खुशी मिल जाएगी, तो वो भी एक सफलता है। तो सफलता के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग परिभाषा है, और सिर्फ जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनसे ही सफलता नहीं होती, और भी बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सफलता के दायरे में ला सकते हैं। आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं, आप कैसे अपने आप को सफल मानते हैं, शेयर कर सकते हैं सुप्रभात में ज्योति के साथ। आज इसी पर बात करेंगे कि क्या मायने हैं सफलता के, और सफलता की परिभाषा क्या है, असली सफलता क्या है।

दूसरों से जो शिकवा है उसे भूल जाएं तो भी सफलता है, अपने लिए जो शिकवा है, अपने लिए जो शिकायतें हैं उन्हें हम भूल जाएं तो भी सफलता है, और अगर हम किसी से कंपेयर ना करें तो असली सफलता है। कभी भी किसी से कंपेयर ना करें और हार ना मानना भी सफलता है। चलते रहना, हमेशा चलते रहना, चाहे धीमी चाल से ही सही मगर रुक ना जाना, और बस चलते रहना और किसी ना किसी तरह से बस अपने आप को उस मोशन में रखना, चाहे धीरे ही सही, वो भी एक सफलता है। और एक सवाल है आपके लिए कि क्या आप जाग गए हैं? समय बता देती हूँ, 6:21 हो चुके हैं। कार्यक्रम सुप्रभात आप सुन रहे हैं ज्योति के साथ आकाशवाणी रेनबो पर, देश के अलग अलग हिस्सों में, हर जगह जहाँ आप सोचेंगे वहाँ आप हमें सुन सकते हैं। यही तो कमाल, यही तो जादू है, और आवाज़ के माध्यम से आप और हम जुड़े हैं। एक दूसरे को देखा तो नहीं है मगर हाँ, बातों के जरिए, आवाज़ के जरिए कितना दिल से दिल तक का कनेक्शन है हमारा, ये हम जानते हैं, और आपके मैसेजेस इस बात का सबूत होते हैं। तो जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आप जाग गए हैं, अलार्म से जागते हैं या बिना अलार्म के जाग जाते हैं, इस सवाल का आप मुझे सोचकर जवाब दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मतलब, और हम इस बातचीत में

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फिर से स्वागत आप सभी का आकाशवाणी रेनबो। आप सुन रहे हैं ज्योति के साथ कार्यक्रम सुप्रभात। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप जाग गए हैं मतलब अगर आप जाग गए हैं तो आप शो सुन रहे हैं, आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, और आप अलार्म से जागे हैं कि बिना अलार्म के जागे हैं, और क्या आप जाग गए हैं। बात करेंगे इसी के बारे में इस खूबसूरत से गाने के बाद। वैसे ही बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

अक्सर जब हम अपने जीवन से कभी कभी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं परेशानियों से, तो हम भी ऐसे कहते हैं ना अपने पेरेंट्स को, हमें अकेला छोड़ दो. बट यू नो सम टाइम दिस लोनलीनेस, दिस सॉलिट्यूड इज़ अ ब्लेसिंग, इट्स अ जॉय. और ऐसे में आपको ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं जो वैसे कभी आपने कभी सोचे भी नहीं होते हैं. तो जब आप अकेले होते हैं ना, तो आप अपने आप को सुनते हैं, अपने आप को समझते हैं. सो इट्स, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि नो डिपेंडेंसी. तो कभी कभी डिपेंडेंट ना होना भी एक सक्सेस है, एक सफलता है, और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी एक सफलता है, और किसी के बारे में या किसी के साथ भी बुरा ना करना भी एक सफलता है. आपकी ये अपनी पर्सनल सफलता है, निजी सफलता है, आपके अंदर डीप रूटेड सफलता है ये. इससे आपको नींद अच्छी आएगी अगर आप किसी के अगेंस्ट कुछ भी खराब नहीं सोचेंगे, खराब करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं, तो ये भी एक सफलता होती है. और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप जाग गए हैं, तो उसका मतलब ये था कि कभी कभी सारी उम्र गुजर जाती है तब भी लोग नहीं जागते हैं, उनके अंदर वो रियल, जिसे हम कहते हैं ना, एक जागृति, चेतना, वो नहीं जागती है, और उनके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं होती है. तो तभी मैंने पूछा कि क्या आप जाग गए हैं, क्या आपको एहसास हो गया है. तो जिसको एहसास हो जाता है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और दूसरों के प्रति वो कभी भी कुछ भी गलत करने की सोच भी नहीं सकता, करने की तो दूर की बात है. तो वो वाला जो जागना होता है ना, वो बिना अलार्म के होता है, और वो किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटी से छोटी उम्र में भी हो सकता है, और कभी कभी तो कोई 70 पार कर जाता है तब भी नहीं होता है. तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप जाग गए हैं, सच में जाग गए हैं, अपने आप को जान गए हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से सवाल पूछते हैं, जाग गए हैं क्या?

आकाशवाणी रेनबो के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ ज्योति। और अपने दिल के आसमान को, अपने अंदर के आसमान को भी खुलने दो, खुल के जियो। और जैसे हमने आज बात करी कि सफलता के अलग अलग मायने होते हैं, किसी के लिए उसकी परिभाषा अलग होती है, किसी के लिए कुछ और होती है। और जब आपसे मैंने सवाल पूछा था कि आप कैसे उठते हैं, अलार्म से उठते हैं बिना अलार्म के, हालांकि उसमें कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है, अच्छी बात है कि बिना अलार्म के उठ जाते हैं, और अच्छी बात है कि अलार्म से भी उठ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो अलार्म लगाते हैं और फिर उसको स्नूज कर देते हैं कि 10 मिनट और सो जाए। मैं भी अलार्म से ही उठती हूँ, मगर हाँ, जब रोज़ हम उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उसके हिसाब से सेट हो जाती है और हम बिना क्लॉक, बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं। और आप लोगों ने सबने काफ़ी मैसेजेस शेयर किए हैं कि आप कितने बजे उठते हैं, सुबह कैसे शुरुआत करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और एक और मैसेज हमारे पास, एक ख्याल जुड़ा कि अगर सब कुछ पूरा हो जाएगा जीवन में तो फिर वही सफलता है। कभी कभी अधूरा रह जाना भी, किसी चीज़ का पूरा ना होना भी बहुत खूबसूरत होता है, ताकि हम चलते रहें, निरंतर चलते रहें, उसके लिए हम कोशिश करते रहें, तो कोशिश करते रहना भी एक सफलता है। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग हैं, अलग अलग परिभाषा है। और एक होती है टेम्प्रेरी सफलता, अस्थाई सफलता, और एक होती है स्थाई सफलता। तो जो अस्थाई सफलता होती है वो आप उस कह सकते हैं कि शॉर्टकट हो गया, या फिर किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें मिल जाती है जो जल्दी खत्म हो सकती है, मगर जो परमानेंट होती है, स्थाई सफलता होती है, वो मेहनत से, कंसिस्टेंसी से, और अपने जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होते हैं उनके बेसिस पर होती है, और वो कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो कायम रहती है। तो आपके जीवन में कौन सी वाली सफलता मायने रखती है, आप अपनी सफलता के लिए क्या करते हैं, आज हमने उसके बारे में बात करी। और भी कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्रम सुप्रभात, ज्योति के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आपके साथ भी हमारे मन की डोरी बंधी हुई है और बंधी रहनी चाहिए। 6:54 हो चुके हैं और बस अब मैं आपसे लूंगी थोड़ी सी देर के लिए विदा और मिलूंगी आपसे फिर से 8:00, मगर उससे पहले 7:05 से आपके साथ होंगे संतोष राव लेकर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसका सेकेंड आवर लेकर 8:00 मैं हाजिर होंगी। और चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि सफलता एक और चीज़ में भी होती है, वो ये कि बुरे वक्त में हम विचलित ना हों और अच्छे वक्त में ज़्यादा हमें अहंकार ना हो जाए और हाँ हम एकदम बैलेंस रहें। ये भी एक समझदार और मजबूत इंसान की पहचान होती है और इससे भी हम सफलता का एक रूप कह सकते हैं। ये भी सफल होने की एक निशानी है कि हम विचलित ना हों और मजबूत बने रहें और बस यूं ही उड़ते रहें, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। आकाशवाणी रेनबो के साथ आप भी यूं ही बढ़ते रहिए। तो इंजॉय करते हैं यह आखिरी गाना इस कार्यक्रम का, जिसका नाम था सुप्रभात और मैं हूँ आपके साथ ज्योति। मिलती हूँ आपसे कुछ ही देर में, यूं ही इंजॉय करते रहिए। बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, ये है आपकी वाणी आकाशवाणी। और अब आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपकी वाणी के साथ अपनी वाणी मिलाने आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुबह सुबह जो हमारा प्रोग्राम आता है ना सुप्रभात, उसमें हमारी आरजे ज्योति आनंद ने क्या जबरदस्त उत्साहित करने वाली, मतलब मोटिवेशनल कई बातें ऐसी बोली जिसे सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ कि आज का ये दिन मेरा वाला दिन है। जी हाँ, मेरा वाला दिन। वैसे हर दिन तो ईश्वर ने बनाया है, बनाने वाला वही हमारा ईश्वर है, और इसीलिए हर दिन की शुरुआत हम अपने ईश्वर को थैंक्स करके कहते हैं, है ना। वैसे कहते हैं कि बिस्तर से लड़ना सीख जाओ तो जिंदगी से लड़ना आसान हो जाता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आलस छोड़िए, उठिए और अपनी मंजिल को पाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आप स्वयं से कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो सारी कायनात भी आपके साथ खड़े होकर आपका साथ जरूर देती है। और जब कायनात आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है, तो आज का दिन तो अपने आप ही बन जाएगा कमाल का, है ना। इसीलिए अच्छा अच्छा सोचिए और मुस्कुराते हुए सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विथ एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव, जो हमेशा आप सबसे यही तो कहता है।

जी हाँ दोस्तों, जब दिल की आवाज़ दिल तक पहुंचती है तो कुछ ऐसा ही असर होता है दिलों में। वैसे 1992 की फिल्म कल की आवाज़ का ये गीत कुमार सानू और आशा भोसले ने गाया था, लेकिन फील ऐसे होता है जैसे हम खुद गा रहे हैं और साथ में वो भी हमारे साथ गुनगुना रही है ना। वैसे एक बात बताऊं आपको, जब हम अपने दिल की बात हिंदी भाषा में करते हैं यानी अपनी मातृभाषा में करते हैं तो दिल के जज्बात और खुलकर लबों पर आ जाते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा इतनी मधुर भाषा है कि इसको तकरीबन 150 से ज्यादा देशों में बोली जाती है। और एक मजेदार बात और बताऊं आपको, फिजी में हिंदी को ऑफिशियल भाषा का स्टेटस मिला हुआ है, तो वहीं नेपाल में 25% लोग हिंदी में ही बात करते हैं। और 2025 में दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी हमारी हिंदी, जबकि पहले नंबर पर थी इंग्लिश और दूसरे नंबर पर थी मैंड्रिन। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 1 अरब लोग हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। और आज ही के दिन 1918 में इंदौर शहर में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी को देश के आम लोगों की भाषा बनना चाहिए। यहां एक प्रस्ताव यानी सुझाव दिया गया था और फिर 31 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। दोस्तों आज का ये दिन यानी 3 जून और भी कई ऐतिहासिक बातों का गवाह बना है, बताऊंगा आपको। तो आप बने रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विथ एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। वर्ष 1993 में आकाशवाणी ने पहली बार निजी कंपनियों को अपने FM चैनलों पर प्रसारण समय किराए पर देना शुरू किया। इसके तहत निजी निर्माताओं को कार्यक्रम बनाने, विज्ञापन बुक करने और उन्हें आकाशवाणी के FM चैनलों पर प्रसारित करने की अनुमति मिली। इससे पहली बार निजी संस्थाओं को अपने कार्यक्रम तैयार करने और प्रसारित करने का अवसर मिला। इस अभिनव पहल की शुरुआत 15 अगस्त 1993 को दिल्ली और मुंबई से हुई और जल्द ही इसका विस्तार चेन्नई, कोलकाता और गोवा जैसे प्रमुख शहरों तक हो गया। इस बदलाव के साथ कार्यक्रमों की शैली में भी परिवर्तन आया, जिसमें पश्चिमी संगीत प्रायोजित कार्यक्रम, काउंटडाउन और चैट शो जैसे शहरी श्रोताओं के अनुरूप कंटेंट लोकप्रिय होने लगे। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एच 90 में। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

है सार है सार, बोले तो संतोष राव। समय हो रहा है सुबह के 7:24 और 5 सेकंड हो चुके हैं। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें तो आज है 3 जून, और आज 2026 साल का है 154वां दिन। और दोस्तों, ये 3 जून वही दिन था जब 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन प्लान पेश किया था। आज ही के दिन यानी 3 जून 1979 में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का पहला परीक्षण फ्लाइट हुआ। बहरह पहले हुए, लेकिन ये है कि माना कि ये सफल नहीं रहा था, पर इसरो की कहा जाता है कि शुरुआत यहीं से हुई थी। और हाँ, 3 जून 1965 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एड वाइट ने पहली बार स्पेस वॉक किया था। जी हाँ, स्पेस वॉक। अब उस वक्त का तो मुझे पता नहीं कि जब एड वाइट स्पेस वॉक कर रहे होंगे तो उनके दिल और दिमाग पर क्या चल रहा होगा, या उनके लबों पर कौन सा गीत वो गुनगुना रहे होंगे। लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिला होता और मैं स्पेस वॉक कर रहा होता तो मैं पता क्या गाता। जी हाँ, मैं गाता।

खैर आप इधर उधर मत जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आपके लिए। फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप सबके लिए, आनंद लीजिए और बनी रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, क्योंकि ये प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें मनोरंजन भी है और जानकारियां भी। और ये प्रोग्राम चलता है ठीक 9 बजे तक। 8 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और 8 बजे से जुड़ जाएंगी आरजे ज्योति आनंद। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।

0: से तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: बैंक के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूँ SR यानी संतोष राव। दोस्तों अभी आपने ये गीत सुना जो विन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज में फिल्म थी सत्यमेव जयते से, और इस गीत को फिल्माया गया है जॉन अब्राहम और दिव्या पर। वैसे जब जब जॉन अब्राहम की बात होती है ना, तो नजरों के सामने ऐसा लगता है जैसे मोटरसाइकिल पर जॉन अब्राहम चले आ रहे हैं ना, और कई फिल्मों में जॉन ने मोटरसाइकिल पर ही कई सीन शूट किए। लेकिन आज हम मोटरसाइकिल पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे बाइसिकल की, क्योंकि आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे, मतलब विश्व साइकिल दिवस है। और आज का ये दिन यूएन ने 2018 में इसीलिए घोषित किया ताकि लोग साइकिल के फायदे समझ सकें, क्योंकि साइकिल ना सिर्फ सेहत के लिए बढ़िया नहीं है बल्कि पर्यावरण

0: पर्यावरण फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट भी है जो अमीर गरीब सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। वैसे 1890 के दशक में साइकिल चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में अंग्रेजों के पास हुआ करती थी और फिर धीरे धीरे ये साइकिल हर घर घर में दिखाई देने लगी। अब वैसे ज़माना बदल रहा है तो लोग बाइक और कार से ज़्यादा सफ़र करते हैं, लेकिन हमारे डाकिया बाबू हैं ना, आज भी साइकिल से चिट्ठियाँ घर तक पहुँचाते हैं और जब वो लेकर आते हैं ना तो इतनी खुशी होती है ना। चलिए, बात हो रही है साइकिल की और विश्व साइकिल दिवस की, तो आपको वो गीत सुनाता हूं जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना पर और फिल्म है पलकों की छांव। गुलजार साहब ने गीत लिखा है और किशोर कुमार ने ये गीत गाया है, बिल्कुल आज के दिन पर फिट बैठता है।
1: डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।

0: जी हाँ दोस्तों, जब चिट्ठी आती है ना तो चिट्ठी का अपना एक अलग ही क्रेज होता है ना। अब चिट्ठी तो नहीं आई हमारे पास, लेकिन मैसेज जरूर आ गया है। किसने भेजा है नहीं बताऊंगा, लेकिन कह रहे हैं कि बात कम करिए और जल्दी से बता दीजिए कि आज कौन कौन है जो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए इनकी फरमाइश हम पूरी कर देते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरुगंडे अपना 44वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। 3 जून 1982 को जन्मी तृप्ति ऐसी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो एकल युगल दोनों खेलती हैं। 2009 में तृप्ति ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 3 बार रनर अप रहने के बाद पहली बार नेशनल टाइटल जीता था, और इसके अलावा साउथ एशियन गेम्स में 5 बार गोल्ड मेडल जीते इन्होंने। 2006 में मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था तृप्ति ने। आकाशवाणी एफएम रेनबो आज तृप्ति के 44वें जन्मदिन की देता है ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: और दोस्तों, इसके अलावा सारिका ठाकुर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं और अभिनेता कमल हासन की पूर्व पत्नी हैं, और इनकी 2 बेटियां अक्षरा और श्रुति हसन इनकी माँ हैं। और ये सारिका आज भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। तो आकाशवाणी एफएम रेनबो की ओर से इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इनके साथ साथ सुरेंद्र खन्ना जी भी, भारत के जो पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज रहे, भारत के लिए कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले हैं, ये भी आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको भी सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा आज जन्मदिन है पद्म विभूषण संगीतकार, गीतकार और सिंगर इलैया राजा का, जिनको साउथ इंडियन म्यूजिक का राजा कहा जाता है। 1970 से एक्टिव इलैया राजा ने अब तक 7,000 से ज्यादा गाने और 1,400 से ज्यादा फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। इनकी खासियत ये है कि ये गीत भी है ना खुद लिखते हैं और गाते भी हैं। आज इनके जन्मदिन पर आकाशवाणी एफएम रेनबो देता है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे मजेदार बात बताऊं आपको कि इलैया राजा अपना जन्मदिन एक दिन पहले ही 2 जून को मना लेते हैं। जी हाँ, आज बेशक उनका जन्मदिन है लेकिन इन्होंने कल सेलिब्रेट कर लिया, और वो इसीलिए क्योंकि तमिलनाडु के पूर्व चीफ मिनिस्टर करुणा निधि का जन्मदिन आज मतलब 3 जून को होता है, क्योंकि करुणा निधि जी ने इलैया राजा को इसी ज्ञानी का उपाधि दिया था। तो इसी सम्मान में इलैया राजा अपना जन्मदिन एक दिन पहले मना लेते हैं। बहरहाल, इनका ही कंपोज किया गया हिंदी फिल्म चीनी कम का टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं, जो 2007 में रिलीज हुई थी, और इस गीत को कंपोज किया है इलैया राजा ने, और मधुर आवाज दी है इसमें किसने, श्रेया घोषाल ने।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, यही तो प्यार है जो हमको और आपको खींच कर रखता है, एक साथ जोड़ कर रखता है आकाशवाणी एफएम रेनबो के जरिए। आप प्रोग्राम सुनते हैं, प्रोग्राम करने हम सुबह सुबह देखिए उठ जाते हैं 3 बजे और फिर तैयार होते हैं, फिर आ जाते हैं यहाँ प्रोग्राम करने के लिए। और ज्योति आनंद तो 6 बजे का प्रोग्राम करने आई, मतलब 5 बजे वो यहाँ पर आ गई थी आकाशवाणी, मतलब 1 घंटे पहले आना होता है। तो मतलब यही तो प्यार है हमारा और आप लोगों के बीच में, है ना। और हम ना देखते हैं दिन, ना देखते हैं रात, ना देखते हैं बारिश, ना देखते हैं तूफान, कैसा भी माहौल हो, कैसा भी पर कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम आ ही जाते हैं आपसे जुड़ने के लिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। बहरहाल अब कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का अगला भाग 8 बजे से 9 बजे तक संभालेंगी आरजे ज्योति आनंद। तो आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर बने रहिए क्योंकि अब हम आपसे मुलाकात करेंगे 9 बजे गीत दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर, ढेर सारे अच्छे अच्छे गीत लेकर आऊंगा, तो सुनिएगा जरूर, नॉन स्टॉप गीत संगीत होगा वो। तो इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव फिलहाल अभी लेता है विदा। नमस्कार।

हे लिसनर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम आकाशवाणी रेनबो के साथ. मैं हूँ अब आपके साथ ज्योति, लेकर ये वाला शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर. ये तो शो का नाम है, मगर मेरी गुड मॉर्निंग तो स्वीकार कीजिए. 8:07 हो चुके हैं और आज का प्यारा सा मौसम है, मतलब ठीक है. अभी धूप निकली हुई है और मगर आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबर है, बात करेंगे उसके बारे में. और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. बस यूँ ही इंजॉय करते रहिए आकाशवाणी रेनबो.

जब हम कहीं घूमने जाते हैं और फिर वहाँ से थक हार के वापस आ जाते हैं तो घर आके कितना अच्छा लगता है ना, सुकून मिलता है. ऐसे ही मुझे वापस आकर 8 बजे आपके साथ दोबारा जुड़कर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में बहुत अच्छा लग रहा है. और मौसम की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके आसपास का मौसम तो आप ही बताओगे खैर कि आप किस इलाके में हैं, वहाँ कैसा मौसम है. मगर अभी जहाँ हम हैं दिल्ली NCR में, वहाँ पर आज अभी सनी मौसम है, सनी सन आया हुआ है और अच्छा खासा चमक रहा है. तापमान की बात करूँ तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी, उसकी वजह से 36 डिग्री सेंटीग्रेड फील हो रहा है. मगर अच्छी बात ये है कि आज ना शायद कहीं कहीं पे बारिश हो सकती है. मगर उससे भी अच्छी बात ये है कि कल 4 और 5 जून को तेज़ हवाओं के साथ बारिश की उम्मीद है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है. और हवाएं तेज़ चलेंगी, कहीं कहीं तूफान भी आ सकता है. तो जब हम कहते हैं ना कि मौसम अच्छा हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, तो ऑफकोर्स काफ़ी लोगों को राहत मिलती है. मगर कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है और तूफान की वजह से दिक्कत परेशानी होती है. तो बस मेरा आपको बताने का मकसद यही था कि अभी भी मौसम ऐसे ही करवट लेगा और अगर तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान होता है, तो प्लीज़ अपने घर में रहें, बाहर ना घूमें कि मौसम अच्छा है. क्योंकि आंधी तूफान में और मिट्टी से काफ़ी सारी चीज़ें उड़कर आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं. तो इसीलिए देखते हुए कि मौसम कैसा है, उसको उस हिसाब से इंजॉय कीजिएगा. घर में रहकर भी काफ़ी इंजॉयमेंट हो सकती है. तो अभी फ़िलहाल जैसे समय है 8:13 और शायद आप अभी अपने घर पर हैं और इंजॉय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जाने की तैयारी हो रही होगी निकलने की. उसके साथ साथ सुनते रहिए.

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। और समय कैसे बदल गया है ना। पहले सिर्फ लैंडलाइंस होते थे, फिर सेलुलर फोन्स होते थे, फिर कंप्यूटर आया और हम पूरी तरह से अब डिजिटल हो चुके हैं। और आप हमें ऑन एआर ऐप के माध्यम से हर जगह कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और जैसे भी आपने सुना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए। तो अभी बताऊँ कि एक म्यूज़िकल ब्रेक लूँ चलो बता देती हूँ। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो CUET UG के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे थे, जो अब एडमिशन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मगर उससे पहले ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो देना होता है। तो उसकी जो परीक्षा थी वो किसी कारणवश कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से और ईद की वजह से जो है वो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो परीक्षा नहीं दे सके थे, जो कि होनी थी 31 मई को। तो अब उसके लिए नई डेट्स हैं 6 और 7 जून। और इसके लिए आप अपना जो आई कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए जो वेबसाइट

आपने ये तो सुना होगा ना कि योगा से ही होगा। ऐसे बहुत लोग कहते हैं जिन्हें हेल्थ की प्रॉब्लम होती है या योगा से जो जुड़े हुए हैं, तो योगा से ही होगा। काफ़ी सारी समस्याएं आपकी योगा से ही सॉल्व होंगी और योगा से ही एक रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। बड़ी कमाल की चीज़ होने वाली है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में होगा। जी हाँ, वैसे तो दिल्ली NCR की हम बात करते हैं, मगर ये हेल्थ से जुड़ी बात है तो इसीलिए हमारे देश से जुड़ी बात है।

तो हम इसकी बात ज़रूर करेंगे। आज है 3 जून और 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में होगा और इसमें 60 देशों के 529 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और जो भारत का दल है ना, जो भारत की तरफ से ग्रुप जाएगा वो सबसे बड़ा होगा। इसमें 114 खिलाड़ी शामिल हैं और इस चैम्पियनशिप को लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें केंद्रीय खेल मंत्री ने ये बताया कि योगासन 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में पारंपरिक खेलों में से एक होगा और 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए जो दावेदारी की जा रही है और उसमें अब ऐसा होगा कि तो हमारा भी खेल उस सूची में शामिल होना चाहिए और सरकार की तरफ से और जो योगासन भारत दोनों की ही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय तक योग एक ओलंपिक्स खेल बन जाए। चैंपियनशिप में 6 आयु वर्गों के लिए 12 कॉम्पिटिशन्स होंगे जिनमें से 10 वर्ष की आयु से लेकर 55 वर्ष तक के पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होंगे। तो कितनी मतलब वास्ट एज गैप दिया गया है कि 55 साल तक के भी महिलाएं और पुरुष इसमें शामिल हो सकते हैं और जिनकी उम्र 10 वर्ष है वो वहां से शुरुआत हो सकती है। और जैसा हम सब जानते हैं कि बस अब 21 जून को ही हम मनाएंगे इस बार का 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योग और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो आजकल एजिंग की भी हर कोई बात करता है तो इसीलिए इस बार की थीम भी बहुत खास है और हम बस अब जून में एंटर कर ही चुके हैं। विश्वास नहीं हो रहा कि 2026 स्टार्ट हुआ और हम बस मिड ऑफ 2026 हैं। बट स्टिल मैनी मोर अट्रैक्शंस एंड हैपनिंग्स एंड इवेंट्स इन आर वे और बस 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी होने वाला है। तो बस जिन्होंने अभी तक शामिल नहीं किया है, इसको अपनी ज़िंदगी में शुरू नहीं किया तो शुरू कर दीजिए क्योंकि योगा से ही होगा। सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में और भी बहुत काम की अपडेट्स हैं आपके लिए, यहीं मिलेंगे आपको 102.6 MHz पर।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ज्योति आपके साथ. 8:41 बाय द स्टूडियो क्लॉक. वेंसडे का दिन है. 6 जून हो चुकी है और 5 जून को हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. और इस बार की थीम जो है वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आर फ्यूचर. और ये तो बहुत ज़रूरी है. हमारे कितने सारे कामों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रॉय होती है. और इसी के मद्देनज़र एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है. हम रोज़ किसी न किसी कंपनी का मिल्क लेकर आते हैं. हम सबके घरों में कंजम्पशन होती है दूध की, और वो जिस पैकेट में आता है वो प्लास्टिक का पैकेट होता है. तो काफ़ी लोगों का ये कंसर्न होता है कि दूध तो यूज़ कर लेंगे मगर उसके बाद जो इसका ये जो प्लास्टिक रह जाता है इसको कहाँ डिस्पोज करें, या फिर ये किस तरह से मतलब एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचाता ही है ये. तो इसीलिए मदर डेयरी ने देश का पहला मिट्टी में प्राकृतिक रूप से घुलने वाला दूध का पैकेट लॉन्च किया है. और इस प्लास्टिक के पैक में दूध लेने से अब काफ़ी सारे लोगों को वो वाली टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी कि बाद में इसके प्लास्टिक का जो पाउच है उसको फेंकना पड़ेगा और जो एनवायरनमेंट को और मिट्टी को प्रदूषित करेगा. तो वो चिंता हट जाएगी, इस बात की अब चिंता नहीं रहेगी. और ऐसा पहला प्लास्टिक के पैक में प्रस्तुत जो किया जा रहा है वो इस कंपनी द्वारा किया जा रहा है. और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिल्क पैकेजिंग है जो बायो अवेलेबल वैक्स में बदल जाती है, जिसे मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स नेचुरली ब्रेक डाउन करके प्राकृतिक तत्वों में बदल देते हैं. और आप सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं होगा. आप कंज्यूमर्स को उसी कीमत पर जो पहले मिल रहा था प्राइस पर पैकेट वही मिलेगा. मगर अच्छी बात यह है कि जो ये पाउच है मिट्टी में ये नेचुरल तरीके से घुल जाएगा और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सॉइल को नुकसान नहीं करेगा. तो पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन ज़्यादा तो कंजम्पशन ज़्यादा और एनवायरनमेंट को उतना ही ज़्यादा नुकसान. तो इस तरह के कुछ बहुत यूज़फुल कदम उठाकर हम ज़रूर अपनी भागीदारी निभा सकते हैं. और ये आई थिंक एक बहुत अच्छा कदम है. और 5 जून को तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. तो आप अपनी तरफ से और क्या कर रहे हैं अपने सॉइल को, अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के लिए ताकि वो और ख़राब ना हो, वो आप बता सकते हैं या फिर उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं. सुनते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ज्योति के साथ, इन्जॉय करते हैं एक और खूबसूरत सा गाना. ऑनलाइन आकाशवाणी रेनबो.

एक और चीज़ है, अगर आपने उसको अपने घर पे छत पर लगा लिया, इस्तेमाल कर लिया, अपने जीवन में ले आए, तो बहुत कमाल करेगा। दिल्ली NCR में काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर RWA और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो सोलर सिस्टम लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं, और PM सूर्य घर योजना के तहत आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मुफ्त बिजली योजना का इस लाभ उठाने की अपील की जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे इंडिया में राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र में

ये स्टेट्स हैं नंबर वाइज जो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो राजस्थान में इसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर गुजरात में, फिर तमिलनाडु में. तो इस तरह से जिस तरह से एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ रही है और बिजली के बिल्स बहुत बढ़ रहे हैं, हम एसीज बहुत चलाते हैं और भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं गर्मी आते ही, तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है और ये एक अच्छा बदलाव हो सकता है कि अगर आप भी सोलर सिस्टम अपनी छत पर लगा लें. इंडिविजुअल घरों के ऊपर भी लग सकता है, मगर हाँ जो सोसाइटी में अभी फिलहाल उनको RWA और जो वहाँ के मेंबर्स हैं वो प्रेरित कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप टू टेक, है ना. इससे कितनी बचत होगी हमारी बिजली की और आप सारे उपकरण चला भी सकेंगे.

हाँ जी 8:56 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से और संतोष आ चुके हैं स्टूडियो में लेकर आपके लिए अगला कार्यक्रम जो आपके साथ होंगे वो 9 बजे लेकर दिल की तरह आने गाने नए पुराने और उसके बाद 10:05 से पूजा आनंद होंगी आपके साथ लेकर मैचलेस म्यूजिक आवर और कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा मगर फिलहाल मेरे जाने का वक्त बहुत नज़दीक है 9 बजे के बाद संतोष मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे इसलिए मैं चलती हूँ मिलूंगी आपसे फिर इन्हीं एयर वेव्स पर तब तक बाय बाय टेक केयर और ये एंजॉय करते रहिए म्यूजिक और आकाशवाणी रेनबो पर बहुत सारे शोज हैं आज पूरा दिन आपके लिए

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर गुनगुनाते रहिए इस पूरे एक घंटे, क्योंकि ये प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। मैं हूँ आज आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपये भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पूर्व में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या बात कही, दे ताली एंड कमिंग अप इज समवन हु विल होल्ड योर ब्रेथ एंड यस यू कैन इमेजिन हु इज ऑन एयर विद मी टुडे, समवन हु इज सो क्लोज टू ऑल ऑफ अस, समवन हु

0: What a gorgeous track from the super hit, surprisingly super hit movie Love Story. Way back into the past, we delve on a show which is simply called the Matchless Music Hour. Live only on Akashvani FM Rainbow 102.6 Musical Ears. Today we had this pleasant surprise of having D. Andrew with us on air live. It was a beautiful, beautiful chat that we were able to have with him. His song, I Will Not Forget to Play, I Recall a Gypsy Woman. But before that, let me quickly take on a couple of promos and advertisements. And after that, like I said, your messages and the number that I promised. So stay close, stay tuned, don't go anywhere. This is the place you gotta be for if you want your daily fix of yesteryear Western music. With me, Pooja Anand.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashvani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं घर में दो दो फ्रिज हैं फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है जीरो मैंने पूछा तो भतीजा बोला चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर
5: हर घर सूर्य घर
6: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

my mind. Gypsy Lee, I hear your laughter and the dance.

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: Devanshu, all the way from Gurugram. Thank you so much, sir, for that beautiful message. And I'm sure Andrew will be listening in and tuned in. Good morning, RJ. Good morning to you too. Very nice song playlist. Enjoying the show, says Pankaj from Amravati in Maharashtra. Thank you so much, sir. It's a pleasure to be on air and listen to shows and all your messages. Good morning. And this comes in from, I'm sorry, there's no name given. Please, if you message in, then hey, do remember to write in your name. 9868107070 is our number. Do tune in and pick up that WhatsApp and message in and tell us what you thought about the show, the songs, and yes, how's your morning going? Thanks a ton to you, Pooja, and dearest Andy, for playing this beautiful, beautiful song. Yes, it is, so speaks of this gypsy Banjaran always on move. Well, all can I say is, Induji, pleasure to have you on air too. Take a break. We'll be back soon.
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com. कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल

0: क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपये भेजना शुरू करेंगे। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका के केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव के बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। वक्त है जो एक और एक मिलकर 11 बजा रहा है, और ऐसे ही जब रेडियो जुड़ता है फिल्म जगत से, फिल्म जगत की बातों से, तो दोनों मिलकर 11 गुना एंटरटेनमेंट हमारी जिंदगी में लेकर आते हैं। फिल्म जगत की

अच्छा, बुधवार और एक दिन के बाद यानी फ्राइडे को रिलीज हो रही है दो फिल्में सिनेमा हॉल्स में एक साथ। जी हाँ, इस फ्राइडे 5 जून को दो फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं। फिल्म जगत के और फिल्म जगत में कॉमेडी के

अच्छा माने जाते हैं डेविड धवन साहब और उनके द्वारा डायरेक्टेड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है 5 जून को रिलीज हो रही है सिनेमा हॉल्स में। वरुण धवन, पूजा हेगड़े, चंकी पांडे, जिमी शेरगिल, मनीष पॉल, मौनी राय और मृणाल ठाकुर की ये फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और सिनी लवर्स को बहुत कुछ देके जाएगी क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेविड धवन साहब ने। इसी के साथ साथ आगे बात की जाए तो 5 जून को एक और फिल्म सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने वाली है और वो है अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर। जी हाँ, बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा, सबा आजाद, राजबी शेट्टी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे और ये फिल्म, जी हाँ, एक कौन सी फिल्म होगी, ये एक क्राइम ड्रामा फिल्म है और अगर है जवानी तो इश्क होना है फिल्म की बात की जाए तो ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। दोनों ही फिल्म के जॉनर बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं और ऐसे में सिने लवर्स किस जॉनर को पसंद करेंगे, किस फिल्म को देखने जाएंगे, ये वाकई ये देखने वाला होगा क्योंकि दोनों ही फिल्में अपने आप में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जाने वाले डायरेक्टरों द्वारा बनाई गई है। 5 जून यानी कि इसी फ्राइडे को, इसी शुक्रवार को रिलीज हो रही है वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है और इसी दिन 5 जून को रिलीज हो रही है बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
7: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

फिल्म जगत की बातों का साथ आपके साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में 112 सालों से भी ज्यादा समय से फिल्में हमें एंटरटेन कर रही हैं। जी हाँ जनाब, 112 सालों से भी ज्यादा समय से, आप इमेजिन कर सकते हैं। जी हाँ, एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जिंदगी में, और जिस तरीके से साल दर साल वक्त आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी वक्त के साथ साथ नए दौर आते चले जाते हैं जो अपने साथ नए बदलाव लेकर आते हैं। और आजकल की बात की जाए तो आजकल फिल्मों के सीक्वल्स और प्रीक्वल्स का दौर है, जिसमें पार्ट दर पार्ट बनकर फिल्में रिलीज हो रही हैं। और अब एक और दौर फिल्मों में देखने को मिल रहा है, एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और वो है सुपरहिट गानों को रिक्रिएट करके फिल्मों में इस्तेमाल करना। जुड़वां का गाना चलती है क्या 9 से 11 हो, या फिर बीवी नंबर 1 का गाना चुनरी चुनरी, ये गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं। चुनरी चुनरी गाने को 5 जून की रिलीज्ड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में रिक्रिएट किया गया है और इस्तेमाल किया गया है, और वरुण धवन इसमें नजर आ रहे हैं। वहीं एक और फिल्म अब आने वाली है 26 जून को जो रिलीज होगी, ये फिल्म है अक्षय कुमार की और फिल्म का नाम है वेलकम टू द जंगल। ये फिल्म यानी 26 जून को रिलीज होगी, और इस फिल्म में साल 2007 की फिल्म वेलकम का चार्ट बस्टर सॉन्ग ऊंचा लंबा कद गाने को रिक्रिएट किया गया है, और इस के साथ इस फिल्म में धमाल मचाने की कोशिश की गई है, तैयारियां की गई हैं। अब ये जो रिक्रिएट गाने हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इतने चार्टबस्टर और ब्लॉकबस्टर्स गाने जो हैं वो रिक्रिएट होकर लिसनर्स तक पहुंच रहे हैं, जो गानों के प्रेमी हैं उन तक पहुँच रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसकी ब्यूटी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। वहीं जो फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि ये जो दौर चल रहा है वो एक टर्निंग पॉइंट है फिल्म जगत में गानों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दोबारा से रिक्रिएट किए जा रहे हैं गाने वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आज की जनरेशन को भी पसंद आ रहे हैं। और जब उन्हें ये पसंद आ रहे हैं, जब वो अच्छी चीज़ें सुनेंगे तो आगे चलकर वो अच्छी चीज़ें क्रिएट करना भी शुरू कर देंगे, और आने वाले वक्त में जब ये टर्निंग पॉइंट एक पॉइंट पर पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से हमें बहुत ही खूबसूरत गाने, ओरिजिनल गाने सुनने को मिलेंगे। फिलहाल तो हम जो रिक्रिएट उन्हीं को एंजॉय करते हैं, और अभी हमारे पास है एक बिल्कुल खालिस ओरिजिनल गाना।

हम भी मर के जिंदा हो जाते हैं उस क्वेश्चन पर जिसका आंसर देकर हम और आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज। जी हाँ, वक्त हो चला है उस क्वेश्चन को शेयर करने का जिसका आंसर देकर आप बनेंगे बॉलीवुड सरताज। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपको अपना आंसर शेयर करना है। लेकिन आंसर शेयर करने से पहले क्वेश्चन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आज हमने बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि 5 जून को 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं सिनेमा हॉल्स में। आपको उन दोनों फिल्म्स का नाम हमें लिख भेजना है 9868107070 पर। 5 जून को यानी इस फ्राइडे को 2 फिल्में एक साथ सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो रही हैं। आपको उन दोनों फिल्मों का नाम हमें लिख भेजना है 9868107070 पर।

साल 1999, जी हाँ, इस साल रिलीज हुई थी ब्लॉकबस्टर फिल्म बीवी नंबर वन। और इस फिल्म ने 27 साल पूरे कर लिए हैं अपनी रिलीज के। सलमान खान, अनिल कपूर, करिश्मा कपूर, सुष्मिता सेन इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में नजर आए थे। डेविड धवन साहब द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और 27 साल पूरे होने के अवसर पर अनिल कपूर साहब ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म की पूरी टीम और फैंस को बधाई दी, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातें इस फिल्म के लिए कही, इस फिल्म से शेयर की। अनिल कपूर साहब ने कहा कि इस फिल्म ने उन्हें बहुत कुछ दिया, इस फिल्म को बनाते हुए भी उन्हें बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, साथ ही बहुत सारे अवार्ड्स भी इस फिल्म ने उन्हें दिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म ने उन्हें सलमान खान जैसा दोस्त भी दिया, और साथ ही साथ उन्होंने एक गाने के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताई, और वो गाना है हाय हाय मिर्ची। वो कहते हैं कि ये गाना एकदम इमीडिएटली बना था, पहले से इसके बारे में कोई हम सोच नहीं रहे थे। सारी की सारी टीम फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, और जो कंपोज़र हैं सुखविंदर साहब और गायक भी हैं वो थे, और उनको एक शब्द मिला, और फिर वो शब्द से जुड़ते जुड़ते जुड़ते हाय हाय मिर्ची वाला गाना बनता चला गया। और ये गाना फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना था और बहुत पसंद किया गया गाना था। अनिल कपूर साहब, इतनी खूबसूरत जानकारी आपने सभी फैंस के साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना जो फिल्म्स के, वो बहुत कुछ कह के जाते हैं, बहुत कुछ फील करवा के जाते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: और अब बॉलीवुड ट्रेल्स में वक्त हो चला है आज की सिकंदर से बातचीत करने का, यानी कि आज की बॉलीवुड सरताज से मुलाकात करने का। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप और कहां से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं नागौर राजस्थान से इरशाद अंसारी बोल रहा हूँ।
0: हाय इरशाद, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है मैडम।
0: ओके, बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप?
1: जी हाँ,
0: रोज सुनते हैं। क्या करते हैं आप?
1: मैं टेलर का काम करता हूँ मैडम।
0: अरे वाह, फिर तो आपको टाइम ही टाइम मिलता होगा, मतलब काम के साथ आप एंटरटेन भी कर सकते हैं अपने आप को।
1: जी हाँ, मेरे रेगुलर चलता ही रहता है, काम चलता रहता है और ऐसा मेरे रूम रेम बहुत चलता रहता है।
0: ओके, अच्छा आपका नाम है इरशाद अशरफी?
1: जी हाँ जी।
0: इस नाम का थोड़ा सा तो कुछ बताइए, इरशाद भी है और अशरफी भी है इसमें।
1: जी, क्या बताऊँ आपको।
0: हाँ, दोस्त क्या कहते हैं, इरशाद या फिर कहते हैं अशरफी?
1: दोनों है, कोई इरशाद भी बोलता है, कोई अशरफी भी बोलता है।
0: अच्छा, तो फिल्में देखते हैं इरशाद आप?
1: नहीं मैडम, मैं लगा कि रहना ऐसे मेरे को ही सुनता हूँ, फिल्में देखने का टाइम भी मिलता है, ऐसे मेरे को सुनता रहता हूँ दिन भर। काम चलता रहता है और मैं सुनता रहता
0: हूँ। ओके, तो बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम आपको कैसा लगता है?
1: मैडम बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, और आपने बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। आंसर बता दीजिए, आज हमने पूछा था कि 5 तारीख को, 5 जून को फ्राइडे को 2 फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं सिनेमा हॉल्स में, उनके नाम बता दीजिए।
1: पहली मूवी तो है ए जवानी तो इसको होना है, और दूसरी मूवी है बंदर।
0: बिल्कुल सही जवाब, आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज, बहुत बहुत बधाइयां।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू।
0: हाँ प्लीज़, हमारे प्रोग्राम्स ऐसे ही सुनते रहिए और हमें फीडबैक भी देते रहिए, और ऐसे ही व्हाट्सएप के माध्यम से हमें हमसे जुड़ते भी रहिए और जुड़े भी रहिए।
1: जी जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम।
0: ओके, नमस्कार, थैंक यू। इसी के साथ उन सभी लिसनर्स के नाम भी ले लिए जाए जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। कान से मोहम्मद फुरकान, उमेश कुमार दिल्ली से, मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से, मोहम्मद कासिम बिजनौर से, शैलेंद्र वर्मा बुद्ध विहार से। साहब, बुद्ध विहार कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, कौन सी कॉलोनी में है, प्लीज़ बताइए कौन सी सिटी में है। इरशाद अशरफी नागौर राजस्थान से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वो बने हमारे आज के बॉलीवुड सरताज, उन्हें एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, अफशा खानम बिजनौर उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं। दानिश खतौली से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऋषु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, विनीत कुमार बदायूं यूपी से, आसिफ सैफी मेरठ से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ईशा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से सही जवाब, सलीम मलिक मेरठ से, शुकलाल बाला कूच बेहर वेस्ट बंगाल से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मोहम्मद इम्तियाज दिल्ली से सही जवाब, जय नंद त्यागी मोदी नगर से, विजय कुमार कामंत दिल्ली से, और रवि कुमार राहुल अम्बाला हरियाणा से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसी के साथ शालू दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं कि मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एक अलग विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस किए हैं, किट ने किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस किए हैं, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता

0: बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।

0: विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित

कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगेन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का प्रोग्राम अगर वैज्ञानिक नज़रिए के साथ शुरू किया जाए तो वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक की खोजों के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, जीवन जीना संभव है। देखा जाए तो हमारी पृथ्वी सभी प्राणियों का एक बड़ा सा घर है जहाँ हम सभी रहते हैं। और जब घर की बात आती है तो हमारे जहन में उभर कर आता है हमारा घर जहां हम रहते हैं। आज बात पृथ्वी की हो रही है, हमारे घर की हो रही है, हमारे जीवन की हो रही है। और पृथ्वी पर जीवन को तभी जिया जा सकता है जब पृथ्वी का पर्यावरण हमारे जीवन के जीने योग्य हो। जी हां, पर्यावरण की बात निकली है, जून का महीना है, 5 जून बिल्कुल करीब है और 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है, जागरूकता फैलाना है और उन छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रेरित करना है जिससे कि हम अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बचा सकें। साथ ही हम आज जो विषय लेकर आए हैं वो बहुत ही खास है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड भी है। आज का हेल्पलाइन प्रोग्राम का विषय है ग्रीन होम्स, ग्रीन फ्यूचर। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर फैयाज खुदसर, सीनियर साइंटिस्ट बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: सर, पहले तो आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: थैंक यू मैडम।
1: जी सर, आज का जो विषय है वो है ग्रीन होम्स, ग्रीन फ्यूचर। सबसे पहले जानना चाहिए

0: जब हम घर की बात करते हैं, होम की बात करते हैं, तो हम पृथ्वी को भी अपना घर मानते हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारा शहर भी हमारा अपना घर है, हमारा खुद का घर भी हमारा घर है। और जब पर्यावरण की बात करते हैं तो ये सारे के सारे एक लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है और हमें जीवन जीने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पर कि जीवन सही से जिया जा सकता है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है, ग्रीन होम्स क्या चीज़ है और ग्रीन फ्यूचर क्यों इंपॉर्टेंट है।
1: देखिए, इंसान तो बहुत ही सेल्फिश नेचर है, तो पर्यावरण को एक लाइन में कहूँ मैं, बचाना है क्योंकि मुझे बचना है।
0: जी
1: आप ज़रा गौर करें, आपने अपने बात में पहले बात रखी थी कि ये धरती एक जगह है जहाँ जीवन है। क्यों है? क्योंकि बायोस्फीयर पे ही सिर्फ पीने का पानी है, सफिशिएंट पीने का पानी है। तो
0: जी
1: आप ज़रा सोच लें, हमें जीने के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, हवा और पानी, और दोनों को बनाने के लिए इस पर्यावरण की आवश्यकता है। और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी की आवश्यकता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ही उस हवा पानी को बनाती है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियली इतना हवा पानी नहीं बना दिया
0: जी
1: जिस पे
0: बिल्कुल
1: जीवन चल सके,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: प्रकृति ही इस हवा पानी को बनाती है, इसलिए पर्यावरण आवश्यक
0: जी बिल्कुल। और ये बिल्कुल फ्री मिलते हैं हमें,
1: है।
0: हवा और पानी की बात की जाए तो कम्प्लीटली फ्री हैं, और इनका सही से अगर हम इस्तेमाल करें तो सदियों तक हम जिंदगी को बचा सकते हैं पृथ्वी पर। और अगर ये दोनों चीज़ें दूषित हो गई तो जीवन को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सच्चाई है। मुश्किलें कुशादा होंगी अगर हम इनको बचा रखेंगे, क्योंकि कभी ये रिन्यूएबल सोर्स होती थी रिसोर्स, अब वो रिन्यूएबल नहीं रह गई। पानी भी मुश्किल में है, हवा भी मुश्किल
0: हवा
1: में
0: भी
1: है।
0: दूषित हो चुकी है। बहुत ज़रूरी है हम सही से जिंदगी को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए अपने पर्यावरण को बचाएं, ऐसे काम करें जिससे कि पर्यावरण संरक्षित रहे। आज हम विषय लेकर आए हैं ग्रीन होम्स ग्रीन फ्यूचर। आपके पास भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर।

0: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी, आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन, हमारे साथ प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। और आज हेल्पलाइन में हम विषय लेकर आए हैं ग्रीन होम्स ग्रीन फ्यूचर। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर फैयाज खुदसर, सीनियर साइंटिस्ट बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम। सर, बात एनवायरनमेंट की, बात पर्यावरण की, तो आज की बात की जाए तो आज पर्यावरण से संबंधित किन किन समस्याओं से हम रूबरू हो रहे हैं और किन किन समस्याओं प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं हमारे सामने?
1: देखिए, हमने सबसे पहला काम तो ये किया कि डेवलपमेंट में एक पैराडाइम शिफ्ट लाया और उससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उसे बहुत असर हुआ। दो मेजर जो सिस्टम होता है, फॉरेस्ट और रिवर, वो बहुत इफेक्टेड हुआ, जिसकी वजह से हवा पानी दोनों ही प्रभावित हुई। हवा प्रदूषित हो गई, पानी की किल्लत हुई, पानी प्रदूषित हो गई। और हम क्या करते हैं, एक्चुअली पर्यावरण दिवस की बात कर रहे थे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, आज के दिन 1972 में पहली बार ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट की बात स्टॉकहोम में की गई थी, यूनाइटेड नेशन में कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस के लिए कि हम आगे अभी तक क्या कर पाए। तो आप देखें, जब जिंदगी इंसान की कुशादा तब थी जब जंगल बहुत थे, हमारी नदियाँ बहती रहती थी, लेकिन जैसे ही नदियाँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी नदियाँ बूढ़ी हों। तो नदियाँ जब बूढ़ी होंगी तो ज़िंदगी के जो मायने हैं, जो ज़िंदगी के एक मापदंड हैं, उसे बहुत कमी आएगी। जैसे पीने के पानी का उदाहरण लें आप, कभी मैंने नहीं सोचा अपने जीवन में कि पानी की कभी किल्लत होगी, लेकिन शहरों में, गांव में भी पानी की किल्लत होने लगी। इससे ऐसा लगा कि जो प्राकृतिक की नलिकाएं, जिसको एक्वीफर्स कहते हैं, ज़मीन के अंदर, वो रिचार्ज नहीं हो रही हैं। कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी कमाई छोटी है और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, पानी धरती में कम डाल रहे हैं और उसको ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो ये जानने की ज़रूरत है कि जैसे ही एयर वाटर प्रभावित होगा, जीवन के दूसरी सारी चीज़ें इफेक्टेड होंगे, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट के बिना जीना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है।
0: जी बिल्कुल सही बात की आपने कि हवा और पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। ज़िंदगी को जीने के लिए इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो सर, जब बात करते हैं हम कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनका कोई सलूशन भी तो होगा, क्योंकि इतने टाइम से काम चल रहा है और इतने पहले से ही हमें पता चल गया था कि हमें पर्यावरण को संरक्षित रखना है जीवन के लिए।
1: देखिए, प्रॉब्लम्स को आप देखेंगे, जो हीट आइलैंड इफेक्ट की बात है, शहर गर्म होता जा रहा है और अभी रीसेंट पास्ट में हम लोगों ने महसूस किया है। कुछ स्टडी भी हमने अभी रीसेंट देखी कि जब दोपहर में छत की गर्मी, छत के ऊपर 72 डिग्री सेल्सियस है, तो जहां फॉरेस्ट कवर है वो 42 डिग्री सेल्सियस है। तो आप ज़रा सोचें, जब समाधान की बात कहते हैं तो प्रकृति ही समाधान है। प्रकृति, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रिस्टोर करना ही समाधान है। जैसे आप दिल्ली का उदाहरण लें, दिल्ली में दो लैंडस्केप है, रिवर यमुना एंड अरावली हिल रेंजेस, दोनों की हालत ख़राब है। अगर दिल्ली के भारत सरकार का की संस्था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़े अच्छे काम किए, नेटवर्क ऑफ बायोडायवर्सिटी पार्क एस्टेब्लिश किया, दिल्ली में 7 पार्क हैं, जहां पर यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क देश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बना और वहां कोशिश की गई कि यमुना के जो नैसर्गिक जैव विविधता थे उसको पुनर्स्थापित किया गया, उसके वेटलैंड को रिस्टोर किया गया। अब वहां देखें, पौधे जानवर साथ रहने लगे, और पौधे जानवर जब साथ रहते तो उसी को कहते हैं इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इनिशिएट होना, और जब वो प्रोसेस इनिशिएट होता है तो इकोसिस्टम फंक्शन होता है और आपको हवा पानी मिलने लगती है, कार्बन, स्पेशली कार्बन फुटप्रिंट धरती पे कम होता है। तो जब ग्रीन होम की आप बात करते हैं तो ज़रूरत है, ग्रीन होम क्या होगा अगर गौर करें तो हम देखें कि इन्वायरमेंट पे फुटप्रिंट हमारा कितना रिड्यूस हो उस घर में, और कॉस्ट जो लिविंग का है वो भी कट ऑफ हो। तो आप गौर करें, यहाँ पर आपकी पुरानी बिल्डिंग चारों तरफ से दरख्तों से भरी है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आप सोचें, एनर्जी डिमांड कम है, एनर्जी डिमांड कम हो जाती है। उसी प्रकार जो वृक्ष हैं, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन से वो वाटर वेपर बनाती हैं, जो एम्बियंट टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और हमें कूलिंग महसूस होती है। तो धरती जब गर्म हो जाती है, धरती जब पक्की होती है, ये जो अर्बन हीट आइलैंड क्यों पैदा होता है, सूरज की रोशनी निरंतर पड़ रही है और ये पत्थर इन सबको एब्जॉर्ब करते हैं। फिर रात में, इवनिंग में लेट इवनिंग वो इमिट करते हैं, गर्मी और रात में ही बढ़ जाती है।
0: हाँ जी।
1: आप देखें एम्बियंट टेम्परेचर रात का भी बहुत ज़्यादा रह रहा है, वो बहुत मुश्किल का सबब है। और जितना ही कॉन्क्रीट सरफेस होगा तापक्रम उतना बढ़ेगा, तो ज़रूरत है हमें ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की अधिक से अधिक, जो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेन स्ट्रीमिंग की जाए, तभी हमारी ज़िंदगी कुशादा हो पाएगी।
0: जी बिल्कुल, आपने अभी बिल्डिंग्स की बात की, कंक्रीट की बात की, तो आजकल देखने में आ रहा है कि लोग जो मिरर वर्क है, शीशे का काम ज़्यादा, शीशे की बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा बन रही हैं, घरों में भी बहुत ज़्यादा, बालकनी में भी इवन वो लगा देते हैं शीशे, तो उससे क्या ज़्यादा गर्मी उत्सर्जित होती है?
1: आप ज़रा देखें कि गर्मी तो उतनी आ रही है जो सूरज की, तो अगर शीशा है तो वो जो हाई वेवलेंथ का की लाइट है वो अंदर आ जाएगी और अंदर का तापक्रम बढ़ जाएगा, राइट। और दूसरा क्या असर होगा, आप उस तापक्रम को ठंडा करने के लिए फिर जो बड़ी मुश्किल से हम बिजली बनाते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो शीशे का तो बहुत कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। बल्कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि जो विंडो पैंस हैं वो चिड़ियों के लिए भी कितनी ख़तरनाक हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हाई स्पीड में आने वाली चिड़िया कई बार इससे डायरेक्ट टकरा जाती है और उनकी मौत हो जाती है। तो हमें अपने वॉडी कॉल घोंसले को, इंसानी घोंसलों को अलग ढंग से संभालना होगा। ऊंची, जब बहुत ऊंची बिल्डिंग बनती है, गलियां पतली हो जाती हैं, तो हवा का सर्कुलेशन कम हो जाता है, ये हीट आइलैंड इसलिए तो बनता है
0: जी।
1: आप ज़रा सोचें, तो हमें फिर से सोचना होगा कि हमारी ज़िंदगी जो पहले थी वो कुशादा थी, विकास हो, लेकिन कोई भी विकास जो हवा पानी से ऊपर हो जाए उसे हमें उस पर ठहर जाना चाहिए, थोड़ा विराम देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे सांसें चलती रहें, हमें पीने का पानी मिलता रहे और विकास भी उसी गति से चलता रहे। विकास की गति कहीं इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो इंसानी ज़िंदगी से ऊपर चली जाए, तो डेवलपमेंट के मैट्रिक्स से इन्वायरमेंट को कम्प्लीट वाइपआउट नहीं होने देना है। और जैसा हमने सरकार के उदाहरण को बताया कि दिल्ली में बायोडाइवर्सिटी पार्क्स प्रोग्राम चल रहा है और दिल्ली

0: डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इतनी अच्छी काम की शुरुआत की दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलके, वो अपने आप में एक उदाहरण है और उसे सीख के कई राज्यों में इसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है, जिसमें लैंडस्केप और रिवरस्केप को रिस्टोर करने का एक कारगर वैज्ञानिक उपाय बताया गया है, जहाँ पर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की मदद से डिग्रेडेड इकोसिस्टम को फिर से रिस्टोर करते हैं जो आपको हवा पानी मुहैया कराते हैं।
1: जी बिल्कुल सर, जून का महीना चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, ऐसे में अक्सर देखने में आता है कि शहरों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन जब हम गाँव की तरफ जाते हैं तो वहाँ के टेम्परेचर में हमेशा कुछ ना कुछ गिरावट रहती है, वहाँ का ठंडा टेम्परेचर रहता है, वातावरण ठंडा रहता है, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि कैसे हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, कैसे गाँव का जो खूबसूरत सा वातावरण है उसको शहरों में कैसे ला सकते हैं।
0: देखिए, अर्बन रूरल में सबसे बड़ा फर्क होता है सरफेस का। जो अर्बन सरफेस है वो हार्ड सरफेस है, कंक्रीट का सरफेस है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अक्सर हाँ होता है कि अर्बन एरिया में सिग्निफिकेंट टेम्परेचर राइज हम महसूस करते हैं जो रूरल में नहीं है, क्योंकि सरफेस ऐसा है जो सारे टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, एल्बिडो कम हो जाता है, मतलब सूरज की रोशनी को वापसी जाने का मौका नहीं मिलता, बल्कि वो इसके अंदर समाहित हो जाते हैं और ये पत्थर फिर से गर्मी और निकालते हैं। और यही मुश्किल है कि जितना भी हार्ड सरफेस होगा, ग्रे सरफेस होगा, तापक्रम बढ़ता जाएगा और इसलिए अर्बन हीट आइलैंड एक इफेक्ट की तरह देखा जाता है। और शहरों के रिन्यूअल के लिए, अर्बन रिन्यूअल, अर्बन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए और क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए ज़रूरत है मोर एंड मोर ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसका मतलब है हमारी नदियाँ, उसको ब्लू ग्रीन कहते हैं, हमारे वेटलैंड्स, उसको ज़िंदा रहना, और उसको ज़िंदा रहने के लिए विज्ञान का एक पहलू है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, उसके माध्यम से उसको सही हम कर सकते हैं। और दिल्ली में ही भारत सरकार के दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह कर दिखाया है कि पानी, जो नाले का पानी निकलता है उसको भी हम कैसे साफ कर सकते हैं बिना बिजली के, इस फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से। तो ये सारे उदाहरण हैं जो सरकार कर रही है और मुझे लगता है इसको द्रुत गति से चलाने की ज़रूरत है, तेज़ चलाने की ज़रूरत है, जिससे इंसानी ज़िंदगी ज़्यादा कुशादा हो सके।
1: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देती है, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन देती है। पर्यावरण के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तभी पृथ्वी पर मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन होम्स ग्रीन फ्यूचर की। आप भी हमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
1: महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो, रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन होम्स ग्रीन फ्यूचर की। हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर फैयाज खुदसर, सीनियर साइंटिस्ट बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम। और अगर जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के कई सारे इश्यूज हैं, समस्याएं हैं जो हमें हमारे आसपास नजर आती हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई और इसी के साथ साथ नदियों का भी दूषित होना बहुत बड़ा नुकसान लेकर आता है मानव जीवन के लिए। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो हमारे जहन में उठते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। इसी के साथ हमारी दो फ़ोन लाइन्स हैं जो स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। आप फ़ोन करके भी अपने क्वेश्चंस एक्सपर्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके समाधान जान सकते हैं। फ़ोन नंबर 0112342108 0112342108 4। और सीधा व्हाट्सएप मैसेजेस की तरफ चलते हैं। सर, भगवती सिंह का मैसेज आया है दिल्ली से। वो कहती हैं कि पृथ्वी पर जो समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है, क्या उससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है?
4: आप देखें, ओशन का रोल बहुत बड़ा है। हमारे जो क्रियाकलाप हैं इंसानों को, जिसके वजह से तापक्रम बहुत तेज़ी से समुद्र का बढ़ रहा है, उससे नुकसान क्या हो रहा है? एक तो मरीन इकोसिस्टम तो नुकसान पे आ ही रहा है, क्योंकि मरीन आप इकोसिस्टम को देखेंगे, उसके एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, मरीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। तो आप सोच लें कि अगर टेम्परेचर बहुत रेज हो गया, वो पौधे ख़राब होने लगे, मरने लगे, तो कार्बन का उत्सर्जन एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा, फिर ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में वो मदद करेगा। इतना ही नहीं, ओशन का सबसे बड़ा रोल है वेदर पैटर्न को कंट्रोल करना। वो कैसे करते हैं? पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है, वाटर वेपर बनता है, वो पार्टिकुलेट मैटर से जुड़ जाता है, उसका जब वजन बढ़ जाता है बारिश की तरह धरती पर गिर जाता है। पानी फाइनाइट है, जान लें आप, और इसीलिए जो भी फाइनाइट होता है प्रकृति ने उसको रिसाइकल करने की शक्ति दी है, और ओशन इसमें सबसे बड़ा मदद करता है, जो बादल का बनना और बारिश का होना। तो इसलिए अगर ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मरीन इकोसिस्टम तो जाएगा ही, हमारे जो वेदर पैटर्न है वो काफी प्रभावित होंगे।
3: जी बिल्कुल। एक कॉल आ रही है तो कॉल हम ले लेते हैं। आप हेडफोन जी। हेलो।
5: हेलो।
3: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
5: अमित बात कर रहा हूँ मैम।
3: हाँ जी प्लीज अमित बताएं, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं?
5: मेरा सवाल है कि जल को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमें क्या योगदान देना चाहिए?
3: अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि जल को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं।
4: ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि वही बेसिस है। देखिए, जो हमें देखना होगा कि हमारे पास हम कितने पेड़ों को, कितनी प्रकृति को एकोमोडेट कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, विकास की गति में हमें लगा कि पाँव में कीचड़ नहीं लगना चाहिए, पाँव में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, हार्ड सबस्ट्रेटा की तरफ हम चलने लगे। तो आप देखें, आपके पास जितने भी स्पेस हैं, अगर ट्री का स्पेस है तो ट्री लगाएं, श्रब का स्पेस है श्रब लगाएं, अगर कुछ स्पेस नहीं तो पॉट में हर्बेशियस लेयर लगाएं, लेकिन याद रखें वो स्थानीय प्रजाति के पौधे हों। नहीं तो विथ ऑल गुड इंटेंशन जितने भी प्लांटेशन किए जाते हैं, अगर वो नॉन नेटिव हैं तो उससे फायदे की जगह नुकसान होता है। सो स्थानीय प्रजाति के पौधों को लगाएं और लाभ पाएं।
3: जी बिल्कुल। साथ ही उन्होंने पूछा था कि पानी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं।
4: सबसे बड़ी बात है पानी में, ज़रा सोचें कि हम धरती के अंदर के पानी को, जिसको एक्वीफर्स कहते हैं, उससे अपने सिर पे रखा, अपने छत पे रखा काला दानव, काला दानव कहते हैं टैंक को, उसमें ले जाते हैं, वो साफ पानी होता है, फिर उसको अपने बाथरूम से गंदा करके बाहर निकालते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि कपड़े धुलने के लिए, नहाने के लिए हमें कितना कम से कम पानी का उपयोग करना है। एक तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपके आसपास सरफेस रन ऑफ को जमा करने के लिए, बारिश के पानी को जमा करने के लिए अगर कोई ताल तलैया तालाब वेटलैंड है और सरफेस रन ऑफ बाधित हो रहा है, तो कैसे आप मदद करें कि वो सारा पानी वहाँ जमा हो, जिससे एक्वीफर रिचार्ज होगा और आपको निरंतर पानी देगा।
3: जी बिल्कुल। एक और कॉलर हैं जो हमसे जुड़ने वाले हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो
6: हेलो नमस्कार।
3: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछें।
6: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
3: हाँ जी प्लीज राकेश जी अपना क्वेश्चन पूछिए।
6: जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे शिमला में ज्यादा गर्मी होती है जो कि पहले नहीं होती, हम पहाड़ों को जो कटाई हो रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, हम पहाड़ को फिर से दुरुस्त करना चाहते तो किस तरह से कर सकते हैं, मेरा ये सवाल है।
3: जी बिल्कुल। आपका नाम, आपने क्या बताया?
6: राकेश
3: जी का क्वेश्चन है शिमला से। वो कहते हैं कि पहाड़ों की कटाई की वजह से जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, शिमला में भी टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम पहाड़ों को किस तरीके से बचा सकते हैं।
4: ये सवाल बहुत गंभीर है। अगर आप गौर से देखें, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने चीज़ों को इस प्रकार करना शुरू किया, हमारी डिमांड होती है चौड़ी सड़कें, हमारी डिमांड होती है अधिक से अधिक विकास, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबका कैरिंग कैपेसिटी है। हमारे हिमालयाज जो यंग पहाड़ हैं वो बढ़ते रहते हैं, हमने वहाँ पर अपने हिसाब से सड़कें बनाई, अपने हिसाब से कटाई करी, और जब कटाई करते हैं लैंडस्लाइड हो रहा है, तो हमें बहुत, और लैंडस्लाइड से सबसे ज़्यादा नुकसान ह्यूमन लाइफ को होता है, क्योंकि सारे पेड़ जो पहले कभी वहाँ जम के पकड़ के इसको रखते थे, उसमें बहुत कमी आ रही है। तो हमें ध्यान देना होगा कि जो भी सड़कें बनती हैं, क्या हम अनियमित ढंग से जेसीबी से पहाड़ को किसी एंगल, जिस तरह से सोचें कि हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्या रास्ता निकाल सकते हैं कि सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो, क्योंकि हिमालयाज बढ़ता हुआ पहाड़ है, वो इसको झेल नहीं पाता है, वो फ्रजाइल इकोसिस्टम है, और इसीलिए मुश्किलें आ रही हैं जो निरंतर बारिश के वक्त लैंडस्लाइड दिखने को मिलता है। इसमें एक्चुअली हमारे आवश्यकताओं को राकेश जी देखना होगा कि हम किस तरह से कन्विंस कर पाते हैं गवर्नमेंट को कि हमारी ज़रूरत इतनी ही है, जितनी ज़रूरत बढ़ती है सरकार आगे उसमें विकास करती है, क्योंकि हमारा डिमांड होता है और वो विकास पहाड़ों के लिए घातक साबित होता है।
3: जी बिल्कुल। चंद्रपुर महाराष्ट्र से एक मैसेज आया है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना, और वो कहते हैं कि उनके यहाँ पर बहुत पहले उनकी सिटी बहुत ज़्यादा ग्रीन थी, लेकिन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पेड़ों की कटाई की गई और कई सारे चेंजेस किए गए, जिसकी वजह से जो ग्रीनरी है वो बहुत कम हो चुकी है। वो कहते हैं कि कई बार गवर्नमेंट को भी कहा गया है, लेकिन वो कहते हैं कि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, साथ ही साथ प्रकृति को बचाना भी ज़रूरी है, तो दोनों काम, डेवलपमेंट और प्रकृति को बचाना, दोनों काम एक साथ कैसे किए जा सकते हैं और कैसे करने चाहिए?
4: देखिए कंपेरेबल तो नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। आप ज़रा गौर करें कि मुझे जहाँ तक याद आता है कि WHO कहता है कि आपके घर के 300 के मीटर पर कम से कम एक पार्क होना चाहिए। तो इसी गाइडलाइंस को अगर गौर से देखें, हमारे पास जो पार्क होते हैं वो सिलेक्शन वन के पार्क न बने, घास लगा दिया और वो पार्क बन गए, बल्कि उस पर स्थानीय प्रजाति के पेड़ होने चाहिए, जैसे टॉप कैनोपी के पेड़, मिडिल स्टोरी के पेड़, अंडर स्टोरी, फिर ग्राउंड वेजिटेशन। अगर ये 3-4 स्टोरीज के फॉरेस्ट हम अपने कॉमन गार्डन में भी बनाते हैं, तो जो ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं डेवलपमेंट से, उसको मिटिगेट करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आसपास सड़क के किनारे अगर गौर करें, वो स्थानीय पौधे के वृक्ष कैसे हों, सड़क के बीच में जो बनता है जिस पर पौधे लगाते हैं, उस पर शर्बी और हर्बेशियस लेयर कैसे हो जो धूल कण को उस पर समाहित रखे, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारे डिमांड, मतलब पब्लिक डिमांड, उस डायरेक्शन में कम होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो आपने सवाल किया, ज़रूरत है उस डिमांड की कि हमें ग्रीन एरिया चाहिए, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारे यहाँ तालाब ज़्यादा चाहिए, वाटर बॉडी ज़्यादा चाहिए, जो सिलेक्शन वन ग्रास लगा के दिखाने वाला पार्क है सुंदर, उसमें ट्री चाहिए, स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को लगाना है जो हमें कूलिंग करेगा, जो हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, जो डस्ट को कम करेगा।
3: बिल्कुल। मोहम्मद इम्तियाज का कीर्ति नगर दिल्ली से मैसेज आया है, वो कहते हैं कि उनके एरिया में कीर्ति नगर में 10 पार्क हैं जो बहुत अच्छे खासे बड़े हैं, मतलब ज़मीन बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि लेकिन सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से उसमें घास फूस ही उगा रहता है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि कैसे हम सब लोग उन पार्क्स में किस तरीके के पौधे लगाएं कि जिससे कि वो पर्यावरण को बचाने में सहायक हों और पर्यावरण को सपोर्ट करें स्थानीय लोग।
4: अगर बड़े पार्क हैं तो याद कर लें कि आपके 4 कोने हैं, 2 मिडल एरिया है, तो आप गौर करें कि एक कॉर्नर के बड़े एरिया को आपको वुडलैंड में तब्दील करना चाहिए। वुडलैंड कौन होगा? जो स्थानीय प्रजाति का होगा, जैसे मित्र गायना, जैसे जंगली कदम का पौधा है, बूटिया मोनोस्पर्मा को कहते हैं पलाश का पौधा है, इस तरह के पौधे को, हरर बहेड़ा का पौधा है, आंवला का पौधा है, वाइटेक्स नगेंडू के निरगुंडी का पौधा है, इन सारे जो स्थानीय प्रजाति के पौधे हैं, जो दिल्ली के स्थानीय पौधे हैं, उसको गूलर है, इन सबको लाना है। पीपल बरगद अधिक नहीं लगाना, क्योंकि पीपल बरगद माइथोलॉजी में भी राजा वृक्ष हैं और

0: ऐसे भी की स्टोन स्पीसीज हैं, उनको बहुत बड़ा एरिया चाहिए, तो लगाएं तो सिर्फ पूरे एक पार्क में एक ही लगाएं, क्योंकि वो बड़ा महान ट्री है, वो राजा ट्री है, तो वो सारे पार्क को देखेगा। तो स्थानीय पौधे के अगर पौधों को, पेड़ों को और पौधों को हर कॉर्नर पर स्थापित करेंगे, वुडलैंड में तब्दील करेंगे, तो पर्यावरण में निश्चित रूप से सुधार
1: जी बिल्कुल। निहारिका का मैसेज आया है साउथ दिल्ली से, वो कहती
0: होगा।
1: हैं कि दिल्ली में कई सारी कॉलोनीज हैं जिनमें छोटी छोटी गलियां होती हैं, दोनों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, गलियां छोटी हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, सबके घरों में एसी लगे हुए हैं जिनसे हीट उत्सर्जित होती है और इस वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या किया जाए कि गर्मी को कम किया जाए और पर्यावरण को संरक्षित भी किया जाए?
0: ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है कि अगर गौर करें तो। यही तो एक रीज़न, एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जो अर्बन हीट आइलैंड जो बनता है उसमें ये तंग गलियां भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो उन गलियों में पक्की सड़कें हैं, नली गलियां भी पक्की हैं, तो कोशिश करनी होगी कि इसमें पॉटेड प्लांट ऐसे लगाए जाएं जो उस टेम्परेचर को भी झेल लें और एटलीस्ट पार्टिकुलेट मैटर को रेगुलेट करें, कुछ वाटर वेपर वहाँ पे बना सकें, क्योंकि जितनी भी ये गलियाँ हैं वो पक्की होती हैं और उन उसमें मॉइस्चरिज्म ज़ीरो होता है।
1: जी
0: जब तक ऐसा नहीं होगा मॉइस्चरिज्म, तो वहाँ पे तापक्रम को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इसलिए पॉटेड प्लांट मे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
1: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है रिद्धि का, वो कहती है कि कार्बन फुटप्रिंट, ये जो शब्द है इसका कई बार इस्तेमाल होता है, जब हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसको आसान शब्दों में वो समझना चाहती हैं कि कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है?
0: अगर आप दिल से देखें, आपने अगर पढ़ा हो फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं, पौधों के जीने के लिए, खाना बनाने के लिए मुख्य क्रिया है, जिसमें वातावरण से कार्बन डाई अवशोषित करके और जल और लवण की मदद से ये भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं पौधे, और इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जो कार्बन फिक्स हो जाता है परमानेंटली, इनके लीफ धरती पे गिरते हैं और वो ज़मीन में फिक्स हो जाता है। इस तरह से कार्बन फुटप्रिंट जो एटमॉस्फेयर में खुले घूम रहा था, तापक्रम बढ़ा रहा था, वो पौधों के अंदर समाहित होके परमानेंट जमा हो गया। इस तरह से कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल। एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो।
2: हेलो
1: हाँ जी, प्लीज अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए।
2: जी नमस्कार, पहले तो आपको और डॉक्टर साहब को भी।
1: जी नमस्कार।
2: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अविनाश से।
1: हाँ जी अविनाश जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए।
2: जी मेरा क्वेश्चन है कि त्रिपुरा में देखिए पहले गर्मी बहुत कम थी, सामान्य मौसम तो मतलब सुना था जो हमारा मौसम था, लेकिन आजकल देखिए रबड़ का यहाँ पर लोग ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं, तो इस वजह से क्या गर्मी मतलब बढ़ रहा है, ये मुझे पूछना था। और इससे अगर बढ़ रहा है तो हम लोग कैसे इसे सुधार सकते हैं फिर से
1: जी?
2: पहले जैसा?
1: जी बिल्कुल। त्रिपुरा से मैसेज आया है, कॉल आया है अविनाश का, वो कहते हैं कि त्रिपुरा में पहले बिल्कुल मौसम अच्छा था लेकिन अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और एक कारण उन्होंने ये भी जानना चाहा है कि वहाँ के लोग रबड़ का पेड़ लगा रहे हैं, क्या इससे भी गर्मी बढ़ने का कोई रीजन रहता है, और किस तरीके से जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जाए, ऐसे क्या क्या उपाय किए जाए वहाँ पे?
0: देखिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगा, किसी भी अर्बन रिन्यूअल के लिए इकोलॉजी उसका बैकबोन है, और आप अगर सुन रहे हो तो ये जान लें कि स्थानीय प्रजाति के वृक्ष, स्थानीय प्रजाति की झाड़ियाँ, स्थानीय प्रजाति के ग्रास ही जीवनदायिनी हैं, और अगर जिस पौधे का आप नाम ले रहे हैं वो स्थानीय नहीं है तो निश्चित रूप से लाभ की जगह वो नुकसान पहुंचाएगा। तो प्राथमिकता स्थानीय प्रजाति के पौधों को देना बहुत ज़रूरी है, और वो भी टॉप कैनोपी, मिडल स्टोरी, अंडर स्टोरी और ग्राउंड वेजिटेशन की तरह लगाना है, अलग अलग लेयर में, जिससे कि तापक्रम को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये वृक्ष ही वाटर वेपर निकालते हैं जो एम्बियंट टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और आपको कूलिंग इफेक्ट देते हैं।
1: जी बिल्कुल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर। है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं

0: FM Rainbow.
1: आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन होम्स ग्रीन फ्यूचर की और हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और आपके सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक मैसेज आया है रेखा का, वो कहती है इकोसिस्टम, जब हम कहते हैं तो इकोसिस्टम से मतलब क्या रहता है?
2: देखिए, इकोसिस्टम सुनते ही लगता है कि पता नहीं कौन सा शब्द है, लेकिन अगर इकोसिस्टम को गौर से देखें, कोई भी एरिया, छोटा से छोटा 10 square meters का और 1000 square kilometers का एरिया, वहाँ पे 4 कंपोनेंट होते हैं, हवा, पानी, मिट्टी और जीव, और ये चारों वहाँ लड़ते रहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एमंग, मतलब बिटवीन एंड एमंग इंटरेक्ट करते हैं, और ये लड़ाई इकोसिस्टम प्रोसेस को जन्म देता है और ये प्रोसेस से इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती हैं। तो ये 4 कंपोनेंट जो आपस में लड़ते हैं, वो एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये जान लें कि ये 4 जो कंपोनेंट हैं, इसमें एक भी कंपोनेंट कम हुआ, जैसा मैंने बताया, हवा, पानी, मिट्टी और जीव, इसमें कोई भी इनके संतुलन में कमी आई तो इकोसिस्टम भी असंतुलित हो जाता है।
1: जी बिल्कुल। उमेश दास हैं, झारखंड से लिखते हैं, धनबाद से। वो कहते हैं पहले हमारे धनबाद में इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह क्या होगी और कैसे हम इस टेम्परेचर को जो बढ़ रहा है उसे कंट्रोल में कर सकते हैं?
2: धनबाद में टेम्परेचर होने के बहुत सारे रीज़न हैं और जो वो बात कर रहे हैं उनको ही पता है। वहाँ ज़रूरत है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की, मतलब जो इकोसिस्टम हमने ख़त्म कर दिया उसको फिर से पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है, और स्थानीय प्रजाति के पौधे, जैसे वहाँ साल का फॉरेस्ट बहुत अच्छा है, तो हमें उस रेफरेंस इकोसिस्टम की मदद से वहाँ के इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। और जो आपसे सवाल कर रहे थे, उनको चाहिए कि इन संदर्भ में स्थानीय निकायों को चिट्ठी लिखें, उनसे बात करें और कहें कि जितने भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको इस आधार पर रिस्टोर करें जिसमें स्थानीय प्रजाति के पौधों का समावेश हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में तापक्रम निश्चित रूप से कम होगा।
1: जी बिल्कुल। दिल्ली से पैंथर तोमर लिखते हैं कि घरों में किस तरीके से क्या क्या चेंजेस किए जाए जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके।
2: ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं। बड़े शहरों में रहने की जगह की किल्लत होती है और एरेशन कम हो पाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हवा का आवाजाही कितना बेहतर हो घर में, तो आसानी बहुत हो जाएगी। इंडोर कुछ प्लांट्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, सब लोग जानते हैं, उपलब्ध हैं, इंडोर प्लांट्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को उस पर रख सके, कम कर सके।
1: हाँ जी जी बिल्कुल। राजस्थान से ऋतु का मैसेज आया है, रिभो का मैसेज आया है। वो कहते हैं कि आजकल देखने में आ रहा है कि जहाँ पहले बारिश कम होती थी वहाँ ज़्यादा हो रही है, जहाँ ज़्यादा होती थी वहाँ कम हो रही है, कहीं ना कहीं बारिश का जो तालमेल है वो गड़बड़ा रहा है। तो ये भी पर्यावरण की वजह से ही है, और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है?
2: ये देखिए, जो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न आ रहा है जिसमें बारिश भी है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, ये ग्लोबल फेनोमेना है, लेकिन लोकली उस पर मेहनत करके इसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है रोक। तो इसमें ज़रूरत है, जहाँ से ये बोल रही हैं, वहाँ के इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की, जो हमने विघटित कर दिया, क्षरित कर दिया, डिग्रेड कर दिया, उसको वापस लाने की ज़रूरत है, तब शायद इस वेदर पैटर्न को कुछ बेहतर कर पाए,
1: कंट्रोल किया जा सकेगा। जी सर, अब वक्त तो बिल्कुल कम है, आप चलते चलते लिसनर से क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो पॉइंट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो सबको जानने चाहिए?
2: मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो शहर का बड़ा पेड़ जो होता है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट असेट होता है, हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इस असेट को बचा के रखें, किसी भी विकास की आंधी उस पुराने बड़े वृक्षों तक ना पहुँचे, उसको बचा के रखें। एक तो ये, दूसरा जो भी हम ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करें, वो हमारा और आपका विचार ना हो बल्कि उस प्रकृति का विचार हो जो कि वहाँ के इकोलॉजिकल हिस्ट्री को जान के हो, और वो इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन पे आधारित हो, तभी शायद हमारा जीवन कुशादा रहेगा, अच्छे से चल पाएगा और हवा पानी हमें मिलती रहेगी।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आज यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। इसी के साथ मैं प्रियंका मामगन लेती हूँ विदा। अगला प्रोग्राम आशियाना, आपके साथ रहेंगे स्वाति गुप्ता।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। बहुत ही खूबसूरत गाना दहका भी आपने सुना। साधना सरगम की आवाज़ की बात ही कुछ और है एंड ऑब्वियसली लिरिक्स भी बहुत खूबसूरत है। अगला प्रोग्राम मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। प्रोग्राम का नाम हम कदम, 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम हम कदम। बुधवार की दोपहर जो हम करते हैं नाम आपके जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते के। वैसे शादी का रिश्ता ना बिल्कुल हमारी एक फेवरेट कॉफ़ी की तरह होता है। शुरुआत में वो बड़ी बढ़िया सी एक खुशबू होती है, वो स्टीम उठती है, वो झाग होता है उसमें, वो तो कमाल होता ही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, उस कॉफ़ी का फ्लेवर जो है ना वो गहराता चला जाता है और उसका जो स्वाद है ना वो और उभरता जाता है जी। यही गहरा और मजबूत स्वाद जो है ना, आप जानते हैं कि उसको सबसे ज्यादा जो है बेहतर बनाने में किस चीज का हाथ होता है, उसे कहते हैं रिलायबिलिटी। जी हाँ, यानी कि भरोसा करना, एक दूसरे पर निर्भर हो सके आप, उसे कहते हैं रिलायबिलिटी। और ये आंखें बंद करके विश्वास करने जैसा होता है। आजकल की भागदौड़ वाली अर्बन लाइफ में जहां राइट स्वाइप अप और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना हो चुका है ना, वहां पर किसी भी ऐसे इंसान का होना जो हर सिचुएशन में आपके साथ हो, हर जरूरत में आपके साथ खड़ा रहे, और आपके वो कहते हैं ना कि 3 AM 4 AM फ्रेंड्स की जो हम बात करते हैं, वही सेम फैक्टर, वही सेम बात जब आपको अपने लाइफ पार्टनर में मिलती है तो उसी को कहते हैं रिलायबिलिटी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो नींव है जिस पर ये रिश्ता जो है वो खड़ा होता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो हम कदम मेरे यानी कि स्वाति के साथ, और मैं लेकर आई हूँ अपने साथ बहुत ही खूबसूरत से गाने जिन्हें मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए। आज का मूड थोड़ा सा मेलोड्राम रखेंगे क्योंकि बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और आज इस प्रोग्राम हम कदम में हम बात कर रहे हैं उस गेम चेंजर क्वालिटी की जो आपके रिश्ते में जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर होती है, और किसी भी रिश्ते के बनने में बिगड़ने में उसका कहना चाहिए कि सबसे बड़ा हाथ होता है। रिलायबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, जी हाँ, भरोसे की बात कर रहे हैं। भरोसा, ट्रस्ट, फेथ, उसमें उन सब चीज़ों को जब हम एक साथ मिलाते हैं ना तो बनती है रिलायबिलिटी। जी हाँ, एक दूसरे पर निर्भर हो सकें। अगर आपने कहा है कि आप इतने बजे ये सामान लेकर घर पहुंच जाएंगे तो उतने बजे आप सामान लेकर घर पहुंच जाते हैं, नहीं तो आप अपने पार्टनर को इन्फॉर्म रखते हैं कि किसी भी वजह से अगर देर हो रही है या कोई काम अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, और आप बिल्कुल सच बोलते हैं उस बारे में। रिलायबिलिटी यही होती है, एक दूसरे के लिए हर सिचुएशन में साथ खड़ा रहना। वैसे देखा जाए तो आजकल की ज़िंदगी में ना ऐसा करना या ऐसा मिलना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये वो क्वालिटी है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है उसे क्रिएट करती है। जब हम रिलायबिलिटी सुनते हैं ना तो अक्सर ना दिमाग में बिल्कुल कहना चाहिए कि एक वो बात आती है ना, एक पुरानी जीन्स वाली बात आती है या पुरानी कार वाली बात आती है कि वो कभी भी आपको उस समय धोखा नहीं देते हैं जिस समय आपको ज़रूरत होती है, और वो बिल्कुल आपके हिसाब से ढले हुए होते हैं। यानी कि जब वर्क प्रेशर, डेडलाइंस, ट्रैफिक और सोशल लाइफ का अलग ही स्ट्रेस

होना जैसा कि आजकल होता है, वहाँ पे घर में एक ऐसे इंसान का होना जो आपको जज नहीं करता है, जो आपके लिए हर सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करके आपके लिए आपके साथ देने के लिए जो है ना वो खड़ा रहता है, यही है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका हम कदम। और जब मैंने रिलायबिलिटी के बारे में सोचा ना कि आज इस बारे में बात करते हैं, तो मुझे एक गाना जो है वो बहुत मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है जो हमारे आज के इस टॉपिक के लिए है, और वही मैंने चुना है आप सभी के लिए प्ले करने के लिए। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ उस मूवी का टाइटल ट्रैक, जो आपको ये बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हूँ ना।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी
1: रेनबो। सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: AIR@90।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ। जब आप अपने रेडियो को ऑन करते हैं और आप एक जानी पहचानी आवाज़ सुनते हैं या आप म्यूज़िक सुनते हैं और आप पहचानते हैं कि ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, जी हाँ, अगर आप इस समय किसी भी समय जो आप अपने फेवरेट शो को जब आप सुनना चाहते हैं तो उसका टाइम आपको याद होता है और उस समय जब आप अपना रेडियो ऑन करते हैं वही चीज़ आपको सुनने को मिलती है, यही होती है वो रिलायबिलिटी जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम हम कदम में। रिलायबिलिटी, एक दूसरे पे निर्भर होना, एक दूसरे पे भरोसा करना। रिलायबिलिटी सिर्फ एक भरोसा नहीं होती, सिर्फ निर्भरता नहीं होती, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन ये खुद ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बनता है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है। इसको अगर मैं कहना चाहूँ तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि कुछ छोटी छोटी ईंटें होती हैं जो मिलकर इस बहुत भारी दीवार को खड़ा करती हैं जिसके सहारे आपका ये जो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है ना वो पनपता है। वैसे एक दूसरे से वादे कर देना, एक्सपेक्टेशंस जो हैं किसी की भी बढ़ा देना बड़ा आसान होता है, सबसे मुश्किल काम क्या होता है, जी बिल्कुल, उन्हें पूरा करना। तो पूरा भी करना है लेकिन उसके साथ साथ उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जी, यानी कि जितनी बार आपको मौका लगता है उतनी बार आप अपनी बात पर पूरे उतरते हैं, उससे आती है रिलायबिलिटी। और अक्सर इसके लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं करना पड़ता है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, रिलायबिलिटी की नींव जो है ना वो रोज़मर्रा की उन्हीं छोटी छोटी आदतों पर टिकी होती है। कहना चाहिए कि जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपको पता है कि उसमें एक जो है पंखा लगा हुआ है जो कि उसकी सारी गर्मी को निकाल देता है बाहर। जी हाँ, मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ, बिल्कुल वही होती है रिलायबिलिटी जिसमें आप ओवरहीट होने के लिए ना डिपेंड करते हैं कि आपका हार्डवेयर जो है ना अगर वो सही तरह से काम कर रहा है आपके कंप्यूटर का, देन ऑब्वियसली सब चीज़ें स्मूथली चलेंगी। या फिर कहना चाहिए रिलायबिलिटी उस कूलेंट की तरह है जो कि आपकी गाड़ी के इंजन में होता है और उसी के सहारे ये जो गाड़ी है ना आपकी, जी गृहस्थी की गाड़ी, ये जो है ना ये स्मूथली चलती रहती है। और छोटी मोटी चीज़ों को जो है ना वो बिल्कुल अपने में समेट के जो है आप तक उस आँच को पहुँचने नहीं देती जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में जो है कमज़ोरी आती है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, रिलायबिलिटी के ऊपर आज बात कर रहे हैं हम हमारे इस प्रोग्राम में, नाम है इसका हम कदम। और मैंने आज चुने हैं कुछ सॉफ्ट गाने आप सभी के लिए, बीच बीच में मूड को ज़रूर चेंज करेंगे लेकिन ओवरऑल जो मूड है ना आज का, बाहर की ये जो गर्मी है ना इसको देखते हुए मैंने सोचा कि आज वो चीज़ें जो आपके दिल को और आपके कानों को ठंडक पहुंचाएं वो मैं आपके लिए प्ले करूं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर अगली आवाज़ शेखर राव जियानी की मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। हिमालय की गोद से लेकर
0: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
6: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है हम कदम, मेरे यानी स्वाति के साथ। और जानेंगे कैसे, जानने के लिए ना बोलना बहुत ज़रूरी होता है, बताना बहुत ज़रूरी होता है। और आप चाहे अपने कम्युनिकेशन को वर्बल रखें या नॉन वर्बल रखें, लेकिन जताना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, अपने कम्युनिकेशन को फिर चाहे वर्बल है या नॉन वर्बल है, उसे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर गलत फहमियाँ ना वहीं से उपजती हैं। और अक्सर होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो, उसको हमारी बात जो है बिना कहे समझ जानी चाहिए। ये ना बड़े खतरनाक गेम होता है। पासा सीधा पड़ा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पड़ा तो फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं ना वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, तो वही कम्युनिकेशन तो की होता ही है, कम्युनिकेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि आप अपने पार्टनर के सपोर्ट सिस्टम बने, उसको स्पेस भी दें, लेकिन जब उसको ज़रूरत हो तो उसके साथ भी रहें। और भाई, आपस की जो एक रिश्ते की गरिमा होती है ना, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, और वो अक्सर बहुत छोटी चीज़ों से जो है वो बन जाती है। गलती होने पे सॉरी बोल देना, और अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उसको एप्रिशिएट कर लेना, थोड़ा उसको एक्नॉलेज कर लेना। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं मांगते हैं ना भाई, अब ये

ने जो होते हैं ना हमारे फिल्मी गाने, इसमें जिस तरह से जितने खूबसूरती से बातों को कहा जाता है, अक्सर जो है गानों का सहारा भी हम अपने मन की बात करने के लिए ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वो लैंग्वेज नहीं है जो हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में बोलते हैं। आप भले ही इतनी शायराना बातें ना करें, आप भले ही इतनी डेकोरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसके बावजूद अपने आम छोटे छोटे सेंटेंसेस में, थैंक यू में, सॉरी में, चाय अच्छी बनी थी या आज अच्छे लग रहे हो वगैरह, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये अक्सर उस सीमेंट का काम करती हैं जो आपकी इस रिलायबिलिटी की दीवार को जोड़ता है, जो उन सभी चीज़ों को जोड़ता है जिससे मिलकर ये रिश्ता बनता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ लाइफ इन अ मेट्रो से बहुत ही खूबसूरत सा गाना, और जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो ही रही थी तो मैंने सोचा कि उसके लिए परफेक्ट गाना जो है ना वो है, तो बिल्कुल यही है। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

केके की आवाज़ में अभी आपने सुना क्रुक मूवी से बहुत ही खूबसूरत गाना। जी हाँ, मूवी भले ही क्रुक हो लेकिन गाना बहुत खूबसूरत है। कितनी खूबसूरती से बातों को बयां कर देते हैं, है ना। प्यार से जुड़े ये इतने सारे गाने जो हमारे हैं, हमारी हिंदी फिल्मों के, इनफैक्ट हिंदी फिल्मों के नहीं बल्कि देखा जाए तो वर्ल्ड ओवर म्यूज़िक जो है ना, वो ज़्यादातर जो है सॉन्ग्स जो हैं वो गाने जो जितने भी आप सुनते हैं, जितने भी खूबसूरत ख्याल हैं ना, वो प्यार पर ही आधारित होते हैं। क्योंकि प्यार एक बहुत ही खूबसूरत इमोशन है जो समय के साथ बदलता रहता है। इसमें बेचैनी भी है, इसमें बहुत ही सब्र भी है, और समय के साथ साथ एक गहराई और एक ठहराव भी है। रिलायबिलिटी वो सीमेंट है जो आपके इस रिश्ते को जोड़े रहता है। जी हाँ, दीवार भी है, सीमेंट भी है, देखा जाए तो आपकी इस खूबसूरत रिश्ते की ना पूरी की पूरी जो नींव है ना, वो भी इसी रिलायबिलिटी पर टिकी होती है कि ये जो है समय के साथ प्यार गहरा होता जाता है, उसमें स्थिरता आती जाती है, और ये रहनी चाहिए। क्योंकि इसके बिना जो है ना, आप कभी भी इस रिश्ते को लंबा नहीं चला सकते हैं। ये वो धागा है जो प्यार की मोतियों को एक साथ पिरोकर रखता है। जब आपको पता होता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपकी हर कमज़ोरी को जानता है, आपकी गलतियों को जानता है, यहाँ तक कि जब आप अपनी गलती को ना मान नहीं रहे हो ना, वो तब भी जानता है कि गलती आपकी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको आपकी हर कमी हर गलती के साथ एक्सेप्ट करता है। तो वो फीलिंग और वो एक निर्भरता जो होती है ना, वो रिलायबिलिटी, जी उसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। प्रोग्राम हम कदम सुन रहे हैं आप 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। प्रोग्राम खत्म होने को है तो मैं बस अपनी बात को यहीं पर समअप करना चाहूँगी, और सिर्फ इतना सा कहूँगी कि भाई अक्सर जो है शुरुआत जो है हम बड़ी किसी भी रिश्ते की ना बड़े जोश व खरोश के साथ करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हमें ये बात बहुत अच्छी तरह महसूस हो जाती है कि शादी कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, एक मैराथन है जिसे आपने बहुत ही कंसिस्टेंटली जो है ना उसमें अपनी गति को बना के रखना है। और किसी भी मैराथन जीतने के लिए स्पीड से ज़्यादा स्टैमिना और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें जो है ना वो चाहिए होती हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना होता है शुरुआती स्टेज में, लेकिन उसके बाद समय के साथ साथ जब ये रिलायबिलिटी आने लग जाती है ना, तो आपके रिश्ते की जो मजबूती होती है ना, वो काफ़ी हद तक तय हो जाती है। भाई अपने पार्टनर के लिए बेस्ट फ्रेंड तो बनना ही पड़ता है, लेकिन इस टीम के ना केवल आप सदस्य हैं, ना केवल आप एक दूसरे के साथी हैं, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े चीयर लीडर भी हैं, और कोई और नहीं होगा। ये बात को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। आंखें बंद करके अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर पर भरोसा कर सकें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपकी तरफ से भी इस मेहनत में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेनबो आपके साथ जुड़ा रहता है और आपके लिए आपकी पसंद की और आपके काम की सारी इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड ऑब्वियसली म्यूज़िक जो है वो समेट कर लाता है। अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम, मेरे यानी स्वाति के साथ में। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम होगा रेडियो डॉक्टर, जो आपकी सेहत से जुड़े समाधान आपके लिए प्रस्तुत करता है। शाम 4 बजे का समय रहेगा प्रोग्राम अल्फा जेन का, जिसमें कैंपस कॉलेज में एक बार फिर से आपको ले चलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी कि किसी खास कॉलेज में। शाम को 5 से 6 बजे के बीच आप सुनेंगे सैटेलाइट्स ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे, जिसमें प्रवीण रहेंगे आपके साथ। और शाम को 6 बजे का समय आपके मैसेजेस का मैसेज मसाला मिक्स।

हर घंटे एक नई आवाज़, हर घंटे एक नया अंदाज़ और हर प्रोग्राम कुछ नया लेकर आता है आप सभी के लिए। यही है हमारी रिलायबिलिटी जो हम आपको देते हैं हफ्ते के सातों दिन, दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन, लीप ईयर में 366 कर लीजिएगा उसको। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर फिलहाल आज का हम कदम था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। तपती धूप, बढ़ता तापमान और बदलती खान पान की आदतें, ऐसे में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर। अपच, गैस, एसिडिटी, दस्त और भूख कम लगना जैसी समस्याएं इन दिनों आम हो जाती हैं। ऐसे में यूनानी चिकित्सा पद्धति किस तरह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर्स, डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिंस। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद अहमद खान, यूनानी एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में।
2: बहुत शुक्रिया आपका।
1: और साथ हैं डॉक्टर सूफिया उत्साही, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिसिंस, CGHS। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हमें आपने याद किया।
1: दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 01 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा पर अपने विशेषज्ञों से। तो डॉक्टर सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं?
2: असल में सबसे बड़ी वजह होती है बाहर का खान पान और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से। आमतौर से होता क्या है कि गर्मियों में जो है बहुत जल्दी खाना जो है हमारा अगर बासी हो जाता है तो ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। उसमें जो है डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। मुख्तसर यह है कि हमें इससे बचना चाहिए। एक तो ज़्यादा तली हुई चीज़ें जिसमें ज़्यादा चिकनाई हो, घी तेल, वो कम इस्तेमाल किया जाए। और बाहर के जो हैं, जो भी आदमी घर से निकला है, उसको ज़रूरत पेश आई, भूख लगी, तो देख ले कि खाना सही है या नहीं, सही जगह है। कम खाए लेकिन ताज़ा और सादा खाना खाए, इसकी खास कोशिश की जाए।
1: तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वो साथ लेके अपने चल सकते हैं कि अगर हम बाहर का खाना ना खाना चाहें, जनरल में वो ले सकते हो?
2: देखिए, सबसे बढ़िया तो ये है कि हमारे यानी नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से चना और जौ का सत्तू जो है बहुत मशहूर है, और पानी आम तौर से हर जगह मिल जाता है, या फिर पानी भी साथ लेके चले तो आदमी आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये

0: इस सीज़न की बहुत बढ़िया यानी ग़िज़ा है, कह लीजिए न्यूट्रिशनल चीज़ है ये। इसका एक बड़ा फ़ायदा यह है कि बॉडी के अंदर जो इस वक्त जो मौसम है वो मिजाज के एतबार से गर्म और खुश्क है, तो ये जो है शरीर को तरी पैदा करता है।
1: जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में सबसे अधिक कौन कौन सी पेट संबंधी समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं?
2: आजकल तो गर्मी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें लूज मोशन का है, गर्मी लग गई बहुत ज़्यादा, उनको डायरिया हो गया एंड लूज मोशन होते हैं, उस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी या पानी नहीं लेते हैं या इन सब चीज़ों को लेना चाहिए, तो इस टाइप के ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि जिनको गर्मी की वजह से लूज मोशन एंड डायरिया एंड वोमिटिंग इस टाइप से हमारे पास आते हैं, और उनको पानी और ओआरएस नेबर लेमन वगैरह इसको एडवाइस किया जाता है कि इसको आप पानी में लीजिए, पुदीना लीजिए, सारी चीज़ों को लीजिए, जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ रहता है। और हमारे पास और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको हम देते हैं, पुदीने का पानी होता है, अजवाइन का होता है, ये सब चीज़ें हम उनको ऐड करके देते हैं
1: जिससे गर्मी में ठंडक का एहसास रहे,
2: ठंडक का एहसास हो
1: जी। इसमें हम बात ये भी करेंगे कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा पर। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और ये किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है?
1: यूनानी चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी, इस एक साइंटिफिक बेस पर इसको हकीम बुकरात ने, जिन्हें हिप्पोक्रेट भी कहते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। हालांकि पहले से चल रही, प्रचलन तो बहुत पहले से रहा, लेकिन उन्होंने बाकायदे उसको एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ख़ास तौर से उन्होंने खिलत और मिजाज। तो वो कहते हैं इसका बैलेंस अगर रहता है तो शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं होती, और जब ये डिसबैलेंस होते हैं चारों खिलत और मिजाज, तब जो है जाके तकलीफ बढ़ती है। जाहिर है गर्मियों का सीज़न है, तो इसमें उमूमन जो है खुश्की और गर्मी, ये दोनों चीज़ें बढ़ी हुई होती हैं। तो इस लिहाज से हुक्मा इसके यानी जो ख़ास तवज्जो दिया उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और उसके लिए उन्होंने माना है कि अगर जिगर हमारा सही काम कर रहा है, लीवर, तो समझिए कि हम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो लीवर से संबंधित जो दवाएं हमारे पास में हैं वो बहुत यानी अच्छी तादाद में मौजूद हैं, और इसके बहुत सारे क्लासिकल दवाएं हैं, जैसे माजून दबिलवर्द है, जवारिश नारायण है, जवारिश आमला है। ये सब दवाएं बहुत सारी जिगर की हैं जो काबिज़ भी हैं, यानी जैसे किसी को डायरिया हो गई या डिसेंट्री हो गई, तो उसमें इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर से जवारिश नारायण का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरीके से जो है इसमें चहार तुख्म का भी इस्तेमाल होता है। चहार तुख्म जो होता है, चार किस्म का बीज होता है, जिसमें यह है कि तुख्म बारतंग है, तुख्म रेहान तुलसी का बीज, इसबगोल मुसल्लम और तुख्म कनौज। तो चारों बीज एक साथ जो है जमा करके किसी को भी पेट में गर्मी है, दस्त है, मरोड़ है, IBS की शिकायत है, उन सूरतों में जो है हम इसे इस्तेमाल कराते हैं। सादे पानी से एक चमचा निगल लिया। इसके अलावा जो है हुक्मा ये मान के चलते हैं कि ये इन्फेक्शन में भी काम करेगा। कई बार ऐसा होता ना कि डिसेंट्री हो गई, इन्फेक्शन के सबब हुई है, तो उसमें हम जो है अर्क अजीब भी देते हैं। अर्क अजीब जो है ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है। इसमें जो है सत्य पुदीना है, सत्य अजवाइन है और सत्य काफूर
2: है।
1: इन तीनों को बराबर बराबर मिला लेते हैं, एक बेहतरीन घोल तैयार हो जाता है। इसके दो बूंद आधे कप पानी में पी लीजिए, तो इससे आपको फौरी तौर पर एक यानी जो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस है, डिसेंट्री है, इन्फेक्शन है, उन सब में काम करेगा।
0: तो ये रोज़मर्रा में ले सकते हैं या तकलीफ हो तभी इसका
1: बेहतर है? तकलीफ हो तो लें
0: जी,
1: क्योंकि जाहिर दवा का मतलब है, दवा और गज़ा दो अलग अलग चीज़ें हैं
0: जी।
1: तो इलाज बिल गज़ा हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि ऐसे वक्त में हम वो चीज़ खाएँ जिससे दवा की ज़रूरतें पेश आए। तो जाहिर है कि दवा जो है जब ज़रूरत हो तो भी ली जाए।
0: तो दर्द में ही दवा लें, लेकिन रोज़मर्रा में जो ये गर्मी है इससे बचने के लिए हम क्या करें कि जिसे बीमारी ना पड़े?
1: हाँ, इसके लिए तो एक बहुत मोटा सा फार्मूला है, आम आदमी जानता है कि सादा खाओ और ताज़ा खाओ और कम घी तेल और मसाला इस्तेमाल करो। मौसम के जो फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कुदरत ने जो हमारे लिए एक वरदान तौर पर कह लीजिए, हर सीज़न में ज़रूरत के मुताबिक सब चीज़ें पैदा होती हैं। अब जैसे आजकल खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये सब चीज़ें हैं बदन को तर रखने के लिए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मतलब है कि ये सब चीज़ें नहीं दस्तियाब होती, जैसे आम मान लीजिए है, आम बहुत बड़ी नियमत इस वक्त है
0: जी,
1: कि किसी गर्मी लग गई, लू लग गया हो, पेट में कोई ख़राबी आ गई है, तो वो आम का पन्ना इस्तेमाल करें, आम को उबाला कैरी को
0: जी,
1: और उबालने के बाद उसके गूदे को जो है पानी और चीनी नमक मिला करके इस्तेमाल कर सकता है इंसान। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो चीनी मत मिलाएं, हल्का नमक मिला लिया करें।
0: तो उनके लिए जो शुगर पेशेंट है, आम का अल्टरनेटिव भी कुछ और है?
1: हाँ, जाहिर है कि उनके लिए तो यही चीज़ है, लेकिन इसमें चीनी मत मिलाएं, वो थोड़ा टेस्ट से परहेज रखें, नारियल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कुदरत ने हमें हर सीज़न के लिहाज से चीज़ें दी हुई हैं, और उसी का हम इस्तेमाल पहले करें ताकि हम दवा से बच सकें।
0: एहतियात बरतने के बाद भी अगर किसी को अपच, गैस या एसिडिटी की समस्या आती है तो उसके लिए यूनानी उपचार कैसे किया जाता है, डॉक्टर सूफिया से हम जानना चाहेंगे।
2: पहली बात तो हमें

0: अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए गर्मियों में, जैसा कि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा मसाले, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमारे यूनानी में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा हम असर करती हैं। जैसे पुदीने का एक पेस्ट आता है, जवारिश पुदीना जैसे बोलते हैं, जवारिश तमर हिंदी आती है, वो सब ठंडी दवाइयाँ जो पेट को बहुत अच्छा वो करती हैं। शरबत में जैसे गुड़हल का शरबत है, शरबत बेलगिरी बहुत अच्छी है, आप दो दो चम्मच सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, शरबत की तरह पी सकते हैं उसको, और शरबत अनार भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्ट करती हैं। बस ये है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए गर्मियों में कि गर्मी की वजह से जो जो चीज़ें हमें ज़्यादा हार्म कर रही हैं, बहुत मिर्च है, मसाला है, बाहर की बहुत सारी चीज़ें, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। आजकल पता नहीं कैसे क्या किस तरीके से लोग बनाते हैं, कितने वक्त रखते हैं, फ्रोज़न फूड अवॉइड करना चाहिए। मेरे समझ से इन चीज़ों के लिए हमारी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है।
1: तो जो जो आपने शरबत बताई, क्या इनमें से कुछ ऐसा है जो हम रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं?
0: शरबत बेलगिरी है, शरबत अनार है, ये बराबर आप ले सकते हैं।
1: तो ये सभी लोग ले सकते हैं या शुगर पेशेंट्स या
0: शुगर,
1: बच्चों के लिए?
0: शुगर फ्री तो इसमें शायद नहीं है, अभी बच्चे ले सकते हैं, जो जिसको शुगर है वो थोड़ा अवॉइड करे। वो कुछ और चीज़ें जैसे पुदीना है, लेमन है, नमक है, जीरा भुना हुआ डाल के कुछ एक ड्रिंक बना ले, वो ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा उसको कोल्ड करके लिया जा सकता है। गोंद कतीरा का भी बहुत अच्छा इस वक्त इफेक्ट आ रहा है। तुक मलंगा का भी बहुत अच्छा है, उसको भी मिक्स करते हैं भिगो के 4-6 घंटे, उसके बाद उसको आप पानी में मिक्स करके उसको, उसमें पुदीना है, थोड़ा सा लेमन है, ये डाल के आप इस्तेमाल करते हैं। शुगर के पेशेंट जो हैं वो नमक का यूज़ कर रहे हैं, काला नमक का यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं उसको, है ना।
1: गर्मी के मौसम में पुदीना, नींबू सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो लेने में और भी आनंदमय रहेगा। तो डॉक्टर सैयद, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फिर भी अगर कोई, जैसे आपने बार बार कहा कि जंक फूड ना लेकर फिर भी किसी को अगर खा लिया और उसको फूड पॉइजनिंग हो गया या कुछ उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उनके लिए यूनानी चिकित्सा क्या सलाह देगा, क्योंकि आजकल मौसम ऐसे, ट्रैवल भी कर रहे हैं लोग?
2: बिल्कुल सही है। अव्वल तो हमने बताया कि घरेलू तौर पर जो हम अपने साथ रख सकते हैं, जो चीज़ें ख़राब ना हों, उसमें ख़ास तौर से चने और जौ का सत्तू जो है वो नंबर एक पर है। दूसरी चीज़ ये है, अगर हो ही गया है, तकलीफ़ आ गई, तो एक तो हमने बताया अरक अजीब का इस्तेमाल है, 2 बूंद अरक जो है आधे कप पानी 1 कप पानी में लेकर के पी लिया, उससे फौरी तौर पर उसकी वोमिटिंग रुक जाएगी। इसके अलावा यह है कि डिहाइड्रेशन अगर वाकई हो ही गया है, उसे चाहिए कि अपने करीब के किसी हॉस्पिटल से रुजू करें वो, चूँकि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डायरिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए वो आदमी जो है डिहाइड्रेशन से बचे, उस पर हम ख़ास ध्यान देते हैं। और ये जो ORS वगैरह का बताया गया है, धीरे धीरे करके सिप करके पिएं, एक बैग बहुत ज़्यादा नहीं पानी इस्तेमाल करें, या जो कोई भी शरबत हो तो उसका इस्तेमाल धीरे धीरे किया जाए, तो वो जो है डाइजेस्ट होकर के फिर हमें जो कमी पानी की है वो पूरी होती रहेगी। तो ये असल में ज़रूरी है कि उपचार तो उपचार है, इलाज में जल्दबाजी नहीं, और उसमें उसी तरीके से काम किया जाएगा जैसा कि जो ज़रूरत पेश आई। अब किसी को डायरिया और वोमिटिंग दोनों है, तो उसमें पहले मरहले में एक तो अरकजीत दे दिया, फिर जवारिश पुदीना आता है, जवारिश पुदीना विलायती कहलाता है, तो उसको इस्तेमाल कराएंगे। ऊपर से फिर हम ये शरबत जो है आपका अनारायण कहा है, शरबत अनार के नाम जाना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर इसके अलावा जो है हब्बे पेच के नाम दवा आती है हमारी, जो यूनानी दवाएं हैं, तो उसमें एक गोली दे दिया या हब्बे सुमाक दे दिया, इस तरह कोई चीज़ आती है दवाएं हमारी यूनानी की, जो क्लासिकल मेडिसिंस हैं, जनरल मेडिसिंस कहलाती हैं, ये हर जगह मिल जाती है आराम से, तो इसका भी हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये है कि देखना ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है किस कंडीशन में है इस वक्त, क्या कैफियत उसकी है, उसको फौरन हम हॉस्पिटलाइज करें या फिर घर पर ही उसका इलाज करें। तो उसकी कैफियत देखना पता लगेगा कंडीशन क्या।

0: की हैं। और ये बहुत बड़ी समझदारी होती है आदमी को कि बर वक्त जो है उसका इलाज किया जाए और कहाँ किया जाना बेहतर है। किसी को मान लीजिए बहुत तेज़ धूप लग गई, सन स्ट्रोक हो गया, लू लग गई, तो ठीक, घर पर जो हमारे उपचार मौजूद है वो तो हमने दे दिया, और उसमें आज के सीज़न में ये जो पना आम का जो बताया कि कैरी को उबाल करके उसका गुदा निकाल करके चीनी पानी का घोल बना करके पिला रहे हैं उसे, वो ORS की सूरत में भी हम दे सकते हैं, ये सब बातें हैं खैर। लेकिन अगर हम महसूस करते हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छा उपचार चाहिए तो हम उसको हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें, ये भी एक इलाज का बड़ा हिस्सा है और बड़ी समझदारी की बात होती है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर।
0: जी
1: हेलो
2: जी, पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार, बताइए आपका क्या प्रश्न है।
2: डॉक्टर साहिबान को मेरा सलाम पहुँचे।
0: शुक्रिया साहब, बहुत बहुत।
2: हमारे यहाँ यूनानी में अर्क चिकित्सा का बड़ा महत्व है।
0: जी जी,
2: मैंने सुना है कि अर्क मकोए, बहुत सारे अर्क जो है बहुत कारगर है, तो कृपया अर्क के बारे में बड़े तफसील से बताएं। थैंक यू।
0: देखिए, अर्क जो है ये आम तौर से हम उस वक्त देते हैं जब महसूस हो कि जिगर में सूजन है या जिगर बढ़ गया है, तो उस सूरत में जो अर्क मकोह है, अर्क कैसनी है, अर्क ब्रंजासफ है, इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। और अगर ये लगता है कि गैस वैस ज़्यादा बन रही है तो उसमें अर्क अजवाइन को बढ़ा देते हैं और
3: फैटी लीवर में भी देते
0: हैं। जी जी, तो ऐसे कैफियत में जो है, बहरहाल ये जानना ज़रूरी है कि अरक का इस्तेमाल कौन कौन से एक साथ किए जाएं। तो ये जो तीन अरक हमने बताए हैं शुरू में, ये तमाम सारे फैटी लीवर हो या लीवर एनलार्ज हो या और कोई कैफियत है तो, या सूजन आंतों में हो बड़ी में, तब भी देते हैं हम इसे। तो चूँकि इसका असली काम जो है स्वेलिंग को कम करना है और फैट को डिजॉल्व करना भी है, इसीलिए फैटी लीवर में बहुत अच्छा इफेक्ट इसका होता है। तो ख़ास तौर से अगर एक साथ हम चार अरक इस्तेमाल करें, कासनी, अर्क मकोह, अर्क बादियान और अर्क ब्रंजासफ, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा। इसको कम से कम यह है 15 ml ईच सभी को जो है, चूँकि तफसील से जानना चाह रहे हैं वो कि हम अरकियात के बारे में, जो अरक का महत्व तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पूछा, बताया, समझा भी है, और जाहिर है कि ये अच्छा नॉलेज रखते हैं इस सिलसिले में, बड़ी अच्छी बात है। तो इनमें जो है एक कप में हम सभी में से 15 ml जो है, यानी चार चार ढक्कन कह लीजिए, जो बोतल का ढक्कन होता है वो भी एक पैमाना है उसका नापने का, तो उसे चार चार करके एक कप में रख लिया और एक साथ मिलाकर पी लिया। अगर अरक को हम खाली पेट पिएँ अजवाइन के अलावा तो बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। जीरे का अरक भी होता है, जीरे का अरक हम देते हैं सुबह नाश्ता के पहले सफ़ूफ मुहज़्ज़िल के साथ, जिसका पेट बढ़ा हुआ हो, फैट ज़्यादा हो, उसे कम करने के लिए बहुत कारगर दवा है ये, और ये बहुत ही मशहूर कैलस्कर मेडिसिन है ये। तो हर जो अरक हैं, अरक नाना जैसे जिक्र किया हमने, अब आजकल सीज़न में गर्मी है, इसमें हम अरक नाना मतलब कहते हैं पुदीना का अरक, यानी पानी एक तरह का, तो उसे जो है जब हम कशीद करके बोतल में रखते हैं तो उसे अरक बोलते हैं। अरक का मतलब ये है कि उसकी पूरी जो है रूह को कशीद कर दिया, वो सब चीज़ें उसमें आ गई, और उसकी वजह से वो डाइजेस्टिव होता है, बहुत यानी एब्जॉर्बल होता है, बॉडी के अंदर कोई चीज़ हम खा रहे हैं, खाना कमाल नहीं है, उसे कहते हैं पचाना कमाल। पचाने से मतलब यही होता है कोई चीज़ जो है एब्जॉर्ब हो रही नहीं हो रही है, तो ये बड़ा अहम मामला होता है, तो इसको समझना चाहिए। तो जो भी अरक इस्तेमाल करें उसमें ये जानना चाहिए कौन सा किसके लिए है और कब लिया जाए।
1: एक मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर नमस्कार, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पित्त की थैली निकल चुकी है और जब से मुझे एसिड और गैस बहुत बनती है, और अब तो एक काम और हो रहा है, अगर मैं ठंडा या बासी खाने से पेट फूल जाता है और टाइट हो जाता है, और टमाटर और अचार खाने से पेट में दर्द होने लगता है, और नहीं खाता हूँ तो ठीक रहता है, डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, क्या करूँ।
0: हाँ, असल में जो इन्होंने बताया कि गाल रिमूव हो जाने की सूरत में जो लीवर का जूस हमें चाहिए, बाइल जूस जिसे कहते हैं, उसके ज़्यादा ज़रूरत भर ना मिलने की वजह से ये होता है

0: जो एसिड है ना वो बेस में तब्दील नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, किसी को हार्ट बर्न की शिकायत हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एसिड बेस का बैलेंस जब नहीं रहेगा बदन में तो फिर ये दिक्कत पैदा होती है। इसमें जो दवा इनको इस्तेमाल करनी है बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, हर जगह मिल जाएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इससे पूरी तरह से फ़ायदे में रहेंगे। वो ये है माजून दबीदुल वर्द, माजून दबीदुल वर्द। तो दबीदुल वर्द जो है ये 5 ग्राम और ऊपर से जो है अर्क कासनी अर्क मको 15 15 ml, ये खाली पेट सुबह नाश्ता के पहले शाम खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा ये है कि शाम को सोते समय लेना चाहिए कि उस वक्त जवारिस शाही 1 चमचा शाम यानी डिनर के बाद ले लिया करें। यह तो बिफोर है माजून और अरक, और इसको लेना हमें आफ्टर
1: डिनर।
0: डिनर तो ठीक रहेगा इनको।
1: एक कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे श्रोता। हेलो,
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, दोनों को।
0: हाँ भाई, बहुत शुक्रिया आपका।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, गाँव
0: जी जी जी
2: करनाल है जी
0: जी
1: जी बताइए।
2: अच्छा सर, मेरा भाई है छोटा मेरे से, उसकी 42 साल उम्र है और उसको जो है ना भूख नहीं लगती, और वो 2009 से यानी 17 साल से मेंटल इलनेस की दवाई खाता है सर, और रोटी बिल्कुल नहीं खाता, ठीक तरह से नहीं खाता, मतलब थोड़ी बहुत ही खाता है जी। तो क्या किया जाए उसको? और मेरी प्रॉब्लम, मैं अब अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ सर।
0: ठीक है, भाई के लिए जो है आप जो है जवारिश तमर हिंदी ले लीजिए, जवारिश तमर हिंदी, तमर TMAR तमर, यानी ता मारा जवारिश तमर हिंदी, ये आधा आधा चमचा सुबह शाम खाली पेट उनको दीजिए, और खाने के बाद उनको हब्बे कबीर नौशाद्री दीजिएगा, दो दो गोलियां। आवाज़ शायद इनकी अब
1: आवाज
0: डिस्कनेक्ट हो गई है, बहरहाल वो भाई की वो उनके हमने बता दिया, वो दवाओं की जो खुश्की होती है, जो अंग्रेज़ी दवा हम खाते हैं आमतौर से, उसकी खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। खैर, तो ये दवा जो है जो हमने उनको बताया तो उससे उनको राहत मिलेगी।
1: आज रेडियो डॉक्टर में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि समर डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिंस पर, हम आपसे ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे नुस्खे हैं क्या जिन्हें लोग आसानी से अपना सकते हैं जिससे सभी की समस्याओं का समाधान हो जाए, इस पर हम और भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिन पर। इस पर अभी हम जानेंगे कि यूनानी मेडिसिन में ऐसे कौन से नुस्खे हैं जिसे हम आसानी से अपना सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: सलामुलिकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम।
2: हाँ जी, कस्बा किठौर जिला मेरठ से बोल रहे हैं जी, सलाउद्दीन।
3: शुक्रिया साहब, फरमाएं।
2: सर मेरे अभी करीब एक साल हुआ तो मेरे वो निकल आई थी हर्फीस।
3: जी जी।
2: तो मैंने ये आपके जो यूनानी से ही दवा खाई, अल्लाह का शुक्र है उससे बहुत फायदा हुआ मुझे, एक साल हो गया।
3: जी जी।
2: तो ये दाने दाने से थे, तो इसमें हमारे लिए उन्होंने एक तो मरहम लिखा था, मरहम है सफेद काफूरी।
3: जी।

0: जी बिल्कुल ठीक
1: और एक इसमें था हमारा ये शरबते उन्नाब,
0: जी।
1: और एक थी इसमें माजू ने दबद डबल दर्द। जी
0: माजून दबीदुल वर्द था, ठीक है।
1: जी हाँ, ये तीन चीजें थी सर। तो मैं मालूम करना चाहता हूँ, अब जैसे ये गर्मी पड़ी है मुझे, इसमें खुजली सी दोबारा लगने लगी है, क्यों फिर ये दोबारा यही दवाई खाई?
0: नहीं, अब आप माजून है उष्बा ले लीजिए,
1: माजू ने
0: उष्बा
1: मुशबा। अच्छा,
0: उष्बा ऊ बड़ा सा और बा उष्बा,
1: हाँ मुशबा। अच्छा
0: माजून है उष्बा हो जाएगा। और साथ में जो है शरबत उन्नाब लेते रहिएगा।
1: जी
0: और अगर कहीं आपको
1: जी जी
0: नीम के फूल मिल जाए, फूल
1: नीम के। अच्छा
0: हाँ, या नीम का तेल मिल जाए
1: जी,
0: तो ज़्यादा अच्छा है। नीम के तेल इस्तेमाल कीजिए, आसानी से मिल जाता है।
1: अच्छा हाँ, क्योंकि मैं अभी वहाँ गाजियाबाद गया था, वहाँ यूनानी बहुत अच्छा अस्पताल है, वहीं से ही दवा चली थी
0: जी
1: मेरी।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल ठीक है। गाजियाबाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन,
1: जी जी हाँ
0: तो वो है, बहुत अच्छा है। वहाँ से आपने सही जगह आप गए, और जाहिर है कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है
1: हाँ
0: यूनानी का।
1: जी मैं हाँ उसी से ही, मुझे बताया था उस टाइम में किसी ने कि भी वहाँ चले जाओ, ये
0: नहीं, अच्छा किया।
1: बहुत
0: और अब
1: अच्छी
0: फिलहाल आप
1: है।
0: नहीं ले लो, काफ़ी रहेगा।
1: ठीक है जी, शुक्रिया जी। और आप आते हैं जी डॉक्टर के उसमें, यहाँ प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा लगता है सभी को जानकारी,
0: जी,
1: जितने
0: इसमें
1: भी हमारे,
0: आकाशवाणी का बेहद शुक्रिया।
1: हाँ जी जितने भी हमारे साथी सुन रहे हो भाई, हम उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं दोनों डॉक्टरों और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून।
0: जी।
2: वो पूछते हैं कि यूनानी चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए क्या खान पान व कौन सी दवाएं ले सकते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: जी, काफ़ी अच्छा सवाल इन्होंने किया। हालांकि आज का प्रोग्राम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, लेकिन जाहिर है कि इससे रिलेटेड भी है। तो खाने पीने में ख्याल रखें, समय से खाएं और नींद पूरी लें। इसके लिए एक खमीरा आता है, खमीरा गाव जबान अंबरी जदवार ऊदे सलीब वाला। एक बार और बोल देता हूँ, लिख लीजिए, खमीरा गाव जबान अंबरी जदवार ऊदे सलीब वाला। ये रोज़ाना 5 ग्राम सोते वक्त इस्तेमाल करें, और सुबह सवेरे जो है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली आधा चमचा, इसका इस्तेमाल लगातार कम से कम 6 महीना कीजिए। इससे काफ़ी आपको सुकून मिलेगा और दिमागी तवाज़ुन भी अच्छा बनेगा। और यह है कि खाने पीने में ख्याल रखें, कब्ज़ ना होने पाए और गैस कम बने। आप जो कुछ हम खाते पीते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है एक उम्र के साथ कि हमें क्या चीज़ नुकसान कर रही है, क्या फ़ायदा कर रही है। उसी लिहाज से अपना खाना पीने का चयन करें तो अच्छा रहेगा।
2: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड बर्निंग मैच्योरेशन के लिए यूनानी चिकित्सा बताएं, अनिल गुरुग्राम से।
0: जी, इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये शुगर पेशेंट हैं या बहरहाल, अगर शुगर पेशेंट हैं तो उनके लिए शरबत बजूरी एसएफ के नाम से आजकल आ रही हैं, कुछ कंपनीज बना रही हैं जो शुगर फ्री है। लेकिन जो शुगर फ्री, जिनको शुगर नहीं है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो शरबत बजूरी मोतदिल, ये क्लासिकल मेडिसिन यूनानी की हर जगह मिल जाएगी। दो दो चमचा सुबह शाम, नाश्ते के बाद, शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है माजून दबीदुल वर्द, ये सुबह शाम में लंच और डिनर से पहले 5 ग्राम, और बिफोर ब्रेकफास्ट जो है माजून फलासफा 1 चमचा इस्तेमाल करेंगे, तो इससे कुछ दिनों के बाद उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता यह है कि माजून दबीदुल वर्द के साथ साथ जो है वो अरक कासनी, अरक मको और अरक ब्रंजासा भी इस्तेमाल करें।
2: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं डॉक्टर साहब नमस्ते, हमें गैस बहुत बनती है और पेट गुड़गुड़ करता है, क्या करें? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से।
3: पहली बात तो ये देखिए कि आप खाने पीने में कैसे खा पी रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम ये हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें खा रही हैं जिससे गैस ज़्यादा आपको बन रही है, उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक तो हब्बे कबित, सुबह शाम दो दो टेबलेट ले सकते हैं, गोली ले सकते हैं आप। और जवारिश में आप जवारिश शाही ले सकते हैं आधी आधी चम्मच सुबह शाम।

0: और एक टेबलेट और ऐड कर सकते हैं, हब्बे हल्दी जो कि हींग की गोली होती है, दो दो टेबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं। और पानी का ध्यान रखें, सोने का ध्यान रखें, खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब एंड FM रेनबो टीम को, मैं नीता अमरावती से। ये लिखते हैं, मैं FM रेनबो के प्रोग्राम सुनती रहती हूँ और हेलो डॉक्टर प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सभी परेशानियों का इलाज हो सकता है और सेहत के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो ये कहते हैं कि इनको है ना अलग अलग भाषा का मतलब अलग अलग स्टेट्स का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी ने डर भी लगता है कि सुबह का खाना शाम को खाती हैं तो कभी कोई बीमार ना पड़ जाए, तो के ऐसे में हम क्या करें कि जिससे बीमार ना पड़े और सही रहे।
2: जी, काफ़ी अच्छा सवाल है इनका। और जाहिर है कि अगर उनका पेट ठीक है तो बहुत सी बीमारियों से खुद ब खुद बच सकते हैं। वो इन्होंने जैसा कि काफ़ी सैलानी टाइप का सवाल किया इन्होंने, तमाम सारे स्टेट्स के अलग अलग फूड्स हैं, तो अच्छी बात है, इनको तजुर्बा भी अच्छा है। लेकिन यही ख्याल करें कि हर इलाके का जो भी, वो कहते हैं ना कि एक रवायती खाना जिसे कहते हैं, जैसे बिहार में चले गए आप तो वहाँ के लिट्टी चोखा बहुत मशहूर है, तो यकीनन वो बड़े काम का होता है और लोग खाएं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा वगैरह बहुत मशहूर है, ये मज़बूत खाना भी है। उसमें यह है कि घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कई बार लोग, घी का इस्तेमाल कम किया जाए। और रहा सवाल ये कि दिल्ली तो यानी समझिए कि भारत की राजधानी है, तो यहाँ तो हर तरह का खाना मिलता है, तो उन जगहों पर खाना खाया जाए। अगर कोई आदमी टूर पर निकला हुआ है तो सोचे कि मुझे कहाँ खाना चाहिए, तो वो ख्याल रखें कि जिस जगह होटल पर भीड़ ज़्यादा हो तो उन होटलों पर खाएं तो अच्छा रहेगा। उसकी वजह क्या है, वहाँ आम तौर से महसूस कर लिया जाएगा कि ज़्यादा
1: लोग खा चुके
2: खा
1: हैं, खा
2: चुके
1: रहे
2: हैं और
1: हैं।
2: खा रहे हैं, ताज़ा हो रहा होगा, ज़रूर खाना ताज़ा मिलेगा।
1: ये तो आपने हमें बताया कि जनरल में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के बचाव के लिए यूनानी उपचार कैसे करें। सबसे पहले तो बच्चों के लिए बताइए कि बच्चे क्योंकि दिन भर काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं, बाहर गर्मी में खेलते भी हैं, तो उनके बचाव के लिए क्या करें।
0: उनको जब भी देखें कि ज़्यादा बाहर से खेल के आए हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा उनको थकान है कुछ है, तो कुछ घर में ऐसा ड्रिंक बना लें जैसे शुगर है, नमक है, लेमन है, ये चीज़ें बना के उनको ये दें। और इसके अलावा हमारे पास शरबत होता है, शरबत अनार है, आंवला है, आंवला है, शरबत आंवला एंड शरबत अनार ये दे सकते हैं। और एक ड्रिंक बना के रखें जैसे जिसको ORS की ही उसको एक शक्ल कही जाएगी, जिसमें कि लेमन है एंड नमक एंड शुगर मिला के थोड़ा सा ज़ीरा भुना हुआ डाल दें, उसको दे सकते हैं, पिला सकते हैं उसको पानी में डाल के। आंवले का शरबत बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा इस वक्त, उसको भी दें। और इसका भी बहुत, अगर उसको कभी ऐसा लगे कि हाँ लूज मोशन या कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेट की, तो शरबत बेलगिरी भी ऐड कर सकते हैं, दो दो चम्मच। सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर बेहतरीन रहेंगी। रही बात प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में वैसे भी मेडिसिन थोड़ा अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वही वही चीज़ जो हमारे पास जवारिश तमर हिंदी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है, और हींग की गोली आती है जिसको हल्दी बोलते हैं, है ना, उसको दो दो गोलियां दे सकते हैं, उसके लिए बेहतर होगा। पानी वक्त पे पिए और शरबत आंवला और शरबत अनार ये सब चीज़ें लेती रहे, इससे बहुत बेहतर
1: और
0: बेहतरीन रहेगा।
1: बुज़ुर्गों के लिए क्योंकि कई बार तो एकदम सर्दी होती है, कई बार एकदम गर्मी होती है, तो बदलते मौसम में कई बार बीमार पड़ जाते हैं, तो बुज़ुर्ग क्या करें।
0: बुज़ुर्गों के लिए तो भी यही सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें हमें लीवर की मेडिसिन थोड़ा ऐड करके रखना चाहिए बुज़ुर्गों के लिए। माजून दबी दीवर देना चाहिए उनको, जवारिश पुदीना विलायती देना चाहिए, एंड यही जैसे गोंद कतीरा है, चिया सीड, इन सब चीज़ों का वो थोड़ा सा शरबत बना के वो लेते रहें, पीते रहें। गुड़ का भी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इन सारे शरबतों में। शक्कर ना यूज़ करके, शुगर ना यूज़ करके गुड़ का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना जी।
1: एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं, सर मुझे गर्मियों में लूज मोशन की शिकायत रहती है 15 दिन में, तो सर यूनानी चिकित्सा में कोई इसका इलाज है।
2: जी, काफ़ी अच्छा सवाल इन्होंने किया है। एक तो यही है कि जो

0: बारिश अनारायण का इस्तेमाल ये सुबह नाश्ता के पहले आधा चम्मच सादे पानी से कर लें, ये काफ़ी बेहतर रहेगा। और चूंकि गर्मियों में ख़ास तौर से उनको शिकायत रहती है, तो खाने का ख़ास ख्याल रखें कि उसमें बाहर की तली हुई चीज़ें, जो आजकल फैशन में मोमोज़ वगैरह तमाम सारी चीज़ें हैं, जंक फूड्स वगैरह, उसका इस्तेमाल कम करें। और जो सीज़न में कुदरत ने हमें दिया है, आम का इस्तेमाल है, केला है, पपीता है, अनार है, ये सब इस्तेमाल करें, अनानास है, इसमें जो उनको मिल जाए आसानी से कोई एक फल ज़रूर लिया करें। क्योंकि ये जो मौसमी फल है ना, कुछ तो सदाबहार फल है, जैसे अनार है हमेशा मिलता रहता है, पपीता हमेशा मिलता रहता है, अनानास है ये भी आमतौर से मिलता रहता है, ये सब डाइजेस्टिव भी हैं और काबिज भी हैं, तो उनको जो लूज मोशन शिकायत दूर हो जाएगी इससे। इसके अलावा यह है कि वो एक गोली रात को सोते वक्त हब्बे सुमाक, सु मापरा का और का सुमाक, एक गोली रात को सोते समय ले लिया करें, ये बहुत काफ़ी उनके लिए रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर सूफिया हुसैन ने बहुत सारे मशरूबात का जिक्र किया है, शरबत आमला है, शरबत अनार है, सब इस्तेमाल करें बहुत फ़ायदा रहेगा। शरबत बेलगिरी है, ये काफ़ी हमारे यहाँ चलन में है, लोग यूज़ करते हैं, बेल का मुरब्बा भी लोग इस्तेमाल करते हैं सुबह नाश्ते के बाद, थोड़ा सा ले लिया, ज़्यादा लेकिन ना लें, ये ख्याल रहे, चूँकि इन सब का मिजाज ठंडा होता है, तो ज़्यादा ले लेने में ये नुकसान होगा कि हमें बदन में दर्द भी हो जाएगा और जॉइंट वालों को ख़ास तकलीफ़ पड़ जाएगी, तो इसीलिए डॉक्टर के मशवरे से ही दवा ली जाए। कितना लेना है ये ज़रूरी है जानना, 10 ग्राम ज़्यादा ना होने पाए।
1: सही मात्रा में लेना भी आवश्यक है।
0: जी जी जी
1: जी, एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हाय हेयर डॉक्टर रिंकू मैटरनिटी होम मुनिरिका, याददाश्त बढ़ाने के लिए यूनानी मेडिसिन में दवाई है सर तो बताएं।
0: बहुत अच्छी दवा यूनानी में है, एक तो खमीरा गावजवान अम्बरी जवाहर वाला, ये सुबह सवेरे रोज़ाना इस्तेमाल करें वो, और अगर ये महंगा लगे तो इसका खमीरा गावजवान सादा भी आता है, तो सुबह नाश्ते से पहले एक चमचा इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें एक अदद अखरोट का इस्तेमाल करें, ये एक अखरोट रोज़ाना यूज़ करना, एक से ज़्यादा नहीं, या 5 बादाम रात को भिगो दिया, सुबह छील करके उसका छिलका निकाला फिर उसको इस्तेमाल किया, लेकिन इन सबको खाने के लिए थोड़ा सा वक्त दें, अच्छी तरह से चबाएं, क्योंकि अब ये मौका तो लोगों के पास है नहीं कि सील पर घिस करके इस्तेमाल करें,
1: जी
0: हालांकि बादाम घिस कर पहले इस्तेमाल किया जाता रहा, बड़ी फुर्सत रहा करती थी, तो चलिए कम से कम अगर इतना मौका नहीं है तो देर तक उसे चबाएं। तो ये दो चीज़ का इस्तेमाल करें तो इनकी याददाश्त अच्छी रहेगी, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिकल मेडिसिन यूनानी में मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत आम दवा है जो हर जगह मिल जाएगी, दवा भी और ड्राई फ्रूट भी।
1: ये तो आपने मैं बताया कि क्या हम ले। एक मैसेज हमारे पास आया, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि आप मुझे वेट कम करने के लिए कुछ बताएं, पेट बहुत भार हो गया है। आसिफ सैफी फ्रॉम मेरठ।
0: ओ, एक तो यह है कि इन्हें जो नॉनवेज है उसका इस्तेमाल कम करना है, इसी के साथ जो है कटहल, गोभी, बैंगन, अरवी, राजमा, उड़द, पूड़ी पराठे, इसका इस्तेमाल भी कम करना है, जितना कम हो अच्छा है। दूसरे, सफूफ मुहज़्ज़िल और अर्क ज़ीरा, ये सुबह सवेरे नाश्ता से पहले जब भी नाश्ता करने बैठें पहले इसको इस्तेमाल करें, 1 चमचा सफूफ मुहज़्ज़िल और ऊपर से 4 चम्मच, बड़ा 4 चम्मच ज़ीरे का पानी, वो इस्तेमाल कर लिया करें। इसके अलावा यह है कि ये खाने में सुबह शाम खाना खाने के बाद जो है हब्बे कबीर नौशादरी 2 गोली इस्तेमाल कर लिया करें, इससे उम्मीद है। और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें,
1: जी
0: सलाद या मौसम का कोई फ्रूट, जो फ्रूट इनको अच्छा लगे वो खा लिया करें।
1: लेकिन जैसे कि कई लोग होते हैं कि डायबिटिक हैं और साथ में उनको अल्सर की भी प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे तो वो क्या करें, क्या लें अगर डायबिटिक भी है और अल्सर भी है, क्योंकि उसमें वॉमिटिंग और लूज मोशन की भी कई बार शिकायत आ जाती है साथ में।
2: उसमें आप, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है अल्सरेशन के लिए, एक तो अगर आपको माउथ में हुआ है, अगर माउथ में हुआ है

0: हमारे यहाँ ज़रूर कुला करके एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, वो ले सकते हैं। अर्कियात भी ले सकते हैं इसमें, अर्के मको और अर्के बादियान, अर्के कासनी, वो ले सकते हैं। उससे किसी बहुत अच्छा
1: और अगर
0: इफेक्ट
1: पेट
0: है।
1: में अल्सर है डायबिटिक के साथ?
0: उसमें भी अर्कियात का असर, अर्कियात का ही इस्तेमाल करेंगे हम ज़्यादातर, क्योंकि उसमें हम मीठी, ये दवाइयाँ हमारी मीठी होती हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। या तो टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, या फिर जो है अगर उसको नहीं है शुगर तो फिर तो उसे मीठी ही दवा दी जाएगी। इसमें कैप्सूल वगैरह भी दे सकते हैं हम। जिग्रीन हमारे पास बहुत अच्छी आती है ना। और बाकी आप हबे कभी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। और बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसको हम शरबत के भी उसमें दे सकते हैं शक्ल में। अगर शुगर है तो फिर सिर्फ अर्कियात पे डालेंगे एंड टेबलेट पे डालेंगे, और अगर शुगर नहीं है तो मैं उसमें माजून और जवारिश भी ऐड कर सकती हूँ, है ना। माजून दबीदुलवर्त का बहुत अच्छा इफेक्ट है, उसको ज़रूर देना चाहिए। इसलिए अर्क के साथ अर्क अजीब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जी
1: तो कई बार होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, किसी को भूख लग रही होती है, किसी को नहीं लग रही होती है, और किसी को डाइजेशन नहीं हो रही होती है, तो उन तीनों केसेस में क्या-क्या करना चाहिए, उसके लिए यूनानी चिकित्सा क्या है?
2: हाँ, यूनानी में असल में अगर वाकई भूख नहीं लग रही है तो हम उसका काज देखते हैं कि क्यों नहीं लग रही है। लीवर में गड़बड़ी है या उसके आंतों में गड़बड़ी है, पेट में कोई खराबी है, एसिडिटी ज़्यादा है वगैरह। इसमें हमारे यहाँ जैसा कि बताया, जवारिश तमरहिंदी के साथ एक गोली आती है, हब्बे कुरस तुरश मुश्तही, तुरश मुश्तही कहते हैं उसे। मुश्तही मतलब इश्तहा यानी भूख लगाना। वो गोली होती है, खाना खाने के बाद दो दो गोली देते हैं उसको। इसके अलावा हम मेन काज पर जाते हैं, ये देखते हैं कि उसको असल वजह क्या है भूख ना लगना, तो वो भी दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये दवा जो है, जैसे कि दवाएं वो दी जाती हैं कि फौरी तौर पर उसके लिए काम आए, जैसे बुखार है किसी को, थबे बुखार दे दिया पहले कि भाई बुखार उसका उतरे, थोड़ा आराम मिले। क्यों हुआ वो बाद की चीज़ है, वो देखा जाएगा। तो ऐसे ही है, भूख ना लगना ये एक बीमारी है, अनोरेक्सिया। सीधी सी बात है कि उसका हमें काज देखना पड़ेगा कि वजह क्या है। जिगर कमज़ोर में आमतौर से ऐसा होता है, और कई मरतबा ऐसा होता है कि जो है वो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उसका सिक्रेशन कम होता है, तो वो देखना ज़रूरी होता है। हमारा खाने की जो सोचना ही चाहिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वो मुंह से शुरू हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, तो उससे सलाइवा लार, सराल या लार जो भी बोलते हैं लोग अपने ज़बान में, इलाके वाइज मशहूर है। तो जब हम, इसीलिए कहा गया खाना चबा चबा के खाओ, तो जो कुछ हम खाएंगे तो देर तक चबाएंगे, तो चबाने में वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना वो अपना पूरा काम करेंगे, सिक्रेशन भी अच्छा होगा और लपेट भी देगा उसे, तो वो आधा सिस्टम शुरू हो गया, यहीं आधा डाइजेस्ट हो गया सह लीजिए। फिर वो जाएगा नीचे मैदे के अंदर, स्टमक में, स्टमक में जो जाते ही जो है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, वो उस बाहर से आए हुए फूड को, हमारे जो भी हमने खाया इनटेक किया उसको जो है वो क्या करता, दो काम करता कि अगर ख़राब है किसी किस्म वजह से तो उसको तेजाबियत में लग रख करके यानी शुद्ध कर देता है, जैसे आग जला देती है, ऐसे ही उसका काम यही है। दूसरे सड़ने से बचाए, ये दो काम है तेजाब का, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे यानी आप मैदे में निकलती है, खाते फौरन कुदरती तौर पर, जैसे हमने मुंह में रखा निवाला, ऑटोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो गई, सलाइवा आ गया, ऐसे ही जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, तो HCl वो निकलना शुरू हो जाता।
1: तो कुछ ऐसे यूनानी नुस्खे हैं जिन्हें हर कोई अपना सकता है और अपनाकर दुरुस्त रह सकता है, डॉक्टर सूफिया?
0: आदमी खाने पीने का ख्याल रखे और फ्रेश खाना खाए, रात का रखा हुआ या कई दिनों का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ये सब चीज़ें। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा लीवर अगर सबसे बेशकीमती है तो उसको अच्छा बना के रखेंगे, उसी से सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं पेट की। तो नुस्खों में तो आप ये है कि

0: जवारिश वगैरह ही दे सकते हैं एंड मक्को दे सकते हैं। सफ़ूफ़ हाजिम हमारे पास एक बहुत अच्छा आता है, नमक शेखुल रईस बहुत अच्छा आता है जो कि आप सलाद पे डाल के खा सकते हैं। फ्रूट का इस्तेमाल अच्छे से करें आप, और खाने का जो भी खाना आप खाएं वो फ्रेश होना चाहिए। उसके अलावा उसमें मिर्च मसाले का बहुत परहेज़ होना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें जो घर में चीज़ें हों उसका ही इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।
1: और डॉक्टर सैयद, आप कुछ बताएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम अपने डाइजेशन को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि क्या खाएं क्या ना खाएं वो तो सब बता दिया,
2: जी जी
1: लेकिन
2: सर,
1: डाइजेशन मजबूत कैसे बनाएं?
2: बस इसमें ये ख्याल रहे कि हमारा लीवर जो है, जो सदियों से हुक्मा ने ये सिफारिश की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, उसके लिए लीवर यानी जिगर का सही होना बहुत ज़रूरी है, तो उसका ख्याल रखें। इसके अलावा जो है, आदत में किसी दवा का इस्तेमाल ना रखें, लेकिन ज़रूरत पर सफ़ूफ़ हाजिम ये बना बनाया भी आता है, हम बना भी सकते हैं घरों में। जैसे उसमें जो अहम जुज़ है वो है सौंफ का, अजवाइन का, जीरे का। ज़ीरा दो तरफ सफ़ेद और काला होता है, दोनों ले लिया जाए। नमक काला हो, और जो हम नमक खाते हैं नमक खुरदनी कहते हैं उसे, और नमक लाहौरी, इन सब का मिक्सचर बना करके हम वज़न कहते हैं बराबर बराबर, जैसे 10-10 ग्राम ले लिया सबको, उसमें काली मिर्च है वो ले ली जाए, इसका एक पाउडर बना के रख लें हम, तो ये चीज़ जो है बहुत बेहतरीन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रहेगा। ये हम इस्तेमाल करें और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर रखें।
1: वैसे समय हमारा जाने का हो गया है, लेकिन चलते चलते एक मैसेज हमारे पास आ गया है, तो मैं शॉर्ट में आपसे लेना चाहूँगी कि वो लिखते हैं कि सर, एलोपैथिक में गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन से निकाला जाता है, यूनानी मेडिसिन में कोई दवाई है जिसकी गॉल ब्लैडर स्टोन घुल जाता हो या ख़त्म हो जाए? ये
2: असल
1: है
2: में
1: रिकू सिंह,
2: हाँ, ये बहुत
1: रिकू
2: सही
1: सिंह।
2: सवाल इन्होंने किया है, अच्छा सवाल है। इसमें चूंकि यूनानी में जो है हम दवाएं जो देते हैं वो लीवर के इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं, ये सर्जिकल केस असल में है, इसलिए हम इसको रेफ़र कर देते हैं ताकि इलाज बिलियद के तौर पर यानी सर्जरी उसकी आसानी से हो जाए और उससे फ़ायदा उठाए वो।
1: तो वक्त हो चला है जाने का, लेकिन जाते जाते एक लाइन में संदेश हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या देना चाहेंगे? डॉक्टर सैयद, आप बता दीजिए संदेश हमारे श्रोताओं के लिए।
2: देखिए, काफ़ी अच्छे सवाल आता है, और मुख्तसर बात यह है कि हमने सबसे पहले भी ये बात कही थी कि सादा खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, समय से खाना खाएं और समय से सोएं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुश रहें और खुश कभी रहें जब सेहत हमारी अच्छी होगी।
1: और डॉक्टर सूफी, आप क्या संदेश देंगी?
0: मेरा भी यही कहना है कि खाना फ्रेश खाएं, ताज़ा खाएं, वर्जिश करें, नींद अच्छी लें और खुश रहें।
1: तो दोस्तों, धूप की गर्मी पर हमारा बस नहीं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारे हाथ में ज़रूर है। तो पानी भरपूर पीजिए, संतुलित आहार लीजिए और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखिए, क्योंकि पेट रहेगा दुरुस्त तभी ज़िंदगी रहेगी मस्त। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर सैयद अहमद खान, यूनानी एक्सपर्ट, और डॉक्टर सूफिया उत्साही, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिसिन, CGHS। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
0: आपका भी बहुत
2: आकाशवाणी
1: शुक्रिया।
2: का।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, अच्छी सेहत कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन भर की एक सतत यात्रा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहे, सजग रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे विमानन क्षेत्र से जुड़े 77,00,000 रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।
1: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीज का एक ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड क्रिएट किया गया।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। ये योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति जाँच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम

प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। इस कार्यक्रम में 480 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।
4: हर बच्चा है एक नई किरण, अध्यापक के मन में लगन। हर बच्चे को तराशूं, ऐसे तराशूं जैसे हो कोई अनमोल रतन। हर बच्चे की खूबी अलग, यह बच्चा अलग वह बच्चा अलग। मत आंको सबको एक जैसा, मत हांको सबको एक जैसा। एक अध्यापक के तौर पर हम अलग अलग गतिविधियां कराएंगे। सभी बच्चों की प्रतिभाएं निखार, उनका उज्जवल भविष्य अपने हाथों से बनाएंगे। अभिभावकों से है अनुरोध, अध्यापकों का करें सहयोग।
3: जी हाँ, एक टीचर की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी क्लास में पढ़ने वाला हर छात्र और छात्राएं अपने जीवन में एक ऊंची उड़ान भरें, और इसीलिए वो उनको कभी डांटते हैं तो कभी अपना गुस्सा उन पर निकालते हैं। लेकिन न समझ बच्चे अक्सर टीचर के इस तरह के व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं, और जब वो अपने माता पिता से इसकी शिकायत करते हैं तो ज्यादातर माता पिता भी टीचर के प्रति रखने लगते हैं गलत सोच।
5: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं। कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पे चले।
3: जी हां, प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन का कवच ही जिंदगी को बुलंदियों तक ले जाने में निभाते हैं एक अहम भूमिका। दोस्तों, आज के दिशा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्यों जरूरी है टीचर का साथ देना हर माता पिता के लिए।

0: जी हाँ, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए जो कुछ हम उनके सामने उदाहरण पेश करते हैं वो उसको अपना लेते हैं। अगर माता पिता बच्चे के टीचर की इज्जत करेंगे तो बच्चा भी उनकी इज्जत करना सीखेगा। और आइए अब हम सुनते हैं कुछ टीचर्स के विचार।
1: मैं अलीगढ़ के प्राथमिक विद्यालय घोरोट से हेडमास्टर सुरेंद्र प्रताप गौतम। मेरा मानना है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के उज्जवल भविष्य को आकार देने

0: के लिए मजबूत नींव या आधारशिला तैयार किए जाने से संबंधित है, जो कि एक टीचर के लिए बिना माता पिता या अभिभावक के सहयोग या साथ के संभव नहीं है। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षक और माता पिता की जो योजना है उसे एकीकृत कर मूर्त रूप दे व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।
1: नमस्कार साथियों, मैं बबीता राठी, प्रधान अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय पाहौटी, जनपद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में सफल हों, अच्छे संस्कारों वाले नागरिक बने और अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन यह कार्य केवल विद्यालय या केवल परिवार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए शिक्षक और अभिभावक दोनों को मिलकर कार्य करना आवश्यक है। विद्यालय में शिक्षक बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और जीवन मूल्यों का ज्ञान देते हैं, जबकि घर पर माता पिता उन्हें प्रेम, संस्कार और प्रेरणा प्रदान करते हैं। जब शिक्षक और अभिभावक एक टीम की तरह कार्य करते हैं, तब बच्चे के विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई में रुचि लें, नियमित रूप से विद्यालय आएं, शिक्षक से संवाद करें और बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने में सहयोग करें। यदि किसी बच्चे को पढ़ाई में कठिनाई हो तो शिक्षक को अवश्य बताएं, ताकि मिलकर उसका समाधान किया जा सके। याद रखिए, एक पौधे को बड़ा वृक्ष बनने के लिए जिस प्रकार मिट्टी, पानी और धूप तीनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक बच्चे को सफल बनाने के लिए परिवार, विद्यालय और समाज तीनों का सहयोग जरूरी होता है। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षक और अभिभावक मिलकर कार्य करेंगे तथा हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे।

0: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा, एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, क्यों जरूरी है टीचर का साथ देना, हर माता पिता के लिए बता रही हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ।
1: जी हाँ प्रिय श्रोता, आज हम बात करेंगे कि एक बच्चे के अच्छे विकास में माता पिता और अध्यापकों की क्या भूमिका है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी स्कूल से बुलावा आता है तो माता पिता काफ़ी परेशान और विचलित हो जाते हैं, एकदम बच्चे पर बरसते हैं। तुमने ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, कुछ बदमाशी करी होगी, पढ़ाई ठीक से नहीं करी होगी, और एक टेंशन का वातावरण और एक माहौल सा बन जाता है। बच्चे को भी बहुत टेंशन होती है। जब मेरे बच्चे छोटे थे, जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी जहाँ पर कि एक मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, बच्चे के विकास की बात की जाती है, मेरे हस्बैंड जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि टीचर बच्चे की शिकायत करेगी और माता पिता को डांटेगी। और अधिकतर परिवारों में ऐसा ही होता है, पिता जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि अधिकतर जो टीचर्स होती हैं वो महिलाएं होती हैं, तो वो कहते हैं कि तुम माँ हो और तुम टीचर्स हो तो तुम जाकर ही मिल लो। लेकिन मेरा मानना है कि माता पिता दोनों जिम्मेवार हैं बच्चे के अच्छे विकास और लालन पालन में, और दोनों को इस जिम्मेवारी को एक साथ बराबर से उठाना चाहिए, विशेषकर आज के समय में जब हमको अपने बच्चों पर, जो कि हमारे देश का भविष्य हैं, उनकी विकास में बहुत ध्यान देना है। और ये एक पार्टनरशिप है जो कि टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में होती है। तो इस ख्याल को निकाल कर के सारे दुनिया की टीचर्स हमारे बच्चे की ही दुश्मन हैं, अगर माता पिता ये सोचें कि हम टीचर और पेरेंट्स मिलकर एक पार्टनरशिप करते हैं ताकि हम सब मिलकर एक ही उद्देश्य को पूरा करें, और वो उद्देश्य है अपने बच्चे

0: अच्छी डेवलपमेंट, उसका अच्छा विकास। तो ये साझेदारी, ये पार्टनरशिप बहुत दूर तक जाएगी। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। पता नहीं ईश्वर ने मुझे उस वक्त बुद्धि दी, जब मेरा बेटा छोटा था तो बहुत शरारती था और उसको हमेशा फुटबॉल से खेलना था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। तो जब टीचर्स ने हमें बुलाया तो मैंने उनसे लड़ाई करने की बजाय या उनको गुस्सा करने की बजाय मैंने उनसे पूछा, आप मुझे बताएं कि हम कैसे इस बच्चे को सुधार सकते हैं। जैसे ही टीचर्स को ये लगा कि ये माता पिता हमारे साथ मिलकर बच्चे के विकास में रुचि रख रहे हैं, वो एकदम रिलैक्स हो गए। फिर जब जब हम पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाते थे, बहुत अच्छे से हमारी मीटिंग्स होती थी, बहुत मुस्कुरा कर हम बात करते थे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था वो बच्चे की डेवलपमेंट था। एक दूसरे से लड़ाई करना या एक दूसरे पे आरोप लगाना नहीं था। अधिकतर देखा गया है कि माता पिता एक लड़ाई के एटीट्यूड से टीचर से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि माता पिता को शायद ये लगता है कि ये टीचर मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गई है। तो टीचर को जब ये लगता है कि माता पिता एक आक्रमण करने के उद्देश्य से आ रहे हैं, तो टीचर भी सतर्क हो जाती है, टीचर भी अलर्ट हो जाती है। और उसमें क्या होता है, जो पिसता है वो है बच्चा। तो पहले तो हमें ये समझना है कि माता पिता और अध्यापक दोनों ही बच्चे के विकास में इंटरेस्ट हैं और दोनों ही बच्चे के विकास के उद्देश्य के साथ बात कर रहे हैं और उसके साथ ही काम कर रहे हैं। बच्चा क्लास में अलग बिहेवियर रखता है, घर में अलग रखता है। टीचर्स एकदम भांप लेती हैं बच्चे को स्कूल में क्लास में देखते हुए कि घर का वातावरण क्या है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चा ठीक से सो नहीं रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो फेल हो रहा है, टीचर्स को एकदम पता लग जाता है। तो ऐसे समय में जबकि माता पिता अक्सर अलग होने की बातें करते हैं या एक लड़ाई का वातावरण है, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने घर में एक शांति का वातावरण रखें, प्रेम समृद्धि और शांति बनाए रखें ताकि बच्चे का विकास नॉर्मल हो। क्योंकि जहाँ घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर बच्चे के दिमाग पर चोट लगती है, और जब वो चोट लगती है और बच्चा बोल नहीं पाता, वो अंदर ही अंदर घुटता है। तो जब उसको पहला मौका मिलता है, या तो वो ड्रग्स में, या वो घर छोड़ के भागने में, या आजकल तो सुसाइड की तरफ भी वो सोचता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि माता पिता और टीचर्स एक साथ मिलकर प्रेम से, समझदारी से अपने बच्चे के विकास के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करें।
1: जी हाँ, जिस पल जब माता पिता अपना हाथ बढ़ाकर टीचर का हाथ थाम लेते हैं तो बच्चे का भविष्य उसी पल से उज्जवल होने की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, याद रखिए, जिस घर में बच्चे के सामने गुरु को इज्जत दी जाती है, उसी घर में बच्चा भी एक दिन गुरु बनकर न सिर्फ माँ बाप का नाम रोशन करता है, बल्कि स्कूल भी उस बच्चे पर करता है गर्व। दोस्तों, अगर आप हमारे काउंसलर से अपने बच्चे से संबंधित विषय पर बात करना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज करके बात कर सकते हैं। नंबर है 7678438481। जी हाँ, 7678438481। और हाँ, अगर आप हमारे साथ यानी दिशा फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और कई जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको संवारने में

0: हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करके या हमारे काउंसलर से फोन के द्वारा बात कर सकते हैं। 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से मैं स्वाति आप सभी के साथ। हमारी जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे हम अपनी स्टूडेंट लाइफ से होकर एडल्ट लाइफ में जो है वो कदम रखते हैं, हमेशा के लिए जिन भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हम गुजरते हैं, जिन भी शैक्षणिक संस्थानों से हम अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजारते हैं, वो सभी हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और इसीलिए हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने आप को बेहतर करना चाहता है, अपने आप को एक ऐसी पहचान देना चाहता है जो उसके स्टूडेंट्स की पहचान के साथ जब जुड़े तो स्टूडेंट्स बड़े ही गर्व के साथ बताना पसंद करें कि हम फला स्कूल से हैं या फिर हम फला कॉलेज से हैं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में हर हफ्ते हम आपके लिए समेट लाते हैं ऐसे ही स्कूल्स, ऐसे ही कॉलेजेस, ऐसे ही कैंपस एंड कैंपस कॉलिंग, वेल स्पेशली कॉलेजेस जो हैं वहाँ से हम आपको करते हैं, करवाते हैं रूबरू। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन्हीं कॉलेजेस में पहुँचते हैं हमारे सहयोगी और वहाँ पर करते हैं वो वहाँ के प्रिंसिपल से, टीचर्स से और स्टूडेंट से बातचीत और समेट कर लाते हैं हर बार उस पहचान के कुछ हिस्से जो हमेशा के लिए वहाँ के स्टूडेंट्स से जुड़ जाती है। आज हम कहाँ पहुँचे? आज हमारे सहयोगी माला नेकी पहुँची हैं जाकिर हुसैन कॉलेज, इवनिंग कॉलेज, और वहाँ उन्होंने की बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत। और जानते हैं पहचान की बात जब मैं कर रही हूँ तो इस कॉलेज की एक बहुत ही खास पहचान है। ये कॉलेज हमेशा कॉलेज नहीं था, लेकिन जहाँ तक शैक्षणिक संस्थान होने की यानी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने की बात है, ये है भारत का सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज पहुंची हमारी सहयोगी माला ने की, वहां पे की उन्होंने बातचीत। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल का आज का ये एडिशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं इसी कॉलेज से।
2: हाय, तो अभी मैं हूँ जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में और मेरे साथ है यहाँ के फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी के स्टूडेंट्स, जिनका ये काम है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि कॉलेज में कोई भी अगर इवेंट होता है तो वो सबके पास उससे रिलेटेड वीडियोस पहुँचने चाहिए और उसकी पूरी पब्लिसिटी होनी चाहिए, और वो पब्लिसिटी मटीरियल तैयार करते हैं ये लोग। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। आपका शुभ नाम?
3: मैम, मेरा नाम भविष्य है।
4: मैं प्रदीप कुमार।
2: ओके भविष्य, आपका नाम तो बिल्कुल भविष्य की सोच के साथ ही रखा गया है। तो आपसे ये सवाल है मेरा कि अगर आप फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी को यहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज के लिए, अगर कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप कौन से तरह के टिप्स या कौन से ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी सर्कुलेशन जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके?
3: मैम, एक्चुअली हमारी सोसाइटी का काम प्रिटी सिंपल है। हम ज़्यादा मेंबर्स नहीं है सोसाइटी में, वी आर जस्ट 20-25 मेंबर्स, बट वो सारे सीरियस वॉलंटियर्स हैं। और एक्चुअली कोई भी इवेंट होता है अगर कॉलेज के अंदर तो हमको एक मेल या फिर इंस्टा पे ऑफिशियल रिक्वेस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान कर लेते हैं इवेंट जो भी कुछ करना होता है।
4: शॉर्ट वीडियोस बनती है हमारी फेलिसिटेट करते हुए हमारे चीफ गेस्ट को, हमारे ऑनर को, हमारे मेन प्रिंसिपल हेड को और सारे टीचर्स जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनके बीच हम सारे वीडियो कवर करते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस लेते हैं जिसको हम एज अ ना मेन थीम की तरह उसे पोस्ट करते हैं ताकि उस इवेंट में क्या था, बेसिकली किस बच्चे को पार्टिसिपेटेड, क्या प्राइज मिले, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं उन चीज़ों में।
2: अच्छा, अगर हम टैगिंग को लेकर बात करें, कहते हैं कि जब आप कोई वीडियो बनाते हैं या शॉर्ट

0: बनाते हैं तो उसकी टैगिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड कोई टिप देना चाहेंगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स को कि किस तरह से टैगिंग करें ताकि मैक्सिमम रीच मिले?
1: मैम, टैगिंग का एक्चुअली ये रहता है कि जैसे हमारा DU के अंदर इवेंट होते हैं, हमारे कॉलेजेस के अंदर होते हैं, तो बेसिकली जो मैक्सिमम टैग्स हम यूज करते हैं, एक अपने कॉलेज का हो गया, अपनी यूनिवर्सिटी का हो गया, प्लस मैक्सिमम रीच गेन करने के लिए जो 2-3 ट्रेंडी हैशटैग या टैग्स वगैरह जो यूज करते हैं, जिस चीज से रिलेटेड हमारे इवेंट हुआ है, अगर UPSC रिलेटेड है तो UPSC का कोई टैग हो गया, या फिर फिल्म एंड फोटोग्राफी का कोई वर्कशॉप है तो उसका टैग हो गया, तो हम वो यूज करते हैं, उसके थ्रू डिसेंट अमाउंट ऑफ रीच हमको मिल जाती है।
0: ओके, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: हाय, तो अभी मैं हूँ जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में और मेरे साथ है यहाँ की WDC की मेंबर्स, विमेन डेवलपमेंट सेल की मेंबर्स हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे, अब बहुत जल्द योग दिवस आने वाला है तो इसको कनेक्ट करते हुए WDC की क्या प्लानिंग है?
2: सो माईसेल्फ वेरोनिका जीना एंड माई कोर्स इज BA प्रोग्राम।
0: ओके,
2: WDC की करेंटली प्लानिंग है, हमने प्रीवियस ईयर भी ये चीज़ करी थी कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, अब जहाँ पे मेंटल स्ट्रेस रिलीव करने के लिए चीज़ें बताई गई थी, योगासन बताए गए थे डिफरेंट, हम यहाँ सेशन करवाते रहते हैं, प्रीवियस ईयर हमने करवाए थे, इस साल भी हम प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इस साल क्या होता है ना, विमेंस आजकल इतनी प्रेशराइज हो जाती हैं, इतना चीज़ें हो जाती है करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, तो वो अपनी हेल्थ का नहीं ध्यान रख पाती हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स डिले हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी आ जाती है, तो उन चीज़ों को डील अप करने के लिए वी आर प्लानिंग फॉर दिस योगा सेशन।
3: एंड माई सेल्फ ऐश्वर्या सिंह, माई कोर्स इज BA प्रोग्राम।
0: ऐश्वर्या, जानना चाहेंगे अगर हम योग को कनेक्ट करें सुंदरता के साथ तो किस तरह से आपको लगता है कि खूबसूरत दिखने में योगा का एक बहुत बड़ा योगदान है?
3: तो योगा को इस तरह से भी ले सकते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती है, बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आती है, ब्लोटिंग वगैरह होती है, जो कि योगा से वो रिलीफ मिलता है, हमें पीरियड्स के टाइम पर रिलीफ मिलता है, जब लड़कियाँ जैसे पिम्पल्स वगैरह होती है तो उसे प्रेशराइज हो जाती है कि हाँ ये, तो वो सब चीज़ें भी ठीक हो सकती है आप अगर सही तरीके से करो, सही डाइट लो।
0: हाय, तो अभी मैं हूँ जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ और मेरे साथ है यहाँ की थिएटर सोसाइटी के मेंबर्स, और थिएटर सोसाइटी के बारे में, एक्टर्स के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े ही क्रिएटिव होते हैं, इनको कुछ भी टास्क दे दो और भूल जाओ कि इन्होंने कोई प्रैक्टिस भी करनी है, ये अपने आप ही तैयार होते हैं। तो चलिए अब आपको एक टास्क देते हैं, आकाशवाणी के 90 साल हमारे पूरे हो रहे हैं और ऐसे में इस स्पेशल प्रोग्राम में हम एक स्पेशल सेगमेंट आपके साथ रख रहे हैं, हम हमेशा सबको एंटरटेन करते हैं, एजुकेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, आज हम चाहते हैं कि जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे 90 ईयर्स के सेलिब्रेशन पर हमें एक गाना डेडिकेट करें, तो वील स्टार्ट फ्रॉम यू।
4: हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अक्षय सती, मैं BA प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, मैं जो गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ वो किशोर कुमार का है, पल पल दिल के पास FM रहता है

0: क्या
1: है
0: बात है।
1: पल पल दिल के पास अफ़हम रहता
0: क्या
1: है।
0: बात है, इमोशन से भर दिया तुमने। आंसू ना आ जाए मेरे कहीं।
2: हेलो, माई सेल्फ मिरांदे पुरोहित एंड आई एम फ्रॉम बी ए प्रोग्राम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग। एंड मैं ये रातें ये मौसम गाना डेडिकेट करना चाहूँगी।

0: हाँ
1: तो मेरा नाम दीपांशु है और मैं जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय सांदे के नाट्य मंडली का एक सदस्य हूँ। आकाशवाणी के 90 साल होने पर मैं उन्हें डेडिकेटेड करना चाहूँगा एक गाना जो है, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। और यही तो FM आपसे कहता है। थैंक यू
0: लवली लव। अच्छा, आप लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे, बीइंग थिएटर सोसाइटी मेंबर्स, आप लोगों

के स्टूडेंट्स के बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं, नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आप इसे सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज, वहां के स्टूडेंट से की उन्होंने यहां पर बहुत सारी बातचीत। और जब आकाशवाणी के 90 साल की बात आती है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि अभी तो जो है ना टीनेज है हमारे आकाशवाणी की, और अभी आगे आगे ये कोलैबोरेशन और बहुत आगे बढ़ना चाहिए। और जब किसी भी चीज़ को रिक्रिएट करने की या फिर उसमें नए आइडियाज़ लाने की बात होती है तो हमारा यूथ हमेशा उसमें सबसे आगे होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह से एक रिक्रिएट कर दिया, आकाशवाणी के साथ जोड़ दिया अपने फेवरेट गानों को। और जब रिक्रिएट करने की बात हो ही रही है तो चलिए आप सभी के लिए मैं प्ले करती हूँ एक गाना जिसे रिक्रिएट ही किया गया है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे ये प्रोग्राम चल रहा है, अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल।

0: डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
5: म्यूजिकली यॉर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग, और अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में आज हमारी सहयोगी माला नेगी हम तक पहुंचा रही हैं वो बातचीत जो कि उन्होंने जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ में। इस कॉलेज का इतिहास बहुत ही लंबा है और उसकी अगर हिस्ट्री में बाद में जाएंगे, पहले ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। मतलब ज्योग्राफी से मेरा मतलब ये नहीं है वहाँ के लेआउट या प्लान से नहीं है, बल्कि वहाँ के जो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ के जो अलग अलग आयाम हैं जो कि स्टूडेंट्स को मिलते हैं इस कॉलेज में अपने एकेडमिक्स के साथ में, उन सब की बात कर रही हूं मैं यहां पर। तो चलिए जानते हैं कि वहां पर किस किस एक्टिविटीज से जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं।
6: हाय, तो अभी मैं हूँ जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ और मेरे साथ इको क्लब के मेंबर्स। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह के इनके इनिशिएटिव्स होते हैं जिसकी वजह से कॉलेज इको क्लब को लेकर काफी एक्साइटेड है और इनके इनिशिएटिव्स ने इनको काफी अचीवमेंट्स भी दिलवाए।
7: हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची एंड आई एम द सेक्रेटरी ऑफ पंचतत्व, द इको क्लब सोसाइटी ऑफ जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग। आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द बेस्ट सोसाइटी दैट आई हैव वर्कड विद। बिकॉज फर्स्टली ये एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट कि लोगों में अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में, स्पेशली आज के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिडली बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को साइडलाइन किया जा रहा है। सो इसीलिए इको क्लब ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से हमको वन ऑफ आर अवार्ड्स इज जीरो वेस्ट कैंपस अवार्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी में इवनिंग कॉलेज में सिर्फ हमको ही मिला था, द फर्स्ट पोजीशन। एंड ऑल्सो वी गॉट द यू नो ग्रीन टेक्नोलॉजी अवार्ड, क्योंकि हमने बायो एंजाइम वगैरह वो पूरी टीम बताएगी आपको आगे। वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल्सो 70+ इवेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वी हैव कंडक्टेड एंड वी टॉक अबाउट एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी।
6: क्या बात है। तो जानना चाहेंगे आपसे ये ऑनलाइन और ऑफलाइन इवेंट्स के बारे में जो बात हुई, ऑफलाइन तो हम समझते हैं, ये ऑनलाइन क्या होता है, इसके थ्रू आप कैसे वर्क करते हैं?
8: ऑनलाइन हम इवेंट्स कराते हैं लाइक प्लांटेशन ड्राइव्स, जैसे कि कुछ जो बच्चे घर पे हैं हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उसके थ्रू हम प्लांटेशन ड्राइव्स कराते हैं, इको क्विजेस कराते हैं जिससे अवेयरनेस फैल सके एनवायरमेंट के लिए एंड सारी चीजों के लिए। और फिर हमने कई सारे प्रोग्राम्स करवाए हैं और हमने पूरे ईयर में 70+ इवेंट्स करवाए हैं।
6: अच्छा।
8: और हमने अभी फेब में हमारा इवेंट करवाया था, फिर हमने अभी अप्रैल में हमारा एनुअल फेस्ट करवाया, उसमें हमने एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो सस्टेनेबिलिटी को लेके सोप्स एंड सारी चीजें बनाती हैं, उसको हमने बुलाया था एज अ स्पॉन्सर। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी हमारे कॉलेज में, हमें सारी चीजें समझाई कि कैसे सस्टेनेबिलिटी के थ्रू हम एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं हार्मफुल केमिकल से, सब्सटेंसेस से। तो हम पूरे सेशन में, थ्रू आउट दी सेशन, हम ये सारे इवेंट्स करवाते रहते हैं जिससे हम एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें।
6: ओके, योर गुड नेम?
8: अर्नव।
9: My good name अमृत, I am joint secretary at Panchtatva, second year student.
6: So अमृत, आपके तो नाम में ही अमृत है, और एक ऐसी जगह जहाँ पर वेस्टेज हो ही ना, जहाँ मतलब गंदगी हो ही ना, जीरो वेस्ट एरिया, अगर वो अगर आपके इर्द गिर्द है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो जगह किसी भी अमृत से कम नहीं है। तो अमृत, इसमें आपका योगदान कैसे रहा?
9: हमने ना ही सिर्फ जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है ना ही सिर्फ उन पे फोकस किया था, हमने इवन ई वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया था। जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स हम वेस्ट ऐसे ही कहीं पे भी फेंक देते हैं या कहीं पे भी वो पड़े होते हैं, तो उसकी जगह हमने एक ब्रांड है उनसे हमने कोलैबोरेट किया था, वो हमारे कॉलेज में आके अपना डस्टबिन सेटअप किए थे जिसमें हमने बच्चों उनका एक ये डील हुआ था हमारा उनसे कि हम जितना उनको वेस्ट प्रोवाइड करेंगे वो इन रिटर्न हमें बहुत मतलब उसके बदले हमें वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे टू रन आवर कैंपेन्स थ्रू आउट।
6: ओके, इससे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपकी सोसाइटी इको क्लब सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जब अच्छा काम आप कर रहे हैं और उसकी आपको रिकग्निशन भी मिल रही है, तो कई बार आपके एंथुजियाज्म को इतना सपोर्ट मिलता है कि आप फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्लान्स बना लेते हो। आपका क्या प्लान है फ्यूचर का?
7: मेरा नाम आकृति है, मैं पंचतत्व सोसाइटी में क्रिएटिव हेड हूँ। एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी हमने अभी तक बहुत इवेंट्स कराए हैं, सब कुछ किया है, कैंपेन्स किए हैं, लोगों को अवेयर किया है, बहुत कुछ किया है। बट अगर हम फ्यूचर की बात करें, बस एनवायरनमेंट को कंजर्व करना बस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात नहीं होती है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत टाइम लगेगा उन सब चीज़ों को करने में। अगर हम मैं इस कॉलेज की भी बात करूँ तो आज भी बहुत बच्चे हैं जो कहीं पर भी कुछ भी फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, राइट? तो अवेयरनेस उतना तो फैला ही नहीं है और मुझे नहीं लगता कितना टाइम लगेगा अवेयरनेस फैलने। तो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो यही होंगे कि हम लोगों को और भी लोगों को, जैसे अभी तक हम 1000 बच्चों को जोड़ चुके हैं अपनी सोसाइटी के साथ, तो आगे भी हम उससे ज़्यादा लोगों को जोड़े और ज़्यादा बेहतर हम लोग प्रोग्राम्स करवाएं, इनिशिएटिव्स लें।
6: वो कहते हैं ना कि जब आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ करना है तो आपको साथ में ये भी लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए ये जज्बे के साथ जिस तरह से आकृति ने कहा कि सिर्फ 1000 लोग ही जुड़े, 1000 लोगों का नंबर बहुत बड़ा होता है इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी चेंज। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1000 लोग भी बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके एम्स बहुत हाई हैं और ये बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू योर सोसाइटी। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और 1000 को 1,00,000, 1 करोड़ और 1 अरब पहुंचा दीजिए। हाय, तो अभी मैं हूँ आयुष के साथ जो कि है कॉलेज क्रेस्ट, और ये कॉलेज क्रेस्ट जो है अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है जाकिर हुसैन कॉलेज में, क्योंकि ये कॉलेज के सिर्फ 2-3 बच्चों को ही मिलता है। आयुष, आपको किस लिए मिला?
1: मुझे कॉलेज क्रेस्ट इसलिए मिला कि साल भर पूरे एनुअल सेशन में मैंने कई मेडल्स जीते हैं, कई अवार्ड्स जीते हैं, कई ट्रॉफीज जीते हैं, कई जगह पार्टिसिपेशन करा, हार मिली, जीत मिली, इन सबको देखते हुए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित करा।
6: ओके, तो आयुष ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि बहुत पार्टिसिपेशन आपने किया है, कोई एक ऐसा पार्टिसिपेशन जो आपके दिल के बेहद करीब है?
1: इसी साल जनवरी में मैंने SRCC में शॉटपुट में गोल्ड प्राप्त करा। इसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन इसलिए हुआ कि मैं पिछले साल भी खेला था, पिछले साल मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था और मुझे बेहद दुख हुआ था कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, बट उसके बावजूद भी मैं अपना पूरा परफॉर्मेंस अच्छा 100% नहीं दे पाया। तो मेरे एक अंदर एक चाह थी कि मुझे इस बार गोल्ड चाहिए ही चाहिए, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, मैं दिन रात ट्रेनिंग करा, उसके बाद जब मुझे वो हासिल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हार्डवर्क, पेशेंस और डेडिकेशन सही में रियल है और इसका फल जरूर मिलता है।
6: बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपके हार्ड वर्क ने और साथ के साथ इस डिटर्मिनेशन ने कि मुझे अगली बार गोल्ड निकालना है, आपको गोल्ड दिलवा दिया। ऑल द बेस्ट टू यू। मैं तो कहती हूँ गोल्ड के ऊपर अगर डायमंड भी कहीं मिलता है तो वो भी आपको मिल जाए अगली परफॉर्मेंस के जरिए। थैंक यू सो मच। हाय, तो अभी मैं हूँ जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग में और मेरे साथ है यहाँ की NCC और NSS की स्टूडेंट्स, और आज ग्लोबल रनिंग डे है तो एक बहुत ही खास सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि मैं इनसे पूछूं, क्योंकि जब NCC और NSS की बात करते हैं तो डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों की लाइफ में भी डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होगा?
10: यस मैम।
6: तो ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन सा दिन था जिस दिन आप सबसे तेज भागे थे।
11: हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनल विश्वकर्मा एंड आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट। और मेरे लाइफ का एक इंसिडेंट है, अभी रिसेंटली मैं गई थी अलीगढ़, मेरा ट्रेन एक्चुअली था 125 एंड मैं वहाँ पे रीच करती हूँ 120 पे। अब मेरे पास 5 मिनट्स थे और मैं मेट्रो स्टेशन से ऐसे भागी हूँ, कैसे भी करके वो ट्रेन जो है मिस नहीं होनी चाहिए, जो मैं भागी हूँ। मेरे को लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस मिला है कि प्लीज बी ऑन टाइम, डोंट बी लेट।
6: मुद्दा ये है कि उस दिन आपने ट्रेन पकड़ी या छूट गई?
11: पकड़ी फाइनली।
6: ओके, तो उस दिन तो आपको बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए था, राइट? ओके,
12: सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिरदवे एंड आई एम इन सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। सो लेट मी टेल यू माय रिसेंट एक्सपीरियंस, तो वो भी इट वाज अ सिमिलर वन। छुट्टियां मतलब ब्रेक था, एग्जाम ब्रेक, तभी मुझे कैच करनी थी ट्रेन मेरे होम टाउन के लिए, और तब बड़ी मुश्किल से 10 मिनट बचे होंगे और मैं 5 मिनट पहले ट्रेन पहुंच गई थी। मैं
6: मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आपका कोई रिश्तेदार रेलवे डिपार्टमेंट में होगा। कैसा है
12: जी?
6: अच्छा, चलो ठीक है, तो आपको भी एथलीट वाला अवार्ड मिल जाना चाहिए।
13: हेलो एवरीवन, आई एम सीमा और मेरा डिपार्टमेंट है BSc इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे साथ जो है, जो मैं रिसेंटली एक मैराथन में फर्स्ट आई हूँ 5 किलोमीटर में, अभी इधर नॉर्थ कैंपस में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो वो मेरे लिए बेस्ट डे था उस दिन का, क्योंकि मैं बहुत आलस करी थी कि मैं ना जाऊं, नींद आ रही थी, बट मैंने उस चीज को सेक्रीफाइस कर

0: सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैं पहुंची उस मैराथन के लिए और मुझे यकीन नहीं था कि मैं उस दिन जीत सकती हूँ, क्योंकि बहुत बॉडी थक रही थी और ऐसा लगा था कि गिव अप कर दूं वहीं पे। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब जितना आगे बढ़ गई तो और आगे बढ़ सकती हूँ फिनिश लाइन तक। बहुत अच्छा था मेरे लिए वो दिन।
1: अच्छा, तो उस दिन आपको फिर प्राइज में क्या मिला?
0: ट्रॉफी मिली और मेडल मिला।
1: ट्रॉफी और मेडल, ओके।
2: हेलो, आई एम कैडेट वर्षा कुमारी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक साइंस। तो रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने के लिए राजघाट गई थी। बट मेरी ये आदत है कि मैं अपने फोन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, तो मैं वहाँ पे अपना फोन भूल गई। और ऐसा होता है कि राजघाट का ये क्लोजिंग टाइम 6 बजे का होता है और मैं 5:50 में वहाँ से निकली।
1: अच्छा।
2: और उसका 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने तो अपना फोन लिया ही नहीं। और उसके बाद हम उतरे तो अपोजिट साइड में ऑटो वगैरह भी चल नहीं रही थी, उस एरिया थोड़ा सुनसान है। तो अब मेरे को था कि 10 मिनट में तो बंद होगा और फिर मैंने 10 मिनट में 2 किलोमीटर रनिंग करके बस कवर किया था। और फिर मैंने अपना फोन लिया और लकीली मुझे अंदर जाके ढूंढना नहीं पड़ा। वहाँ पे मेन जो वहाँ पे रहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी के लिए, उनके पास था मेरा फोन तो उन्होंने मेरे को दे दिया।
1: थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन।
2: थैंक यू मैम।
3: कितने खूबसूरत सी बातें हैं ना, और मुझे लगता है कि हमेशा के लिए जो है ना इन स्टूडेंट्स को ये सारी बातें याद रह जाएंगी और ये इंटरेक्शन भी इन्हें याद रह जाएगा कि किस तरह से थोड़ी देर के लिए ये आकाशवाणी का हिस्सा बने। और आकाशवाणी हमेशा रहता है आप सभी की ज़िंदगी का हिस्सा। हमारा ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम जो आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच, नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का। ये स्पेशल एडिशन अल्फाजन का जो आपके लिए लेकर आता है, हर बार एक नया कॉलेज, हर बार कुछ नए स्टूडेंट्स, और हर बार हम ये जानकर, मतलब मैं अपनी बात जरूर कह सकती हूँ कि हर बार ये जानकर सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चे जो हैं स्टूडेंट लाइफ को नेविगेट करते करते जिंदगी के कितने सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो है ना वो सीख जाते हैं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल।

0: इसी तरह से हंसते गाते और मुस्कुराते कैसे बीत जाते हैं ये पल, ये दिन पता ही नहीं चलता। जी हाँ, यही वही चमकीले दिन है जो आपके स्टूडेंट लाइफ के होते हैं, आपके कैंपस लाइफ के होते हैं। आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन ऑफ अल्फाजन जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। और आज हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज, वहाँ के स्टूडेंट से की उन्होंने मुलाकात। बहुत सारी बातचीत हम आपको सुनवा चुके हैं, अब सुनते हैं वहाँ के प्रिंसिपल की बात। जी, इस कॉलेज का एक बहुत लंबा इतिहास है, बहुत ही एक कहना चाहिए कि एक लेगेसी है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। आइए उसके बारे में जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से।
1: तो मैं अभी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में और हमारे साथ हैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर भरत सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जानना चाहेंगे आपसे, जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज जो है पुरानी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक शांति और सुकून को दिखाते हुए, दर्शाते हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक ऐसा कॉलेज है जो काफी पुराना है, जिसकी विरासत काफी पुरानी है, तो ऐसे में कितना फायदा सेंट्रल दिल्ली के नजदीक होने का उनको मिल पाता है?
2: इसका फायदा बहुत ही बोलेंगे एक तरह से बहुआयामी है। मुझे लगता है 1792 के आसपास ये एक कभी मदरसा के रूप में ये इस शैक्षिक संस्थान का शुरुआत हुआ था। उसके बाद फिर ये कॉलेज में तब्दील हुआ, थोड़े बहुत नाम में भी तब्दील हुआ, थोड़ा सा जगह में भी तब्दीली आई है और अभी जो प्लेस है ये रियली में बिल्कुल ही सेंट्रली लोकेटेड हमारा इंस्टीट्यूशन है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि जितने भी आपके मिनिस्ट्रीज हैं, आपका जितना भी इम्पोर्टेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या दिल्ली सरकार के जो ऑफिसेज हैं, वो बिल्कुल इसके नजदीक में है, विसिनिटी में है। यहाँ पर ये महाविद्यालय एक तरफ आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया है, दूसरी तरफ कमर्शियल एरिया है, तो हर एक मामले में हमारा ये जो महाविद्यालय है बोलेंगे कि दूसरे कॉलेजेस के तुलना में आई कैन से विद प्राउड कि बहुत ही वेल सिचुएटेड, वेल लोकेटेड हमारा कॉलेज है और जिसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को भी, हमारे फैकल्टी मेंबर को और हमारे तमाम जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं उनको मिलता है।
1: जी, लाभ से जुड़ी हुई बात आपसे, तो एक सवाल और कनेक्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज की डेट में, जिसके बारे में बात हो, वो है NEP का कितना फायदा हुआ है और क्या रिस्पॉन्स है इसका बच्चों के बीच में, क्योंकि अब हमारा पहला बैच NEP के तहत अब निकल रहा है, तो ऐसे में इसका कितना फायदा हुआ है और इससे स्टूडेंट्स कितने सेटिस्फाइड है और कैसा रिस्पॉन्स?
2: देखिए, NEP जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, पूरे युवा वर्ग के बीच में, पूरा स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी उसके बीच में, और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट से मेरा मतलब ये है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है जो इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनके नेतृत्व में जिस तरह से, जिस एग्जॉस्टिव तरीके से और जिस बोलेंगे कि जोशो खरोश के साथ इस प्रोग्राम को लागू किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट छोड़ने जा रहा है ये हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर भी, फैकल्टीज के ऊपर भी, क्योंकि इसमें एक बहुत रिमार्केबल डिपार्चर है फ्रॉम द अर्लियर एजुकेशन पॉलिसी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका कंपोनेंट है, रिसर्च कंपोनेंट, जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च से बोलेंगे कि वाकिफ कराया जा रहा है कि रिसर्च क्या होता है। अर्स्टवाइल जो पुराने हमारे जितने भी जो एजुकेशन पॉलिसी थे, जो एजुकेशन सिस्टम था, जो स्ट्रक्चर था सिलेबस का, उसमें कहीं पर भी रिसर्च कंपोनेंट बोल करके ऐसा कुछ था नहीं, और एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे विश्वविद्यालय के लिए और हमारे महाविद्यालय के लिए भी कि बच्चों को रिसर्च का एक्सपोजर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को कंप्लीट करते करते मिल रहा है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। तो इससे क्या होता है कि बच्चे रिसर्च क्या है और उसके कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या उसके कार्डिनल पॉइंट्स हैं, और आगे जा करके जब उनको एक्चुअल में PhD के लिए या रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कहीं पर वो जब शामिल होंगे, उसको जब मैं इंटर करेंगे, तो मेरे ख्याल में उनका जो लेवल ऑफ अवेयरनेस यहाँ पर मिल रहा है, जो एक्सपोजर मिल रहा है, वो एक काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन होगा।
1: कई बार ऐसा होता है कि जिन स्टूडेंट्स पे हमें बड़ा नाज होता है, हमें लगता है ये बच्चे तो लाइफ में बहुत ही अच्छा करेंगे, जब हम फ्यूचर में आगे चलकर देखते हैं तो जिन बच्चों पर हमें बहुत नाज होता है, कई बार वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितना हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, लेकिन कई बार वैसे स्टूडेंट्स जो हमें लगता है कि लाइफ में शायद ही कुछ बढ़िया कर पाएंगे, वो चमत्कारिक सक्सेस पा लेते हैं। वैसे में बीइंग प्रिंसिपल, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत बच्चों को पढ़ाया है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर

0: आपने बहुत जगहों पर देखा होगा, अलग अलग तरह के स्टूडेंट से आपका सामना हुआ होगा, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीजें होती है जो वाकई बच्चों को सक्सेसफुल बनाती हैं?
1: देखिए, एकेडमिक अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो एक बात है और वो बहुत जरूरी भी है कि अपने परीक्षा में जो भी आपका एग्जामिनेशन है उसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। हर एक विद्यार्थी का ऐसा प्रयास होता है, हर एक पेरेंट्स का, हर एक टीचर का ऐसा प्रयास होता है कि हमारे विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबर मार्क्स लाए, नंबर लाए। वो एक इम्पोर्टेंट का अचीवमेंट है, मानना चाहिए उसको और अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन केवल हम मार्क्स के ऊपर फोकस करके एजुकेशन के जो शिक्षा के जो दूसरे आयाम है उसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से सीख लिया डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, अगर तीन इन कार्डिनल पॉइंट्स को जिस स्टूडेंट्स ने अपने लाइफ में इम्बाइब कर लिया, उसको समाहित कर लिया अपने व्यक्तित्व में, वो व्यक्ति, वो बच्चा आपका एजुकेशन के अलावे भी, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाए, बिजनेस में जाए, स्टार्टअप में जाए, या किसी प्रोफेशनल लाइफ में कोई अच्छा वकील बन जाए और समाज और राष्ट्र के प्रति बहुत ही अच्छा व्यक्ति वो साबित होता है, एक अच्छा जो है सिटीजन, अच्छा जो है नागरिक साबित होगा। ये ऐसा महाविद्यालय जहाँ पर लैंग्वेज इतना ज्यादा किसी और महाविद्यालय में नहीं है। ये हमारे कॉलेज का एक यूनिक है। अच्छा। यहाँ पे अरबी है, यहाँ पे फारसी है, यहाँ पे उर्दू पढ़ाया जाता है, 7 लैंग्वेजेज हैं, यहाँ पे बंगाली भी है और हिंदी और अंग्रेजी तो हमारा यहाँ पे जैसे है ही है बाकी महाविद्यालय तरह। तो ये यूनिक फीचर है, एक बोलेंगे अद्वितीय चीज है।
0: तो ये इन लैंग्वेजेज में डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते
1: हैं? नहीं, डिग्री।
0: आप इसी तरह से नई नई चीजों को स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर लेकर आते रहे और इसका फायदा स्टूडेंट्स उठाते रहे।
1: धन्यवाद।
2: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज। अभी सुनिए आपने वहां के प्रिंसिपल से बातचीत। वाकई में जितना सुनते हूं उतना ही हैरान होती जाती हूं, ये स्टूडेंट्स ना केवल अपने एकेडमिक्स के साथ में, अपने इंटरेस्ट के साथ में जुड़े हैं, बल्कि जुड़े हैं उन सभी इश्यूज़ के साथ में जो हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। वैसे कॉलेज के दिनों की जब बात होती है ना, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि जी भर के जी लेना इन दिनों में, जितना हो सके बस लेना दोस्तों के दिलों में, यादें गहरी हो, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब जिंदगी की धूल आपके ऊपर चढ़ जाती है ना कॉलेज से निकलने के बाद, तो खुद के ही वजूद जो है वो पहचाने नहीं जाते हैं। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम जो है ना, इसे बस मुझे यहीं पर समेटना होगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन अगले हफ्ते एक बार फिर से अल्फाजन कैंपस कॉलिंग लेकर आएगा आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और नया कोना, एक और नया कॉलेज और वहां का गलियारा और वहां के स्टूडेंट्स। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर मैं समाप्त करती हूं। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

0: कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों को प्रशिक्षण देकर 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 304 अंकों के गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, हेलो आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा दोस्तों आप हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर और मुख्तलिफ जगहों पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है सिटी लाइट। और आज सिटी लाइट में आपके साथ है आपका दोस्त रोज।

दोस्तों, गर्मी इस वक्त पूरे शवा पर है और गर्मी के दिनों में जब पारा हाई हो जाता है तो इससे बचाव के लिए कुछ जरूरी उपायों को करना बेहद जरूरी जाता है। दोस्तों, कुछ उपाय आपको गर्मी के प्रभावों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं, वो उपाय अब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हो जाए प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। फरवरी 1993 को आकाशवाणी ने युवाओं को रेडियो के जादू से फिर से जोड़ने के लिए एफएम रेनबो चैनल की शुरुआत की। इस चैनल के साथ रेडियो जॉकी शामिल हुए, जिससे प्रस्तुति शैली अनौपचारिक और जीवंत हो गई। इसके 2400 घंटे के प्रसारण में पॉप संगीत, फिल्मी गीत, समाचार, अनौपचारिक बातचीत और फोन इन जैसे आधुनिक प्रारूप शामिल किए गए। अपनी शोर रहित स्पष्ट ध्वनि और आकर्षक कंटेंट के कारण इस चैनल ने युवाओं को खास तौर पर अपनी ओर आकर्षित किया। आज भी ये चैनल भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया, यूरोप और अमेरिका सहित दुनिया भर के श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक व्यूअर, पुनः दोस्तों आपको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, और हम कर रहे थे बात गर्मी के मौसम की। दोस्तों गर्मी के दिनों में हमें बहुत ऐसे उपाय अपनाने चाहिए, बहुत सारे ऐसे उपाय ज़रूर अपनाने चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें और हमारे अंदर पानी की कमी ना हो। मिसाल के तौर पर हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पानी का नियमित सेवन करने से आपके शरीर को ठंडक मिलती है और आप ठंडे रह सकते हैं, स्वस्थ बने रह सकते हैं। गर्मी के मौसम में चलने वाली लू से बचाव करना बेहद ही ज़रूरी है, और कुछ उपायों को अपनाकर आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो करेंगे उसके बारे में बात, लेकिन उससे पहले हो जाए एक प्यारा सा गीत और करेंगे फिर आपसे ढेरों बातें।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों, गर्मी के दिनों में गर्मी के प्रकोप से हम अपने आप को कुछ उपाय अपनाकर अपना बिल्कुल बचाव कर सकते हैं दोस्तों, जैसे शीतल पेय का सेवन करके नींबू पानी पीकर, लस्सी छाछ जैसे पेय पदार्थ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अपने शरीर को हम ठंडक प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। और घर से बाहर निकलने पर कैप, छाता और सूती कपड़ों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये हुई गर्मी से बचाव की बात, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि और भी खबरें आपके लिए हैं। तो सुनते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम सिटी लाइट्स।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम है फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। तो चलिए अब करते हैं बात मौसम के हाल की। दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर में मौसम मुख्य रूप से साफ, तेज धूप वाला और बेहद गर्म रहेगा। तेज धूप के साथ साथ चिलचिलाती गर्मी का एहसास भी होगा। अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहने की संभावना है। और अगर कल के मौसम की बात की जाए दोस्तों, तो कल गर्मी का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ सकता है। धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

और साथियों आप करते हैं बात मानसून की। दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल में दस्तक दे सकता है। इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। IMD के मुताबिक 4 जून के आसपास मानसून केरल, तमिलनाडु, अरब सागर के कुछ और हिस्सों के साथ बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों तो सुनते रहिए प्रोग्राम सिटी लाइट्स प्रवीण शर्मा के साथ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों एक खास खबर, एम्स के डॉक्टरों ने दिल्ली में बैठकर एम्स रायपुर में रोबोटिक तकनीक से मरीज के गॉल ब्लैडर की सर्जरी की है। एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स ने टेली प्रेजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके एम्स रायपुर के डॉक्टर्स की टीम की रोबोटिक सर्जरी में सहायता की। इस दौरान दोनों संस्थानों के सर्जन ने एक दूसरे से मरीज की सर्जरी की प्रक्रिया पर चर्चा भी की। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

दोस्तों, लोक निर्माण विभाग यानी PWD द्वारा LM बंद शास्त्री नगर से कड़कड़ी मोड़ ओरैजी रेड लाइट तक मास्टर प्लान रोड के नीचे नाले की सिल्ट यानी गाद सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते गीता कॉलोनी की तरफ जाने वाले मार्ग का एक कैरिजवे यानी सड़क का एक रास्ता 2 जून से 30 जून तक बंद रहेगा। सफाई कार्य के दौरान उपलब्ध कैरिजवे के माध्यम से यातायात का संचालन किया जाएगा और अस्थाई डायवर्जन की व्यवस्था लागू रहेगी। दोस्तों,

और दोस्तों अब एक विशेष सुविधा की बात कर ली जाए, अब दिव्यांग यात्रियों को रियायती टिकट के लिए रेलवे काउंटरों के चक्कर काटने और बार बार फॉर्म भरने की मुक्ति मिल गई है। रेलवे के अलग से फोटो पहचान पत्र यानी पास बनवाने की भी जरूरत नहीं है। अब वो देश के एकमात्र डिजिटल स्वावलंबन कार्ड यानी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र से ही घर बैठे ऑनलाइन रियायती टिकट बुक कर सकते हैं दोस्तों। और अब फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, तो फिलहाल प्रवीण शर्मा को दीजिए सैटेलाइट से इजाजत, लेकिन नीरजा चतुर्वेदी का आप कीजिए स्वागत जो लेकर आ रही है अगला प्रोग्राम जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। अब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी

0: क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपये से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ नीरजा आपके साथ, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मुझे पहचान लिया है दोस्त। यहाँ पर हमारे एक श्रोता हैं और कहते हैं कि पहले तो सॉरी बोलता हूँ, गलती से कॉल ही लग गया था, लेकिन मुझे ना पता लग गया था, पूरी उम्मीद थी नीरजा कि आज आप ही होंगे। बिल्कुल, यही तो रिश्ता बनाता है एफएम रेनबो आपसे, और इसी रिश्ते से हम जुड़ते हैं शाम को एक ऐसा कार्यक्रम लेकर जो बिल्कुल हमारे लिसनर्स के माध्यम से ही बनता है खास, मैसेज मसाला मिक्स। और आपके मैसेजेस होंगे और वही हमारी ज़िंदगी का मसाला होगा, और विषय लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए कुछ ऐसा सोच कर जो हमारी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ हो। तो विषय के बारे में भी चर्चा करूंगी और कहना चाहूंगी कि जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं ना दोस्त, जुड़े रहना, क्योंकि हमारी संस्कृति जुड़े रहना सिखाती है। अलग होना बहुत आसान है और जुड़े रहना सौभाग्य की बात है। दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी इतनी तेज़ भागती है कि हम खुशियों की वजह गिनना ही भूल जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो उसका मूड एक पल में ही बदल देती है। तो बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमेशा खुश कर देती है? और मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपकी मैसेज का इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा नंबर है 9868107070, और ज़िंदगी रंग दीजिए रेड कलर से, प्यार का रंग है दोस्त। प्रकृति भी यही कह रही है हमसे, वर्ल्ड बाइसिकल डे है, आपको पता ही होगा, चलाई है ना साइकिल, मैंने भी चलाई है, बहुत मज़ा आता है।

बिल्कुल दोस्तों, ज़िंदगी के बहुत सारे रंग हैं और रंग दीजिए अपनी ज़िंदगी को उन रंगों से और सराबोर कर दीजिए अपने साथियों को भी। और लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी की आवाज़ उन्हें बड़ी सुकून देती है, किसी को लगता है मेरे दोस्त की हंसी बहुत प्यारी है, कुछ तो बारिश और संगीत पर ही झूमने लगते हैं मेरे और आपकी तरह, है ना। और किसी की खुशी किसी की मुस्कान बन जाती है। और कौन सी ऐसी छोटी या बड़ी बात है जो आपके चेहरे पर खुशी ले आती है, लिख भेजिए ना।

हमें, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि आप मैसेज करेंगे और हम जुड़ जाएंगे आपसे। और जो श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े हैं, दोस्त जुड़े रहना, और जुड़े रहने के लिए मैसेज करना है 9868107070। यही वो नंबर है जहां नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, गुड इवनिंग, शुभ संध्या नीरजा मैडम जी। मैं अपने घर से दूर रहता हूँ और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है वो ना, जब आप जैसे आरजे लोग आते हैं और मेरा नाम पुकारते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे वहीं लगती है, क्योंकि मैं अपने घर परिवार से बहुत दूर रह रहा हूँ। लेकिन ये बात तो है कि आसान नहीं है, और ये तपस्या न जाने आपको किस अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए हो रही होगी, लेकिन आपको इस बहाने FM रेनबो फैमिली से भी जुड़ने का मौका मिला और हमें आपको जानने का मौका मिला। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और आपने हमें संदेश भी भेजा। हमारे पास बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज आया है सरफराज आलम जी का, और विश्व साइकिल दिवस पर बड़ा ही अच्छा सा कुछ लिख डाला है। कहते हैं, स्वस्थ जीवन का गीत मिलकर गाएं, आओ सब मिलकर चलो साइकिल चलाएं, धूल धुएं से जग को हम बचाएं, हरियाली का दीप नया जलाएं, धरती माँ की शान और बढ़ाएं, आओ सब मिलकर चलो साइकिल चलाएं, तन को बल दो मन में उमंग लाए, हर पथिक को नई दिशा दिखाएं, रोग दुख से दूर कदम बढ़ाएं, आओ सब मिलकर चलो साइकिल चलाएं, तेल बचेगा देश भी मुस्कुराएगा, शुद्ध हवा का उपहार मिल जाएगा, आने वाली पीढ़ी को समझाएं, आओ सब मिलकर चलो साइकिल चलाएं, गांव नगर में ये संदेश जाए, स्वस्थ भारत का स्वप्न सच हो जाए, प्रेम और पर्यावरण को अपनाएं, आओ सब मिलकर साइकिल चलाएं। क्या बात है दोस्त, और सच में जब दो दिन बाद ही हम पर्यावरण दिवस भी मनाने वाले हैं और बड़ी बड़ी बातें आप और मैं कर लेते हैं, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है। मुझे लगता है कि अब हमें गलती करने का वक्त नहीं बचा है। और अक्सर लोग कहते हैं, वर्ड्स आर नो, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, तो अब एक्शन लेने का समय आ गया है। फिलहाल अनिल शर्मा जी का मैसेज आया है, लिखा है, शुभ संध्या आशीर्वाद बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम। लिखा है, जब नीला आसमान शाम पार्क में बैठकर देखता हूँ ना, तब पक्षियों को घोंसलों में लौटते आते देखना अच्छा लगता है, फिर उनकी चहचहाहट कानों को ना खुश कर देती है। कितनी खूबसूरत बात आपने कही है। बिल्कुल आपने जो दृश्य बयां किया है ना, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने चल रहा है। आगे लिखते हैं कि साइकिल ना ईंधन खाती, फिर भी सवारी ढोती रहती, पैरों से पैडल घुमाओ आगे बढ़ते हुए दौड़ती हुई दिखती, ये ना थकती ना रूठती, चालक का पूरा ख्याल रखती, भरोसेमंद साइकिल गरीबों का वाहन मोहल्ले में दिखती। इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रकृति की बात करते हैं तो सच में एक रचना है प्रोफेसर हरीश अरोड़ा की, वो लिखते हैं कि मैंने कभी कविता लिखते हुए शब्दों को तराशा नहीं, क्योंकि शब्दों को तराशना सच को खोना है, और सच को नहीं खोया है, और हमें कहीं ना कहीं आँख खोलने के लिए कह रहे हैं। और कहते हैं अपनी कविता पानी के खोज की आवाज़ में, कि क्या तुमने कभी आवाज़ सुनी है पानी के कलकल की, या बारिश के बूंदों की छप छप की? सुनी ही होगी, क्योंकि ये पानी की आवाज़ ही तो है। लेकिन क्या तुमने कभी आवाज़ सुनी है पानी के खोने की? वो आवाज़ पानी से नहीं आती, पर आवाज़ पानी की ही होती है, उसके करहाने की, धीरे धीरे से मटकर मरने की, सूखे तालाब की पपड़ियों के भीतर उसके चटकने की, या फिर गर्म हवा में खाली कुओं की थाप, ये सब आवाज़ें पानी के खोने की ही हैं। उसे ढूंढो इससे पहले कि हो जाए उसकी मौत, प्यास से खोजो पानी की आवाज़। तो प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी की ये रचना बहुत ही शानदार है, जानदार है, और मुझे लगता है इससे पहले कि जीवन में हम इस मुकाम पर आ जाएं कि लगे कि जीवन में चीनी कम हो रही है, उससे पहले हमें एक्शन ले लेना चाहिए। तो सर, ये गाना माफी के नाम करते हैं। अनिल जी सुनिएगा।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: आकाशवाणी

आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं नीरजा आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और जहां बात हम कर रहे हैं उस बात की कि कहते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए लेकिन कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो हमेशा दिल में रहती हैं। एक कप चाय, किसी अपने का साथ और बच्चों की मुस्कान या कोई प्यारी सी याद, आपकी खुशी का राज क्या है बताइए ना। और आपकी मुस्कान हमारे साथ बांटिए। और बांटने के लिए करना होगा एक मैसेज 9868107070 पर, जिस तरह हमें रजनी शर्मा जी ने बागपत से किया है और लिखा है कि सबसे ज़्यादा खुशी ना मुझे तब मिलती है जब स्कूल की फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। अब मिलना तो नहीं हो पाता लेकिन हाँ, इसी बहाने हम पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। कितनी खूबसूरत बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और टेक्नोलॉजी जब आ गई है तो फिर हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए, है ना। अगला मैसेज हमारे पास आया है देहरादून से आलोक पवार और मिनी का, और कहते हैं जब मैं कहीं घूमने का प्लान बनाता हूँ या फिर मेरा मनपसंद खाना मिल जाता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और हमारा हौसला भी बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गाज़ियाबाद पूजा कॉलोनी से कपिल यादव कहते हैं कि मैं अपने भांजे गुलशन यादव के साथ हूँ और प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि हमेशा कहीं ना कहीं हम भक्ति से जुड़ जाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और फिर ज़िंदगी से भी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब रेडियो पर मेरा नाम आता है ना, और बाकी तो जब मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है तब भी मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है इस मामले में हम सब एक जैसे हैं, है ना कपिल जी। गुलफाम हमारे साथ शाहदरा से जुड़े हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा चल भी रहा है, और यही अच्छी बात है कि सब अच्छा चले, तो उसके लिए आपको और मुझे अब कदम उठाने होंगे, है ना। लोकेश एन सिंह मुरैना मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं सुबह की सैर के नाम पे बच्चे साइकिल चलाते हुए दिखें तो बहुत सुकून मिलता है, साइकिल जीवन में भी चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, चलने का नाम ही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अलग अलग मौक़ों पर इस टाइम होंगे, और कोई रेड लाइट पर होगा, कोई ड्राइव कर रहा होगा और कोई स्विमिंग पूल में होगा, क्योंकि हमें वहाँ भी सुना जाता है। दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से कहते हैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ और नेपाल से हूँ, मुझे FM रेनबो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मेरा जो खालीपन है वो भर जाता है, और प्रकृति रंगों की बात करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल, अगर सुकून मिल रहा है तो सुकून दे भी दीजिए ना।

जिंदगी में बहुत सारे नशे हैं जिन्हें करके ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। प्रकृति के पास जाइए, उनका पालन कीजिए और संगीत सुनिए, कुछ अच्छी रचनाएं पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ भेजिए, है ना। कितनी सारी चीज़ें हैं और मैं तो कहूँगी आज ज़रा दिल की अलमारी खोलिए ना और उसमें रखी सबसे प्यारी खुशी निकाल लीजिए। वो कौन सा पल है, कौन सी आदत है या कौन सा वो इंसान है जो आपको हर बार खुश कर देता है? आपका जवाब किसी और के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकता है, जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो साझा कीजिए ना 9868107070 पर। आपकी नीरजा आप ही का इंतज़ार कर रही है। और फिलहाल मैसेज आया है हमारे पास हमारे दोस्त राकेश वोरा प्रधान एंड राकेश वोरा का, जो प्रधान एनक्लेव बुराड़ी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। कहते हैं, एक बात मुझे ना हमेशा खुश कर देती है, मेरे बचपन की वो याद है जब पापा के साथ जाया करते थे ना, तो उनकी यादें जब भी मुझे याद आती हैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। और अब पापा तो नहीं है लेकिन उनकी वो मीठी सी याद मेरे जहन में अभी भी है। हाँ, सच में वो रिश्ता ही ऐसा है कि उसको उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। रायचूर विजय शिवमोगा, विजय हमारे साथ जुड़े हैं और विजय जुड़े रहिएगा और मैसेज ज़रूर कीजिए और बताइए ना वो कौन सी बात है जो आपको खुश कर देती है। हमारे पास अगला मैसेज आया है सोनू का बिजनौर से। कहते हैं, हमें तो खुशी तब होती है जब हर आरजे अच्छे से मैसेज पढ़ते हैं और सभी की अलग अलग भावनाएं होती हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है और सबकी दिल से जो धन्यवाद निकलता है ना, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।

और रेडियो को दिल से धन्यवाद, और हमेशा यूं ही हमारी ज़िंदगी में इसी तरह से रेडियो के माध्यम से प्यार बरसाते रहें, और हम आपसे यही आशा करते हैं। थैंक यू सोनू, बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए यही सोच कर आते हैं कि आपकी शाम में कुछ पल ऐसे घोल दिए जाएं कि मज़ा आ जाए। गुन्नौर से आदिल, कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, जब भी मेरी औलाद घर में हंसती मुस्कुराती है मेरे दिल की हर खली खिल जाती है। क्या बात है सच में। आयान खान, आफिया खान कहते हैं, आफिया खान शाह कहते हैं, ड्रेस जब हम छोटे थे ना तो छोटी छोटी ड्रेस पहन के बाहर चले जाते थे और झूठ बोल देते थे कि हमें कहीं और जाना है और मूवी का मुझे गाना सुनना है, मैं यही बार बार कहना है मेरा। ओके, तो जब आप छोटे थे तब ऐसा करते थे और अभी आप क्या करते हो वो तो आप बताना भूल गए, लेकिन चलो आपको बचपन की एक मीठी सी याद आ गई। संजीव हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरी खुशी का राज जो है मेरी बेटी है जीविका, वो जब स्माइल करती है ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है। सच में ऐसा लगता होगा कि ज़िंदगी में ना बिल्कुल बहार सी आ गई है ना। बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात। मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम हैं, अब्दुल राशिद जवाहर हैं कैंप से, कीर्ति नगर से कहते हैं, सबसे पहले पूरे रेनबो परिवार को कहता हूँ कि आप लोग नेचर से जुड़े और कुछ वक्त अपने और अपनों के लिए निकालें। अच्छा, हमारे माध्यम से सबको कहना चाहते हैं थैंक यू। जब मैं जॉब से घर आता हूँ ना तो और सभी को खुश देखता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है, और लेकिन जब अपने भैया से मिलने फरीदाबाद जाता हूँ और ज़्यादा खुशी मिलती है तब, क्योंकि पेरेंट्स के बाद मेरे लिए वही सब कुछ हैं। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, और सच में हमारे अपनों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे दादी बाबा ने कहीं ना कहीं हमारे लिए पेड़ लगाए होंगे तो आज हम अच्छी छांव और हवा ले रहे हैं, लेकिन हमने क्या लगाया है ये हमें सोचना है। और एक्शन का टाइम है दोस्त, और एक्शन मैं तो ले रही हूँ, आप क्या कहते हैं? बस इतनी सी बात है, कह दूँ क्या? आज कह ही तो रही हूँ, सुन रहे हैं ना आप? दिल से सोचना, दिल से सुनना दोस्त, आप ही के लिए है।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक
2: खूबसूरत परिधान दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ नीरजा, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और मैं बात कर रही थी आपकी खुशी की, क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता लेकिन महसूस ज़रूर किया जा सकता है।

बताइए ना, आपकी ज़िंदगी में खुशी का वो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वो क्या है जो आपको थका हुआ होने पर भी ऊर्जा से भर देता है? हमारे पास मैसेज आ गया है राजेश भल्ला, एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से। कहते हैं, हमेशा ना पौधों में पानी देता हूँ और जब फूल खिल जाता है तब मैं क्या बताऊँ कितनी खुशी होती है। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, मेरे घर में भी ऐसा ही होता है कि जब पापा पेड़ को इतना प्यार से रखते हैं और जब उसमें फूल आता है तो हम सबको दिखाते हैं और तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमें शमसुल कमर राही भेज रहे हैं। कहते हैं, साइकिल दिवस है और साइकिल जिसे चलाने से पूरा जिस्म की वर्जिश हो जाती है और मुझे तो बहुत भाती है। अब मोटरसाइकिल का ज़माना है लेकिन मुझे याद है कि मैंने बहुत साल इसी के साथ बिताए हैं और सच में पता है बचपन की तो बहुत सारी यादें होंगी हम सब की जो हमने साइकिल चलाने का अनुभव किया है। कितनी चोटें खाई हैं, है ना, और कितने मज़े किए हैं। और एक ज़माना था जब वो 50 पैसे में भी और किराए की साइकिल मिलती थी और उसमें भी जी लेते थे, है ना। अशोक विहार दिल्ली से भुवनेश हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा मुझे चाहता हूँ कि ये जो अलग अलग तरह के टॉपिक है ना, इन पर मुझे हमेशा ये हैप्पी कर देती हैं। और सबसे फर्स्ट जब मुझे इवनिंग में रेनबो के साथ साथ मिल जाए तो ऐसा लगता है कि मैं घर पर अपने अपने साथ आप को महसूस करता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और कहते हैं कि यही चीज़ मुझे हमेशा फ्रेश और हैप्पी कर देती है। थैंक यू सो मच। और हम भी इस तरह से हौसले से भर जाते हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी का मैसेज आया है। कहते हैं, हमें खुशी जब मिलती है जब घर पर जाते हैं और 3 साल की भतीजी तुरंत मेरे पास आ जाती है और पापा ये पापा वो सारी फरमाइशें, ओहो घर के दूसरे सदस्यों की सारी शिकायतें सारी गृहस्थी की टेंशन उसका चेहरा देखते ही हम भूल जाते हैं। सच में आप तो कह रहे हैं देखकर भूल जाते हैं, मुझे लगता है कि पढ़ते पढ़ते मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ और सुनते सुनते सबको ऐसा लगा होगा। गुड इवनिंग, आई एम मजहर सिकवार तुगलकाबाद विलेज से ही हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, जो चीज़ है हैप्पी होने के लिए एक घर जाके बच्चों से मिलकर और मैसेज मसाला मिक्स सुनकर, क्या बात है दोस्त। और बिल्कुल मुझे लगता है कि मुझे जो आपको संदेश देना है वो भी मैं सुनाती चलूं। जोया मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं और कहती हैं, गोइंग इनटू नेचर मेक्स मी हैप्पी, लिसनिंग टू चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, कामनेस ऑफ बीचेस एंड साउंड ऑफ सी मेक्स मी हैप्पी। थैंक यू जोया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखो ना कितना प्यारा ट्रैक है।

नीरजा जी नमस्कार, और मुझे खुशी तब मिलती है जब किसी की समस्या का समाधान अपने प्रयास से कर देता हूँ। क्या बात है, रवि जोशी मेरठ से, क्या बात है। आप तो पूजा कर रहे हैं।

और शिशिर का गुड़गांव से मेरे पास मैसेज आ गया है, कहते हैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, ओहो अच्छा लग रहा है, कभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं कि मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से खुशी मिलती है, कोई चीज़ को सबसे ज़्यादा मैं

डिफाइन करना, ओहो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। खुशी मुझे बहुत सी चीज़ों से मिलती है, लेकिन मैंने कभी अपने आप से ये पूछा ही नहीं कि किससे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि आज आपने सवाल पूछ लिया तो ज़रूर सोचूंगा, और अगला कार्यक्रम जब करेंगी ना तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्त, अगले बुधवार को ज़रूर बताना मुझे इसी चैनल पर इसी समय।

आपके जब संदेशे आ जाते हैं ना, समझ कुछ नहीं आता है, बस लगता है कि इनके मैसेजेस पढ़ दिए जाएं। गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील से रामधारी आवना कहते हैं कि शुभ संध्या, अपने घर से दूर ड्यूटी पर हूँ। थकान और निराशा के पश्चात जब पारिवारिक लोगों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करता हूँ तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी खुशी को व्यक्त करना चाहता हूँ। ड्यूटी की दूरियाँ मिट जाती हैं जब स्क्रीन पर मेरी बेटी मुस्कुराती है, उसकी तोतली आवाज़ में पापा सुनते ही हर थकान पल भर में खो जाती है। वर्दी मेरा फर्ज है पर बेटी मेरी दुनिया, मिलो दूर होकर भी मैं उसके दिल के सबसे करीब हूँ। स्क्रीन छोटी है पर पापा की पुकार में पूरी जन्नत बसती है। सलाम है सर आपको।

सुन रहे हैं ना आप। और अगला मैसेज आ गया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। कहा है, जिंदगी में कभी भी निराश ना हो क्योंकि हर पल नया अवसर के समान आता है। खुश रहना सीख लो, जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। हाँ, सच कह रहे हैं आप।

उनेहल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ हमारे साथ जुड़े हैं। कहते हैं मुझे तो अपने रेडियो सेट के पास जाकर बहुत खुशी होती है। पहली बार 1995 में आकाशवाणी इंदौर से हमारी फरमाइश पूरे होने पर जो खुशी हुई थी ना, आज भी याद है। और 31 सालों का ये सफ़र जारी है।

0: हमारी स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ नीरजा आपके साथ, और बिल्कुल, और ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जो मैंने आपके लिए क्यों किया है, वो भी साथ में ले लेती हूँ और बता देती हूँ कि ज्योति अहलावत मेरे पास आ गई हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक का कार्यक्रम होगा बस कुछ ही पल में, 7:05 पर, 8 बजे कार्यक्रम होगा म्यूज़िक मस्ती। एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हो जाऊंगी, और 9 बजे आपकी याद आती रही कार्यक्रम में रेखा चौधरी रहेंगी हमारे साथ, और बहुत सारे श्रोता हैं जो जुड़ गए हैं।

और हमारे साथ बने हुए हैं अरुण कुमार भटिंडा से, और कहते हैं कि जब फैमिली के साथ घूमने जाता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दानिश खतौली से हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। धन्यवाद दोस्त।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर

से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: person hasn't mentioned the name, but says, wow to Samantha for sharing that piece of information. Okay, this is Colonel Ankur Mehta from Chandigarh, and he has a beautiful message for us, which says, good evening to the entire team of FM Rainbow Special Songs in today's broadcast. Thank you so much. Yes, and he was posted there as a part of his, you know, the military career, and says that Sikkim might have a river. It has many tales, interesting tales and cultural heritage and flora. Thank you so much, Colonel Mehta, all the way from Chandigarh. Thank you so much. And on that note, a beautiful track I have lined up for you. And this is Luke Bryan with One Margarita. Thereafter, we take a short little break. Stay with me.
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
4: www.delhitalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स. इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम. इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर.
6: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
8: आज की रात मजा,
7: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती.
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है.
10: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल. आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर. बिंदास बोल
11: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है. बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी. वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग. ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते. आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं नीरजा आपके साथ प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में।

आकाशवाणी रेनबो पर नीजा है आपके साथ लेकर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, जहां म्यूजिक मेरे पास है और मस्ती दोस्त वो आपके अंदर है, तो जुड़ जाते हैं ना साथ में। हर धुन के साथ यही जज्बा है कि आपकी शाम बस झूम जाए। बारिश पसंद है ना आपको, तो गानों की बारिश लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आलाप सुनकर ही आप समझ गए होंगे अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत आपके लिए। सालसा कर लीजिए ना उनके साथ।

जिंदगी भी तो ऐसे ही बदलती रहती है, लेकिन दोस्त अपना जज्बा नहीं बदलना। म्यूजिक मस्ती में है आप नीरजा के साथ, भूले तो नहीं है ना, भूले तो नहीं हो ना, तो बस हो जाइए तैयार अपनी जिप्सी लेकर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ नीजा, आपके साथ लेकर म्यूज़िक मस्ती। और दोस्तों, ये शाम जो है ख़ास है क्योंकि आप अपने अपनों के साथ हैं, नहीं तो आप रेनबो के साथ हैं, या फिर आप रास्ते में हैं, या फिर किसी ऐसे सफ़र पे हैं जहाँ जाने की बड़ी इच्छा है आपकी। तो बिल्कुल आपकी शाम इसी तरह से गूंजती रहे, झूमती रहे, और आपके साथ जो आपके साथी हैं ना, वो हमेशा यूँ ही रहें, यही कामना करती हूँ। और सौदा बिल्कुल खरा खरा होता है दोस्त, प्यार का भी और रेनबो का भी। तो बिल्कुल हम वही मानते हैं, और खरा खरा ले आए आपके लिए गाना। गुड न्यूज बस यही है आज की।
1: स्लो

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा के साथ हैं आप म्यूजिक मस्ती में और भर भर के लाई हूँ रंग आज ढेर सारे सिर्फ आपके लिए। सिर्फ आपके लिए।

बिल्कुल, आपके साथ आते आते मैं ये सोचने लगी कि हम कितने गाने एक दिन में सुनते होंगे ना। और शोध ये कहते हैं कि हम में से अधिकांश लोग रोज़ाना करीब 40 से 50 गाने तो सुन ही लेते हैं, यानी संगीत हमारे दिन का उतना ही हिस्सा है जितनी चाय, बातचीत या मुस्कान। तो बताइए कौन कौन से गाने आपको पसंद आ जा रहे हैं ना। टैटू करवा लिया है मैंने आपके नाम का।

और दिल की इस पुकार के बाद मैं तो यही कहूंगी कि मस्ती भाई गानों में नहीं होती, मस्ती तो उन एहसासों में होती है जिन्हें ये गाने हमें हमारे अंदर जगा देते हैं। कोई धुन हमें मुस्कुरा देती है, कोई गीत यादों में ले जाता है और कोई ताल बिना वजह ही हमें थिरका देती है। इसीलिए तो आज की पार्टी बस आप ही के लिए दोस्त, मिक्का सिंह की आवाज में।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती और मैं हूं नीरजा आपके साथ। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्त, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। 9 बजे कार्यक्रम आएगा आपकी याद आती रही और रेखा चौधरी हमारे बीच आ जाएंगी और बिल्कुल आने ही वाली हैं। रात 10 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 10:05 पर कार्यक्रम होगा वेस्टर्न म्यूजिक और एक बार फिर से ज्योति अहलावत हमारे साथ होंगी और 11 बजे होंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर रंगे महफिल लेकर रेखा चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ आ जाएंगी। तो बिल्कुल उनका स्वागत करते हैं और आपसे यही कहना चाहती हूँ दोस्त कि आपकी शाम गुनगुनाए अपने अपनों के साथ मुस्कुराते हुए झूमते हुए और आप हमेशा खुश रहें यही कामना करते हैं और दिल धड़क रहा है बड़ी ज़ोरों से सिर्फ आपके लिए।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपको याद दिला दूं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आपकी याद आती रही। और इस मस्त मस्त सफर में मैं हूँ आपके साथ, वही आपकी पुरानी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी। और अब खट्टी मीठी यादों का सफर शुरू तो हो ही चुका है, तो देर क्यों की जाए। तो चलिए सुनते हैं यादों से जुड़ा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

जी हाँ, जब आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आएंगे और आपके मैसेजेस के ज़रिए पता चल रहा है कि आप कितनी शिद्दत से मेरा इंतज़ार करते हैं, तो फिर आप सब याद कैसे कैसे नहीं आएंगे। दोस्तों, आप सभी के मैसेजेस आने लगे हैं, यहाँ तक कि मेरे इस हॉट सीट पे बैठने से पहले ही शुरू हो चुके हैं आप सभी के मैसेजेस। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपके मैसेजेस भी लिए जाएंगे। दोस्तों, सभी की यादों के सफ़र में कुछ पड़ाव, स्टेशंस या फिर कह सकते हैं कि कुछ लम्हे ऐसे भी बीते होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होता है, जिनके बारे में न तो आपने किसी से कहा होता है न ही कोई जिक्र किया होता है, क्योंकि उन लम्हों को दिल की किताब के एक खास पन्ने पर सुनहरी अक्षरों से लिख छोड़ा है आपने। और वो लम्हे, यादें कौन सी हैं, कैसी हैं या कौन सी हो सकती हैं, ये बताने वाली हूँ मैं, लेकिन किंतु परंतु एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी हाँ दोस्तों, कितना अच्छा लगे जब हमारे दिल की बात कोई जान ले, पहचान ले बिना कुछ कहे, और हम उसके दिल की बात को जान ले, तो कितना कितना अच्छा लगता है ना? खैर, आज हम दिल की किताब के पन्नों को धीरे धीरे पलटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा हम हड़बड़ी में जल्दी जल्दी पलटते हैं ना, तो लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी किसी ने काम दिया है और हम किसी की जॉब पर हैं, तो आज वो काम नहीं करेंगे। आज हम करेंगे दिल की किताब के पन्नों को पलटने का, पढ़ने का आराम से। जी हाँ, कोई जल्दी नहीं। और आपको कौन सा ऑफिस जाना है या मुझे कहीं जाना है? जी हाँ, अभी हमारे पास बहुत वक्त है। फिलहाल आपके सभी मैसेजेस ले लेती हूँ। जो सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया वो लिखते हैं, हाय रेखा चौधरी जी, गुड इवनिंग, सुस्वागतम। और उन्होंने आगे लिखा है, आज तो दोनों शो 9 PM और 11 PM में चार चांद लग जाएंगे, रात बन गई, थैंक यू सो मच।

जयंत कुमार पटना से लिखते हैं एक और मैसेज। जी हाँ, सौरभ अनेजा का, वो लिखते हैं वेलकम बैक गाजियाबाद से। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र, गुड इवनिंग रेखा मैडम जी, वेलकम बैक टू शो मैडम जी, आपकी याद आती रही, बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुति आरजे मैडम जी, और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। रेखा मैडम जी, मैंने आपका पिछला कार्यक्रम 20 मई को सुना था, तो थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज, वो लिखते हैं हेलो रेखा जी, हम भी आपका स्वागत करते हैं और हम आपके फैन हैं। तो भाई फैन है तो अपना नाम क्यों नहीं लिखा, आपका नाम लिखकर भेजना ज़रूरी है, और जहाँ से भेज रहे हैं उस जगह का नाम लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। एक और मैसेज ले लेते हैं, आरजे आरसी से, साहिबा जी आदाब, गीत तुम याद ना आया करो, प्रोग्राम आपकी याद आती रही, सुन रहे हैं किंतु परंतु किसी की याद ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान फारिया लिखते हैं। अच्छा, उन्होंने अपना नाम लिख दिया भी, जिन्होंने भेजा था कि आपका स्वागत करते हैं और हम आपके फ़ैन हैं, वो हैं सुरेश वैष्णव। तो थैंक यू सो मच आपके सभी मैसेजेस के लिए। अभी फ़िलहाल हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जब भी आप अपना मैसेज लिखें तो प्लीज़ अधूरा मत लिखें, आप उसमें अपना नाम मेंशन करना मत भूलिए। हाँ, तो जिक्र चल रहा था उन यादों का, उन लम्हों का जो लगभग हर इंसान की ज़िंदगी में आते ही हैं, और वो पल जब आप नींद से बोझल आंखें लिए सोने वाले होते हैं, सोने की स्थिति में होते हैं, लेकिन रात के पहर में भी, चाहे वो कोई सा भी पहर हो, सोने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं, भले ही आपको नींद कितनी ही गहरी आ रही हो और आप कितनी भी नींद के आगोश की तरफ खींचते चले जाएं, पर जागना चाहते हैं, होशो हवास में भी बेहोशी का आलम चाहते हैं, खामोश रहकर भी दूसरों को अपनी बात कहना चाहते हैं, है ना? जी हाँ, अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो फिर समझने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, जानते हो कि सबकी ना सही, पर हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसा दौर जरूर आया होगा, और आज फिर एंजॉय करने वाले हैं हम उन लम्हों को, उन पलों को, इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ। तो चलिए ये गीत सुन लिया जाए, क्या कहते हैं आप?

या दोस्तों, कुछ चीज़ें अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती हैं, या फिर अगर आपके हाथ में भी हैं तो आप उनको छुपाने की, दबाने की कितनी भी कोशिश करो लेकिन वो किसी से भी छिपती नहीं है। मेरे पास एक और मैसेज आया है। जी हाँ, वो हमें बहुत दूर से सुन रही है, यानी कि जोया का मैसेज आया है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से। वो हमारा प्रोग्राम सुन रही है और तारीफ भी कर रही हैं। एक और मैसेज, सुनो कब तलक करेंगे हम यूं ही शायरी में दिल की बात। दिल चाहता है अब होनी चाहिए एक मुलाकात। ये लिखा है चेतन कुमार ने, मणिपुर बाज़ार गया बिहार से। तो बहुत अच्छा लिखा है, अगर आपने खुद से ये लाइनें लिखी हैं। हाय आरसी मैम, आप कैसी हो? नाइस सॉन्ग सिलेक्शन शालू इन शादीपुर। तो थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ दोस्त। संजय कुमार लिखते हैं, वो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और अभिषेक रजा भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपकी बातें और प्लेलिस्ट भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच संजय जी। एक और मैसेज ले लेते हैं। हेलो मैम, इन्होंने अपना नाम लिखा है क्रिश गुप्ता। सॉरी, मैं मुझे हंसी इसलिए आई कि आपने नेम लिखा फिर आगे लिखा क्रिश गुप्ता। और जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं ये। आपका शो अच्छा लग रहा है, आपके गाने की चॉइस बहुत ही अच्छी है मैम। तो थैंक यू सो मच। एक और मैसेज ले ही लेते हैं चलिए, लेकिन ये मैसेज थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया है, तो इसलिए हम इस मैसेज को बाद में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको बता देती हूँ कि ये मैसेज आया है प्रेमचंद प्रेमी जैत्रा धामपुर बिजनौर से। तो प्रेमचंद प्रेमी जी, आप जानते ही हैं कि हमारे पास टाइम जो होता है ना, वो लिमिटेड होता है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी जो हालत है वो समझ सकते हैं और बुरा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। उन्होंने बेटी के ऊपर लिखा है, बहुत ही प्यारा लिखा है, अच्छा लिखा है। तो थैंक यू सो मच। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: वेलकम बैक दोस्तों, और आप सभी के मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। जी हाँ, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आपको ये बता दूं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मैं 11 बजे भी आपके साथ रहने वाली हूँ। बस प्रोग्राम बदलेगा, आप और हम तो वही रहेंगे, क्योंकि कुछ हमारे लिसनर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या आप 11 बजे के प्रोग्राम में भी रहने वाली हैं आज भी। तो बिल्कुल दोस्त, हम कहाँ जाएंगे आप सबको छोड़ के। राहों में कांटे हो या फूल, दिल वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिएगा, राहों में कांटे हो या फूल, दिल वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत

इश्क है ही ऐसी चीज़ जिसे समझना आसान है लेकिन समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और इस राह के मुसाफिर कांटों पर भी मुस्कुरा कर चलते हैं दोस्त, और ये मुस्कुराहट ताउम्र के लिए दिल की किताब के पन्नों से जुड़कर खूबसूरत यादों का हिस्सा बन जाते हैं। और हम जब भी फ्री होते हैं तो फिर इन यादों के पन्नों को जब पलटते हैं ना, और ये वाली याद का पन्ना हमारी आंखों के सामने आ जाता है, तो आप कितनी भी सर्दी में हो, गर्मी में हो, बरसात में हो, मुस्कुराहट आपके होठों पर ना आए ऐसा कैसे कैसे हो सकता है।

लौट आइए लौट आइए। अगर आप भी ऐसी ही किसी यादों में गुम हो चुके हैं तो प्लीज़ लौट आइए, क्योंकि अभी सफ़र और भी है यादों का। एक मेरे पास मैसेज आया है, जी हाँ, ये लिखते हैं अनुराग आदर्श नगर से। इस प्रोग्राम का, जी हाँ, आपके इस प्रोग्राम का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच। अब आदर्श नगर ये कौन सा है मुझे ये समझ में अनुराग बिल्कुल नहीं आया, तो ये समझाने के लिए आपको आगे भी लिखना चाहिए। आदर्श नगर कई जगह पर हैं। एक और मैसेज मेरे पास, अरे वाह, ये मैसेज सुनकर तो भाई दिल ना बहुत बहुत बहुत खुश हो गया। वो लिखते हैं, आज हम आपको फरीदाबाद हरियाणा से पूरी फैमिली एक शादी में शिरकत करने आए हैं, किंतु परंतु FM रेनबो और RJRC सिस्टर जी को सुनना नहीं भूल रहे। जी हाँ, कस्बा गुन्नौर UP से फारूक अली लिखते हैं, तो थैंक यू सो मच। भाई शादी भी इंजॉय करिए, जहाँ पर आप गए हैं वो प्रोग्राम भी इंजॉय करिए, और उसके साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। एक और मैसेज सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांतिनगर सोनीपत से लिखती हैं, आदरणीय RC रेखा चौधरी जी, सादर प्रणाम। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मधुर प्रस्तुति, मोहक बातें, मन भावन गीत, मस्त कार्यक्रम, दिल से बड़ी वाली बधाई। आपकी संध्या और जीवन बहुत बहुत शुभ और सुखमय हो, तो थैंक यू सो मच। कोटि कोटि धन्यवाद भी लिखते हैं, तो थैंक यू सो मच इतनी सारी विशेष के लिए और इतना प्यारा सा मैसेज देने के लिए। दोस्तों, यूं तो हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लगा रहता है, चलता रहता है। अब बहुत से लोग होते हैं कि इतने उदास और मतलब उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, जबकि वो छोटी सी भी बात को बड़े पैमाने पर ले लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बात कितनी भी बड़ी हो उसको बड़े पैमाने पे क्या, छोटी सी भी शिकन उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती है, और उसका कारण क्या हो सकता है। जी हाँ, कारण सिर्फ इतना ही होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि जरा सा करवट लिया नहीं जिंदगी में, और बस हो जाती है उनकी ज़िंदगी में उथल पथल, और वो पता नहीं बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, वो मान लेते हैं कि ज़िंदगी है, हर पड़ाव को ज़िंदगी में आना भी चाहिए, वरना हमें खुशी और गम में पता कैसे चलेगा। अगर खुशियाँ खुशियाँ चलती रहें हमारी ज़िंदगी में, तो फिर गम का कैसे पता चलेगा, और गम ही गम मिलते रहें तो खुशियों का एहसास कैसे होगा। तो ज़िंदगी है, और हर पन्ना दिल की किताब में आप रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए, और जब भी फुर्सत मिलेगी दिल की किताब को खोलिए, यादों को फिर से रीस्टार्ट कीजिए, और जो यादें आपको पसंद नहीं है बस उन पन्नों को हटा दीजिए, और फिर से वही मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आइए, और पढ़िए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पन्नों को जिन्हें आप पढ़कर मुस्कुराना चाहते हैं, फिर से वही मस्ती में आना चाहते हैं, और उन्हीं यादों में खोकर जी हाँ महसूस करना चाहते हैं कि काश काश वो पल फिर से आ जाए, है ना।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

वेलकम बैक दोस्तों। यूं तो बातें बहुत हैं, बातें बहुत हैं, यादें भी बहुत हैं, कहना और सुनना भी बहुत बहुत बहुत है पर कमबख्त ये समय है ना, जो कभी किसी के लिए रुकता ही नहीं है, वो बार बार बिन बोले ही बतला रहा है कि इस प्रोग्राम का समय आज बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। अब ठीक 11:05 पर आपसे, जी हाँ, मुलाकात होगी। दस्तक देगी जो गजलें दिल पर, जी हाँ, उन्हीं के साथ। फिलहाल अभी हमारे पास कुछ वक्त है इन यादों के सफर में चलने का साथ साथ, तो फिलहाल आपका जो मैसेज आया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। भाई आप तो बुरा मान गए, बुरा मानने की कोई बात नहीं है और आपके नाम में कोई भी खराबी नहीं है। कृष गुप्ता ने लिखा है कि सॉरी मैम, मेरा नाम ऐसा ही है, लोग मुझे गुन्नू बुलाते हैं, मेरे घर वाले भी गुन्नू कहकर बुलाते हैं। तो कृष, मुझे इस बात पर हंसी नहीं आई थी और इस बात पे मैं मुस्कुराई नहीं थी कि आपका नाम ऐसा है। आपका नाम बहुत ही प्यारा है, लेकिन वो जो आपने नेम लिख के उसके आगे हाइफन लगाया, ऐसे बहुत कम लोग मेंशन करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, इससे ना पढ़ने में कोई मिस्टेक होती नहीं है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, माई नेम इज़ सृष्टि कुमारी पटना से, आपके ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और वो लिखती हैं कि किचन में काम करते करते इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं और गाने भी उनके दिल को सुकून दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, हेलो रुखा रेखा मैम अब देखिए मेरी ना जुबान भी लड़खड़ाने लगी है, टाइम जो टिक टिक करती घड़ी मुझे दिखा रही है ना अपने नाम

में ही मैं गड़बड़ कर जा रही हूँ। हेलो रेखा मैम जी, माई नेम इज़ रितु बत्रा, दिल्ली के गोपाल पार्क में रहती हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बातें दिल को सुकून दे रही हैं और गाने दिल पर दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसे ही गाने सुनवाती रहिए। तो बिल्कुल दोस्त, मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी गाना प्ले करूँ वो मेरे दोस्तों को ज़रूर ज़रूर ज़रूर पसंद आए। और आगे फिर से मेरे पास फारूक अली का आया है एक मैसेज। वो लिखते हैं कि इतनी उम्दा हंसी कहाँ से चुराई है। तो भाई मैंने चुराई नहीं है, ये तो आपके सुनने वालों का प्यार है। और यादों की बात करते हैं, कभी वादों की बात करते हैं, जब से प्यार हुआ है उनसे नफ़रतों की बात करते हैं, आदिल कवर लिखते हैं। तो भाई ऐसा क्यों और ऐसी बात क्यों लिख रहे हैं आप इंजॉय करिए यादों को। और आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, आप सभी से कह चुकी हूँ कि जो यादें आपके दिल को दर्द पहुँचाएं, उन यादों को दिल की किताब में से, जी हाँ, उन पन्नों को फाड़ कर कहीं ऐसी जगह फेंक दीजिए जहाँ आप कहीं भी सफ़र में जाएं तो वो उड़कर आपके पास बिल्कुल भी आने ना पाएं। जी हाँ, आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली और एनसीआर में, और पूरे भारत में हम आपसे जुड़े हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। और अब ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं, देश में ही नहीं विदेश में भी। तो सुनते रहिए, जी हाँ, दिल से दिल तक का सफ़र तय करने वाला FM रेनबो इंडिया। और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, तो चलिए ये सुनवाती हूँ आप सभी को, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, कहीं बूंदाबांदी हुई है, कहीं तेज़ हवाएं चली हैं और इस वक्त चांद और तारे, जी हाँ, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं आकाश में। और जब ये चांद तारे आकाश में दिखाई देते हैं ना, तो जी हाँ, दिल पर खास दस्तक होती है जो किसी किसी को समझ में आती है।

जी हाँ, एक और मैसेज आया है, वो बहुत अच्छा और छोटा मैसेज लिखा है। प्रेमचंद प्रेमी ने धामपुर से इंसानियत के गीत सरगम लिए हुए, एहसास ए भूख और तमाम गम लिए हुए, मेरी हर खुशी खुदा तू उनको बांट दे, जो जी रहे हैं प्यार के परचम लिए हुए, परचम लिए हुए। बहुत बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है आपने प्रेमचंद प्रेमी जी। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है और इसे 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साइकिल की विशिष्टता, स्थायित्व और बहुमुखी प्रतिभा को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था, परंतु आज लोग बहुत कम साइकिल चलाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन साइकिल चलाना हृदय और स्वास्थ्य के लिए दोनों के लिए बेहतर होता है, मोटापा कम करता है और मानसिक तनाव से राहत दिलाता है। भाई इतनी अच्छी बात कही है आपने, इतना मतलब हेल्थ को लेकर भी आपने कहा है, और सबसे बड़ी बात जब हम साइकिल यूज़ करते हैं ना तो काफ़ी दूरी तय कर सकते हैं साइकिल से ही। हर जगह जाने के लिए बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी या फिर गाड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, उससे पॉल्यूशन भी आप बढ़ा रहे हैं और देखिए अपने स्वास्थ्य को तो खराब कर ही रहे हैं, इसलिए पॉल्यूशन को भी आप कम कर सकते हैं, ईंधन भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का यानी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं साइकिल चलाकर। और उन्होंने एक गाने की इसमें फरमाइश कर डाली है वो भी साइकिल वाला गाना है, तो दोस्त आप जानते हैं कि टिक टिक करती घड़ी काफ़ी कुछ कह रही है। अब मुलाकात होगी ठीक 11:05 पर, तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी को इजाज़त। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जिनके मैसेजेस नहीं ले पाई हूँ तो भाई उनको पहले से ही मैं सॉरी बोल

देती हूँ, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि बहुत बहुत बहुत मेरे पास मैसेजेस हैं, ले नहीं पाई हूँ, तो फिर इन मैसेजेस को मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में ले सकती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध हैं, जो बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का उत्सव भारत लाओस द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके कुमार शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जाँच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आस पास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही है जिसमे राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। भारत में अमेरिका के

दूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दे को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
6: Welcome back, my dear listeners. Our time by the studio clock is 53 minutes past 10. And so I just have about 7 more minutes to entertain my dear listeners tuned in to Akashvani's FM Rainbow 102.6 megahertz. And the show on at the moment is the beautiful classic show called Rainbow Classics. We are playing out all those lovely classics from the era of 50s and 60s and 70s and yes, beyond that. For that, you'll have to tune in to another show because this is what we play here for you. Okay, and how is your late evening going so far? Tell us before I wind up the show, you know, how is it? Whether it is the evenings that are more soothing to you, or is it the mornings, or maybe, you know, the nights? Which is your favorite part of the day? Yes, you can tell us all about it. And of course, if you have a special message, send it across as well on 9868107070. And I am going to play out Doris Day before I come back and take leave of you. This is Move Over, Darling.

0: मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए यह आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, फिर हूँ हाजिर आपका अपना प्रोग्राम रंगे महफिल लेकर। जी हाँ, दौर शुरू हो चुका है गीत और गजलों का, और आज फिर गीत और गजलें चुराने वाले हैं आपका दिल और चैन, और कुछ कुछ लोगों की उड़ने वाली है नींद। जी हाँ, आपको याद दिला दूं कि रंगे महफिल के सफर में भी आपके साथ रहेगी आपकी यही यही यही दोस्त, जिसका नाम है आरसी यानी रेखा चौधरी। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में सुनते हैं ये प्यारी सी गजल। जानती हूँ आपके मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन किंतु परंतु सबसे पहले ये गजल सुन ली जाए और फिर बात आगे बढ़ाएंगे।

जी हाँ दोस्तों, हमारे कुछ दोस्तों में से एक हैं शर्मा जी, वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ गायब हो जाते हो। तो भाई मैं तो कहीं गायब नहीं होती, और आपको पता ही है कि आजकल तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आ रही हूँ, और अभी जो 9 बजे वाला प्रोग्राम था वो भी मैंने किया था, तो लगता है गायब आप ही हो जाते हैं। और बोलते हैं वही कि हम गायब हो जाते हैं, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली बात हो रही है। मेरे पास जो मैसेज आया है, वो सबसे पहले जो मैसेज आया वो लिखते हैं, गुड इवनिंग रेखा जी, नमस्ते, होप टू हैव स्मूथिंग गज़ल अहेड। जयंत लिखते हैं पटना से, तो आई होप कि आपको पसंद आ रही होंगी, और सूथिंग गज़ल्स तो बनती ही हैं और जो दिल पर देती हैं ख़ास दस्तक। एक और मेरे पास मैसेज आया है, क्या बात है, मेरा फेवरेट सॉन्ग या गज़ल, आज तो आंसू रुकने वाले ही नहीं हैं। ये चित्रा सिंह की आवाज़ है, उन्होंने पहचान लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद गज़ल के लिए। वो लिखते हैं वरुण फ्रॉम इंदौर, तो इंदौर से वरुण जी, मुझे लगता है कि आप ना गज़लों के बहुत शौकीन हैं, और ये जो गज़लें होती है ना वाकई, और ख़ास तौर से जो अभी समय है, इस समय में अगर सूथिंग गज़लें और सॉफ्ट रोमांटिक गीत सुने जाएं तो भाई दिल पर ख़ास दस्तक तो बनती ही है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हर दर्द चुपचाप सहते हैं, छुप जाओ आंखों में, बस जाओ सांसों में, धड़कना भी धड़कन भी करती है सदा आपके नाम की, वो दिल ही क्या जो वफा ना करे, तुझे भूल कर जिए कभी खुदा ना करे। वाह, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन दोस्त प्रॉब्लम एक ये है कि आपने अपना नाम नहीं लिखा है। तो भाई अपना नाम लिखना मत भूलिए। एक और मेरे पास मैसेज आया है, तो उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी ना जब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं तो कभी कभी आंखें नम भी हो जाती हैं। तो भाई ये तो बात बिल्कुल सही है दोस्त, क्योंकि अगर पिछले साल की तरह आप बहुत

अच्छे से इस साल भी हैं तो पिछले साल की यादें नहीं आएंगी या उससे पहले की भी यादें नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, अगर पिछले साल आप बहुत खुश थे या पिछले दिनों बहुत खुश थे और जो वक्त चल रहा है इसमें आपकी आँखें नम हैं या किसी बात को लेकर आप फिक्रमंद हैं, तब तो फिर वो हालात बनते ही हैं। दोस्तों, पता है आपको, जब हम छोटे थे तो बहुत बहुत बहुत सारे बच्चे मिलकर पानी में खेलते थे, कागज़ की नाव बनाते थे, और जब हम ये गाना सुनते थे ना कभी कभी कहीं पे चलते हुए, भले ही रेडियो पर हो या फिर हो टीवी पर, तब हमें लगता था कि ये आखिर गाना बनाया क्यों गया है, ये गज़ल बनाई क्यों गई है, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो सारी गज़लें वज़लें जो भी होती हैं वो हमें गाना ही लगती हैं। बाद में जब बड़े होने के बाद पता लगता है कि गज़लें होती हैं, गाने अलग होते हैं, गज़लें अलग होती हैं। तो ये जब हम गज़ल सुनते थे, वो कागज़ की कश्ती, तो ये लगता था कि जो हम कश्ती होती है वो तो कागज़ की होती है, ऐसा सॉन्ग क्यों गाया गया है समझ में नहीं आता। जब धीरे धीरे बड़े होने लगे और जब बड़े हो गए और इस गाने का मतलब समझने लगे, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का मतलब समझने लगे, तब समझ में आया कि इस गज़ल का एक एक शब्द वाकई बहुत कुछ कहता है। तो चलिए आज पुरानी यादों को थोड़ा सा ताज़ा कर लेते हैं और गीत कह लीजिए या फिर कहिए गज़ल, वो दोनों की आवाज़ में मतलब एकदम परफेक्ट बैठती है। और सच में कुछ लोग तो पुराने दिनों में चले ही जाते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ये दिन फिर कब आएंगे। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गज़ल।

देवदत्त परसौलिया जी हाँ, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस से वो लिखते हैं, नमस्कार रेस्पेक्टेड आरजे एंड ऑल टीम्स ऑफ एफएम रेनबो, नाइस वॉइस, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गाने गज़ल उनको पसंद आ रहे हैं और उन्होंने एक गज़ल की फरमाइश की है। वैसे तो दोस्त ये जो हमारा प्रोग्राम है ना वो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, फिर भी कोशिश करके देखती हूँ, अगर मेरे पास ये गज़ल हुई तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये गज़ल मुझे भी बहुत पसंद है और ये गज़ल बहुत बहुत बहुत कम सुनने को मिलती है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो आया है जी हाँ मोहम्मद इम्तियाज़ का, इम्तियाज़ जवाहर का, कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। वो लिखते हैं, है खामोश रात, है खामोश रात, बस कोई साथ नहीं, कुछ बातें अपने आप से कर ले, जिन्हें जीने की चाहत हो जाती है। मुझे कुछ कुछ जो आपने लिखा है ना, और उससे पहले जो लिखा है, जो बड़ा वाला आपने मैसेज लिखा, तो वो तो पढ़ के मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं दोस्त, और इसलिए

0: मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा कम शब्दों में अपनी बात को रखने की कोशिश करा करें, लेकिन जो भी आपने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन ऐसा क्यों आप सोचते हैं कि आपके साथ कभी कोई नहीं है तो आप अकेले हैं और इसलिए अपने आप से बातें कर लेते हैं? तो भाई हमारा पूरा रेन वो परिवार वो है, आप सभी के साथ तो है, तो आप अकेले कैसे हुए? और हम तो अपने आप को कभी अकेला महसूस करते ही नहीं, क्योंकि आप सबको हम अपने साथ हमेशा हमेशा समझते हैं। अब ये सही बात कितनी है, अब ये आप पर निर्भर करता है। हम आपके दिल में रहते हैं, हर दर्द चुपचाप सहते हैं, छुप जाओ आंखों में, बस जाओ सांसों में, धड़कन भी करती है सदा आपके नाम की सदा, वो दिल ही क्या जो वफा ना करे। ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ और इसी के आगे लिखा है कि आपकी हंसी में काफ़ी आपकी हंसी हमें काफ़ी पसंद है, हंसी खुशियों का एहसास है। बिल्कुल दोस्त है, हंसी हमेशा खुशियों का एहसास होती है, लेकिन कभी कभी हंसी में भी गम छिपा होता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसकी हंसी को कितना पहचान रहे हैं या किसको कितना जानते हैं, क्योंकि यूं तो हालातों के थपेड़ों से न झुके न रुके हम, यूं तो हालातों के थपेड़ों से न झुके न रुके हम, पर इश्क, इश्क की चोट ने अपाहिज बना दिया हमें, अपाहिज बना दिया हमें।
1: लड़की के बीए पास करने की खुशी में इतनी शानदार पार्टी।
2: ये बेचैनी, ये इस्तराब, मालूम होता है किसी खास मेहमान का इंतजार हो रहा है।
3: जी नहीं, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि सब लोग।
4: हेलो विकास, तुम आ गए?
5: जी
4: आओ, मैं तुम्हें अपने मेहमानों से मिलाऊं। आपसे मिलिए, आप हैं मिस्टर यश कोहली, कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट करके अभी अभी लौटे थे, आजकल डिप्टी कमिश्नर है। और आप हैं मिस्टर विकास, मेरी लड़की के क्लास फेलो थे, बेचारे इस साल बीए में फेल हो गया। मिसेस कोहली, आपसे मिलिए, आप हैं मिस्टर खन्ना, टी प्लांटेशन और फ्रूट गार्डन के मालिक, लाखों रुपए की आमद। आप हैं मिस्टर विकास।
0: जी हाँ, तो ये आपने जो शब्द सुने कि किसी के पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, कितनी भी दौलत हो, लेकिन वो खुशियाँ कभी खरीद नहीं सकते। और जब खुशियाँ खरीद नहीं सकते तो फिर ऐसी दौलत का फ़ायदा क्या? इसलिए जब भी आप ये सोचें कि खुश रहना है, तो सबसे पहले खुश रखने की कोशिश की जानी चाहिए।

0: फिर जी चाहता है कि खामोशियों के मेले में गुम हो जाएं, फिर जी चाहता है कि अंधेरों में फिर से छिप जाएं, फिर जी चाहता है नींद ना आने पर भी आंखें मूंद कर किसी के सपनों में खो जाएं। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, और रंगे महफिल को आप सुन रहे हैं दिल्ली और एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और अब ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। फिलहाल लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास, बने रहिए हमारे साथ।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल, और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की

वेलकम बैक दोस्तों, आपके मैसेजेस लगातार मुझे मिल रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैं अगली बार कब आऊँगी। तो दोस्त, वैसे तो वादा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब सोच रही हूँ मैं ये कि आप जब इतनी इतनी इतनी फरमाइश करते हैं इस प्रोग्राम की, मेरे इस प्रोग्राम की, तो फिर क्यों ना जल्दी आ जाए। तो जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं फिर बहुत जल्द मिलने वाली हूँ आपको 6 जून को जी, यानी कि 6 जून को, एक दो दिन के बाद। आज 3 हो गई, 4, 5 और 6 को हम मिलने वाले हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांतिनगर सोनीपत से। उन्हें भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है और साथ में बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेरे पास मैसेज है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो दोस्त प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिखकर भेजिए। तो भाई, वैसे तो मैं नाराज़ नहीं होती हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हैं मैं नाराज़ हो जाऊँ? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं आप सबसे नाराज़ रहूँ। तो अपना नाम लिखना मत भूला करिए अपने मैसेज के साथ। फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगी, यूँ तो आना जाना लगा ही रहता है तेरी गलियों में, यूँ तो आना जाना लगा ही रहता है तेरी गलियों में, आज कुछ ख़ास नज़र आया तेरी गली के नुक्कड़ पर। हजारों आंखें गड़ी थी मुझ पर, हजारों आंखें गड़ी थी मुझ पर, जी हाँ, हजारों आंखें गड़ी थी मुझ पर और मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ तुझ पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

तो कभी-कभी दिल करता है ना कि हम सिर्फ खामोश रहें और सामने वाला बस बोलता रहे, या फिर सामने वाला भी कुछ ना कहे, हम भी कुछ ना कहें, सिर्फ और सिर्फ दिल पर देते दस्तक गीत और गज़लों का लुत्फ़ उठाते रहें। जी हाँ, आज मेरा भी मन कुछ ऐसा ही है कि बातें कम करूं, लेकिन दिल पर देते दस्तक गीत और गज़लों की जो खूबसूरत माला लेकर मैं आई हूँ, वो आप सबके कानों के जरिए जी हाँ दिल में दे खास दस्तक। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज जो किया है, वो मैसेज तो किया है, मैसेज अच्छा भी है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और उन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज कर दिया है। तो दोस्त, ये बात तो गलत है, मैं हमेशा कहती हूँ और फिर आप सबसे कह रही हूँ कि अपने मैसेज को जितना हो सके छोटा करके लिखिए। एक और मैसेज है, उसमें कहा गया है कि जगजीत सिंह जी की कोई भी अच्छी सी गज़ल प्ले कर दो प्लीज़। तो भाई देखिए, मैंने आते ही सबसे पहले जगजीत सिंह जी की ही गज़ल प्ले की थी और अब तक मैं शायद 2 या 3 गज़लें उन्हीं की आवाज़ में सुनवा चुकी हूँ। और अगर आपने नहीं सुनी है तो चलिए फिर से कोशिश की जाएगी। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। तो लीजिए मेरी प्लेलिस्ट में ये आवाज़ फिर से है।

0: जी हाँ दोस्तों, एक हमारे दोस्त हैं, वो लिखते हैं, आरजी रेखा चौधरी जी, आप बहुत बढ़िया रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, मुस्कुराते हुए ऐसे ही कार्यक्रम सदा करती रहें। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका साथ रहेगा तो यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और प्रोग्राम्स भी करते रहेंगे। और बस लेकिन दिल से यही दुआ करेंगे कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी लिखा है कि जाकर हमें भूलना जाया करो, जैसे हम आपको याद करते हैं आप वैसे ही हमें याद करा करो। भाई याद करने के तो कोई सवाल ही नहीं उठता दोस्तों, क्योंकि मैं कभी भी अपने लिसनर्स को, अपने दोस्तों को भूलती नहीं हूँ। इसलिए अगर भूला नहीं जाएगा तो फिर याद किसको किया जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ दोस्तों, टिक टिक करती घड़ी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है बिना जुबान हिलाए कि आज का वक्त यहीं पर पूरा होता है। लेकिन किंतु परंतु फिर आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। एक हमारे पास मैसेज आया, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। आदाब, हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से। फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा लिखते हैं। तो और आगे लिखा है, हमने तो बेशुमार यादों को डायरी में संजो कर रखा है। तो भाई थैंक यू सो मच फारूक अली खान जी और सभी सभी दोस्तों को मेरा, जी हाँ, यही कहना है कि आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से, जी हाँ, मुस्कुराते हुए FM रेनबो इंडिया सुनते रहिए। फिलहाल अपनी दोस्त RC यानी रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात जरूर होगी। शुभ या रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने इसे योगासन के वैश्विक खेल मानचित्र पर महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजकों तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति की नई दिल्ली में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय बैठक हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजना के वांछित परिणाम के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक आकांक्षी अनुसूचित जाति समुदायों तक पहुंचने के लिए पीएम अजय योजना का दायरा विस्तारित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, श्रोता सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर FM रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के

12:05 और लीजिए भाई सुनते हैं जीरो आर शो नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार

जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही

0: के कारण ये हुआ है। पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। श्री शाह के दौरे के सिलसिले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक और सुरक्षा बैठक आयोजित की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, समय हो रहा है रात्रि के 1:05 और 20 सेकेंड्स। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो लीजिए आनंद इन खूबसूरत से गीतों का।

दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: रहा है बम्बई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी रात। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 2 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में हमारे श्रोता समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहन से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन मजबूत बनाने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI ने कंबोडिया में UPI भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक ACALEDA बैंक के साथ साझेदारी की है। भारत आने वाले कंबोडियाई नागरिक जल्द ही अपने घरेलू बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ऐप का इस्तेमाल कर पूरे भारत में लाखों UPI QR कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे के दौरान पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 2:05 और 21 सेकंड्स। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रज़ा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं आपके लिए कुछ ये प्यारे से गीत हम लेकर आए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई।

आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

भुलाए ना बने ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे थे। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 3 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में आप समाचार होंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में रतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दो

दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज़ का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक

0: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार और लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के

साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री यवेट कूपर भारत की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे कामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

भी रहता था, थी कचक करते।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में रुकी विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार तथा लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलानबतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। 4 दिन की प्रतियोगिता में भारत की ओर से पुरुष फ्रीस्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है, प्रातः के 5:06। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसे